ये आकाश मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 सितंबर 2026, प्रातः के 5:58 और 5 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त आशी राठौर। आप सभी को हमारा नमस्कार, शुभ प्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में आइए सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में ये देश का।

0: उषा मोहनकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष ये आलेख। वाचक हैं डॉक्टर केशव सिंह राठौर।
1: किसी शायर ने कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी अगर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। पर्यटन मानव को मानव से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यह एक मानसिक तृप्ति है, मेरा तेरा को हमारा में परिणित करने की सुंदर युक्ति है। पर्यटन अनेकता में एकता का संचार कर समन्वय की भावना जागृत करता है, जो विश्व का सुखदायी स्वरूप है। पर्यटन द्वारा विश्व की भाषाओं, भावों, संस्कृतियों आदि का अनूठा संगम देखने को मिलता है। पारस्परिक मिलन से आत्मीयता जागृत होती है और मानव की ईर्ष्या, द्वेष आदि घातक संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। स्नेह मिलन द्वारा ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का अंत होकर सृजनात्मक प्रवृत्तियों का उदय होता है। हमारे हृदय में जीवंतता और ऊर्जा की नई धारा का संचार होता है। स्थान विशेष का एक अनोखा प्रभाव होता है। नेपाल का पशुपतिनाथ का मंदिर, मलेशिया का कार्तिकेय मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ग्वालियर किले का वैभव, आगरा का ताजमहल, दिल्ली की विभिन्न ऐतिहासिक एवं धार्मिक इमारतें, कश्मीर की डल झील, अजंता की गुफाएं, देश विदेश की गगनचुंबी अट्टालिकाएं तत्कालीन संस्कृति की प्रतिनिधित्व करती हैं। वे अपने गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करते हुए जन जन को एकत्व एवं प्रेम का संदेश दे रही। संसार में अनेक विचित्रताएं देखने हेतु पर्यटन के एकमात्र माध्यम माना गया है और ये विचित्रताएं हमारे मानस को स्पंदित एवं आलोकित कर विश्व एकत्व एवं विश्व कल्याण की भावना को बल प्रदान करती है। महापुरुषों की पदयात्राओं ने जन जन में करुणा, संवेदनशीलता एवं मैत्रीभाव जैसे मानवीय गुणों को जागृत किया है। विश्व हित चिंतकों ने प्रज्वलित मशाल लेकर जन जन में प्रेम और एकत्व की अलख जगाई है। विश्व गुरु भारत की ऐसी ही विशेषताओं के कारण प्रतिवर्ष विश्व के अनेक देशों से पर्यटक बड़ी संख्या में भारत में आते हैं। पर्यटन हमारी चिंताओं को चिंतन में परिणित कर देता है, फलतः हमारे जीवन में नवी स्फूर्ति, स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन, अनुभव का खजाना एवं विश्व मैत्री की उत्कट भावना की उपलब्धि होती है। पर्यटन की अवधि में सावधानी, जागरूकता, सहिष्णुता और दूरदर्शिता की महती आवश्यकता है। पर्यटन द्वारा विश्व मैत्री के साथ साथ सर्वत्र प्रेम की गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहे और नवजीवन की प्राप्ति हो, ऐसी कामना के साथ बहता पानी जीविता ठहरा मर मर जाए, ऐसे ही प्राणी भ्रमण से नवजीवन पा जाए। मानवीय मूल्यों के उन्नयन एवं संस्कृतियों को नज़दीक लाने के अतिरिक्त पर्यटन की आज के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। आज पर्यटन के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग अनेक अनेक देशों में यात्राएं करते हैं। इससे एक नए अर्थतंत्र का विकास हुआ है। यात्राओं के माध्यम होटल व्यवसाय, गाइड एवं अन्य जुड़े हुए क्षेत्रों में प्रगति की नित नई संभावनाएँ जुड़ती जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया की तमाम सरकारें पर्यटन स्थलों को विकसित और सुविधाजनक बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। यही कारण है कि पर्यटन आज कई देशों में एक महत्वपूर्ण उद्योग का स्थान ले चुका है और दुनिया के करोड़ों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। पर्यटन हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करके साथ साथ हमारे चिंतन को और प्रखर करे, ऐसी हमारी अभिलाषा है।
0: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यटन दिवस पर ये विशेष आलेख। वाचक थे डॉक्टर केशव सिंह राठौर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुईं। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है जैविक खेती आज की आवश्यकता। जानकारी दे रहे हैं ओपीएस नरवरिया।
1: जमीन को स्वस्थ रखने के लिए ये आवश्यक होता है कि हमें कौन कौन से पौधों के जो आवश्यक तत्व हैं वो कैसे उपलब्ध हों, और हमारी जमीन की भी उर्वरा शक्ति है, उसी की भौतिक दशा है, रासायनिक दशा है, वो बरकरार बनी रहे। इस उद्देश्य हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करते हुए हमारी जो पहले से परंपरागत खेती चली आ रही है उस पर हम पुनः आना चाहते हैं, ताकि हमारी जो जमीन है, हमारी जमीन की दशा ठीक बनी रहे और हमारे जो स्वास्थ्य है, मानव है, हमारा पर्यावरण है, उस पर भी प्रतिकूल असर न पड़े। इन कारणों से अब जैविक खेती, जिसको आजकल हम और पूर्व से भी ये परंपरागत खेती के रूप में हम मानते हैं, आज आवश्यक हो गया है। जो हमारे रासायन खाद हैं जिनको हमें देने के लिए आवश्यक निर्भरता होती है, तो उसमें हमारा उसकी निर्भरता हमारी बहुत कम होती है, हमें रासायनिक खाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लागत बहुत कम आती है। दूसरा, जो हमारे जैविक खाद का उपयोग होते हैं तो उस कारण से उसकी गुणवत्ता में हमारी जमीन में सुधार होता है, और विशेष करके जो हमारी जमीन में जल शोषण करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है, पानी का वाष्पीकरण भी हमारा काम होता है, और भूमि के जल स्तर में भी काफ़ी वृद्धि होती है कि जब पानी गिरता है, अवशोषण होता है, तो धीरे धीरे हमारा जो जल स्तर होता है जमीन का वो बढ़ता है, इसमें वृद्धि होती है, और कठोर जमीन को भुरभरापन उसमें जमीन में आता है। सबसे बड़ी फायदा इसका होता है, फसल उत्पादन में लगने वाली लागत बहुत कम होती है, और अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो बाजार है उसमें हमारा जो जैविक उत्पाद होता है उसमें अच्छा मूल्य मिलता है, तो ये लाभदायक खेती भी काश्तकार के लिए कही जाती है। और दूसरा है कि जो भी उपभोक्ता होंगे हमारे, तो उनको भी एक दुष्प्रभाव रहित कहना चाहिए कि उनको भोज्य पदार्थ या सामग्री, फल सब्जियां जिनमें रसायन कम होंगे, तो हमारा स्वास्थ्य के हिसाब से भी हमारा जो भोजन है, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, दाल हैं,

0: में ये हमारा जो औषधि का जो प्रभाव है वो बहुत कम होगा और स्वास्थ्य के लिए भी, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा। जैविक खेती करने के लिए बड़ा आसान तरीके हैं, जैसे एक नाडैप टांके का निर्माण करके एक नाडैप खाद तैयार करना। दूसरा, एक हमारा केंचुआ हमेशा से कृषकों का और कृषि जमीन का एक मित्र रहा है, उस केंचुआ खाद से भी हम एक वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और जब हम जमीन में उपयोग करते हैं तो इससे हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो केंचुआ खाद जिसको हम वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं, तो इसको तैयार करके हम खेत में डालते हैं तो इससे हमारी उत्पादन में वृद्धि होती है और जमीन की दशा और भी सुधरती है। और इसमें कई ऐसे बिंदु भी हैं कि जैसे गोबर गैस संयंत्र लगवाते हैं, उससे जो स्लरी निकलती है उसका हम जमीन में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी जमीन भुरभुरी होती है, जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और हमारा पोषण भी पौधों के लिए मिलता है जमीन के माध्यम से। तो गोबर गैस संयंत्र के माध्यम से भी, उसके माध्यम से भी हम इस जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा एक ऐसे भी हमारे हैं कि जो हरी खाद है, ये भाई लोग बहुत पहले से हमारे परंपरागत ढंग से मान के चलते हैं। हरी खाद की हमारी ढांचा है, सनई है, उड़द है, मूंग है, जहाँ कोई इसके बीज उपलब्ध भी रहते हैं उसके माध्यम से हम फसल उगाते हैं और फूल आने फले लगने से पहले पहले ही हम उसको जमीन में मिला करके मिला देते हैं और उसका सड़न होने के बाद वो जमीन में मिल जाते हैं और एक बेहतर बढ़िया हरी खाद के रूप में हमारा जमीन को पोषण मिलता है, जो पौधों के लिए बहुत लाभदायक और आवश्यक होता है। ये जैविक खेती का हिस्सा कल्चर भी एक बन गया है और बिल्कुल सबसे सब विधियों से सस्ता और सरल है। ये हमारे जो भी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उनमें भी कल्चर का उपयोग होता है और बहुत कम मात्रा में और बहुत सस्ती दर पर जो उपलब्ध होते हैं, ये जैविक खेती का भी हमारा एक प्रमुख अंग है और हर तरह की फसल में हमारे कल्चर उपलब्ध हैं। और एक कल्चर हमारा ऐसा भी उपलब्ध है जो हमारी खेती में उपलब्ध फास्फोरस जो स्तर हो जाता है उसको घुलनशील बना करके हमारे पौधों को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। तो कल्चर विभिन्न प्रकार के जो कल्चर हैं जो दलहनी तिलहनी और खाद्यान्न फसलों में है उसका उपयोग करके भी हम जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। नीरथल शैवाल भी एक हमारा एक जैविक खेती का एक अंग है, विशेष करके हमारा जो धान की फसल होती है वो हमारा उसमें पानी भरा रहता है तो उसके माध्यम से हमारी ये वातावरण में जो 70% नाइट्रोजन होती है उसमें से वातावरण से नाइट्रोजन अवशोषित करके हमारे धान की फसलों में मतलब नील हरित काई हमारी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके हमारे पौधों को उपलब्ध होती है, जिससे हमारी लागत भी कम होती है और पौधों को हमारे पोषक तत्व के रूप में भी नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा, जानकारी दे रहे थे ओपीएस नरवरिया, विषय था जैविक खेती आज की आवश्यकता। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।
2: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।

0: बधाई हो दत्ता, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।
1: बेटी को भी समझे बेटा समान, उड़ने को दे खुला आसमान, फिर देखें बेटियों की उड़ान, नाप लेंगी अपने नन्हे परों से पूरा आसमान।

0: युद्धेषु ऊर्जायाः वाणिज्यस्य अविराम प्रवाहं च सुनिश्चेतुम् आहूतवान्। गतरात्रौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सामान्य सभां संबोधयन् विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् युद्धानां परिणामाः प्रत्यक्षतया युद्धे संलग्न राष्ट्राणां समीपेभ्यः बहुदूरं यावत् अनुभूताः भवन्ति। सः अवदत् यत् वैमनस्येन वैश्विक सुरक्षा निरन्तरं प्रभाविता भवति, प्रगतिः संकिता भवति तथा च तस्य समीपस्थ प्रदेशेभ्यः बहुदूरं यावत् विकासः मन्दः भवति। सः अवदत् यत् विशेषतः खाद्य ऊर्जा सुरक्षादि क्षेत्रेषु स्थितिं परिष्कारयितुं भारतं सर्वविध साहाय्यं कर्तुं तत्परः अस्ति। वित्तमन्त्रालयः अघोषयत् यत् ग्राहकेभ्यः सौलभ्यं प्रदातुम् अद्य सर्वे सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंक संस्थाः, ग्रामीण बैंक संस्थाः च उद्घाटिताः भवन्ति। मन्त्रालयः अवदत् यत् यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अस्मिन् मासे 28 तः 30 दिनांकपर्यन्तम् आहूताः प्रस्तावित त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक प्रदर्शनस्य दृष्ट्या एतत् निर्णयः स्वीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये तिसृणां क्रीडा श्रृंखलायाः प्रथम एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रीडा अद्य तिरुवनन्तपुरम नगरस्य ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडा अपराह्ने 2 आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार जारी रखने पर भी बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
3: Should be exposed and should be countered.
1: रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को भी दोहराया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को भी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तुत

0: प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। जापान में एशियाई खेलों में स्क्वाश स्पर्धा में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में यानी 7:10 पर भोपाल से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाता है। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 7:20 से 8:00 के बीच। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुनते हैं व्हाट्सएप फरमाइश सुबह 10:05 से 11:00 के बीच। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं को उनके पसंद के फिल्मी गीत सुनवाते हैं। आठ बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। सुबह 8:30 आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे प्रमोद जोशी, ढोलक पर साथ देंगे श्रवण कुमार शर्मा और सारंगी वादन होगा उस्ताद अब्दुल मजीद खान का।

8:58 पर सुनिए इस घंटे की खास खबरें। इसे भोपाल से अनुप्रसारित किया जाता है। इस घंटे की खास खबरें आप सुबह 10:58 पर, 11:58 पर, दिन में 12:58 पर और दिन में 2:58 पर सुन सकेंगे। सुबह 9 बजे इस घंटे की खास खबरों के ठीक बाद आप सुनेंगे सूचना और समाचार पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। सुबह 9:30 पर आप सुनिएगा सिंधी कार्यक्रम।

श्रोताओं, जिले की चिट्ठी आप सुनते हैं रोज सुबह 10 बजे से। इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। 11 बजे सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों के लिए मन की बात का संदेश। 11 बजे से लेकर सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारी शाम की सभा भी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी। दिन में 1:00 सुनिए महिला कार्यक्रम 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम आप पुनः सुन सकते हैं। साथ ही साथ 1:45 पर सुगम संगीत और 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से सुना जा सकता है। शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम और 6:00 NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं।

श्रोताओं 7:20 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से घर आंगन कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसमें चर्चा के विषय होंगे विश्व टूरिज्म दिवस, विश्व मूक बधिर दिवस, साथ ही साथ भेंटवार्ता में सुनिए गृह वाटिका कैसे तैयार करें डॉक्टर शोभना गुप्ता से। रात 8 बजे से सभा की समाप्ति तक के सारे कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त।

0: सुबह के 7:10 होने को हैं। सुनिए आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण।
1: महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भोपाल के मास्टर प्लान में प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश में सेवा का संदेश देने वाले कार्यक्रमों के साथ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और बैंकों की कल से 3 दिन की हड़ताल के कारण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 138वां एपिसोड होगा। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में अधोसंरचना विकास को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कल इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा कि भोपाल के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान का प्रारूप जारी हो गया है। यह कई वर्षों से लंबित था।
1: हमारी राजधानी भोपाल में 95 में पहली बार मास्टर प्लान का प्रकाशन हुआ था। कई कारण से लंबित रहा है, लेकिन 20-22 साल से उसके नए प्लान के प्रकाशन की आवश्यकता थी। हमने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन भी किया है और राजधानी भोपाल को अपने भविष्य के आगे बढ़ने के नए प्लान के आधार पर उस प्लान का ड्राफ्ट का पब्लिकेशन भी कराया है।
0: इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि मास्टर प्लान भोपाल की प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी की दृष्टि से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि भोपाल विकास योजना के प्रकाशित प्रारूप पर नागरिक अपनी आपत्ति एवं सुझाव दे सकते हैं। मास्टर प्लान ड्राफ्ट के 4 प्रमुख आधार स्तंभ रखे गए हैं, जिनमें प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण, आधुनिक दृष्टिकोण एवं नागरिक हितैषी नियोजन, सुधारोन्मुख एवं परिवर्तनकारी नियोजन और आत्मनिर्भर तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले सतत विकास पर केंद्रित किया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम है, पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्वदेश दर्शन के दूसरे चरण, प्रसाद योजना, क्रूज पर्यटन और पर्यटन कौशल विकास जैसी पहलें नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के साथ पर्यटकों को अनुभव बेहतर कर रही हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़ा रही हैं। विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच राज्य के ही एक पर्यटन स्थल भेड़ाघाट को लेकर अच्छी खबर है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट लम्हेटा घाट में देश का पहला जियो पार्क और विश्व स्तरीय जियोलॉजिकल म्यूजियम विकसित करेगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि 87 करोड़ रुपए की परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। परियोजना में जियोलॉजिकल म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर, 6 गैलरियां, 130 से अधिक प्रदर्शक, डायनासोर पार्क, फॉसिल गार्डन विकसित किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। गुना जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं खंडवा, मंदसौर और नीमच में सेवा संकल्प अभियान के तहत कल मेरे सपनों का भारत विषय पर जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्योपुर में वड़नगर, वाराणसी जल जनसेवा संकल्प यात्रा का खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वागत किया। अलीराजपुर में फलिया स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नर्मदापुरम में नमो सेवा अनकही कहानियां कार्यक्रम के तहत सिवनी मालवा के गांधी चौक पर नुक्कड़ नाटक का मंचन और निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आगर मालवा में सेवा फर्स्ट राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज के तहत 7 अक्टूबर को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा 2026 के तहत कल पुरस्कार वितरण समारोह एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हास्य कवि सम्मेलन में दीपक धनादन, अर्जुन सिंह चांद, प्रियंका मिश्रा, श्रृंगार कटनी और कुलदीप रंगीला ने अपनी रचनाओं पर प्रस्तुति दी। मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने बताया कि इस अवसर पर राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।
3: राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में हमारे भोपाल रेल मंडल में काफी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कविता की प्रतियोगिता थी, इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता और डिफरेंट कॉम्पिटिशन भी किए गए। करीब 75 टोटल हमारे अधिकारी और कर्मचारी थे जिनको अवार्ड दिया गया, और इसी उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, और इसमें सभी को हिंदी और राजभाषा के प्रसार के लिए भी सबको एक प्रोत्साहन दिया गया।
0: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक भार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय भी लिया है। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेलों 2026 में आज भारत की नजरें स्क्वैश पर रहेंगी। महिला और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अनहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर डेकोथलॉन के अंतिम दिन बढ़त के साथ उतरेंगे और स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं एनसी सोजन और पारुल चौधरी भी स्वर्ण पदक की दौड़ में होंगी। लंबी कूद के फाइनल में शैली सिंह भी हिस्सा लेंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर के फाइनल में और सर्वेश कुशारे ऊंची कूद के फाइनल में उतरेंगे। प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक में हिस्सा लेंगी। वहीं मुरली श्रीशंकर लंबी कूद के क्वालिफिकेशन में उतरेंगे। शूटिंग में मनु भाकर महिला 25 मीटर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेंगी। ये टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा और युगल जोड़ियां ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद तथा ध्रुव कपिला, तनिषा क्रॉस्टो पदक से एक जीत दूर हैं। वहीं क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला वनडे मैच आज दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टी20 सीरीज का एक मैच 11 अक्टूबर को इंदौर में भी खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संजय गांधी अस्पताल में रोगियों के उपचार की जानकारी लेते हुए डॉक्टरों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। शिवपुरी सर्किट हाउस में कल राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग की विशेष जनसुनवाई में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर पीड़ित महिलाओं की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई करेंगी। सागर के आवदा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में कलेक्टर ने संबल योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया। धार जिले के धर्मपुरी में कल मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। गणित एवं विज्ञान ओलंपियाड के तहत बैतूल जिले के चयनित 20 छात्र छात्राओं का दल गुजरात भ्रमण के लिए रवाना हुआ। छतरपुर में सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर चौका गांव के पास भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। और 2 दिवसीय राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह एवं संगीत संध्या का आयोजन आज से इंदौर में किया जा रहा है। समारोह में सुविख्यात संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। वहीं अमर लता हमारी लता विषय पर संगीत संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

भाषा और साहित्य की जागृति राष्ट्रीय उन्नति के मार्ग की पहली मंजिल है। पुरुषोत्तम दास टंडन।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वो कौन थी से, बोल हैं राजा मेहंदी अली खान के, संगीत है मदन मोहन का और इस गीत को अपने सुरों से सजाया है लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार।
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर

0: पर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
0: कॉल उठाओ फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अमर प्रेम से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है RD बर्मन का। इस गीत को अपने स्वरों से सजाया है लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

यह आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत संजोग फिल्म से, जिसे लिखा है राजेंद्र किशन और संगीत है मदन मोहन का। इस गाने में अपनी आवाज़ दी है मुकेश ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत महबूबा फिल्म से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत ही रांझा फिल्म से, जिसे लिखा है कैफी आज़मी ने और संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है मोहम्मद रफ़ी ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत खामोशी फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार और गीत के बोल हैं गुलजार के।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म ममता से, गीत लिखा है मजरू ने और संगीत है रोशन का।

सुबह के 8 बज रहे हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, ये दोनों ही बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। उसके ठीक बाद आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम।

0: इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
4: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME हैं। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेयन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
7: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
8: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो

0: गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
3: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
0: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्रमोद जोशी के भजन। आइए सुनते हैं इनके स्वर में पारंपरिक दादरा।

ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्रमोद कुमार जोशी के भजन। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार शर्मा और सारंगी वादन है उस्ताद अब्दुल मजीद खान का। आइए सुनते हैं प्रमोद कुमार जोशी के स्वर में ये कहरवा।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्रमोद कुमार जोशी के भजन। आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये देवी गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्रमोद कुमार जोशी के भजन। आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये ढोला।

इसी के साथ ही ये आज लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे प्रमोद कुमार जोशी के भजन।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 9 बज रहे हैं। अब समय है सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में मैं आशी राठौर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। श्रोताओं, आज है 27 सितंबर 2026। आज के दिन क्या क्या है खास, इस कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज है विश्व पर्यटन दिवस, विश्व नदियां दिवस, साथ ही साथ विश्व बहादुर दिवस और विठल भाई पटेल जी की जयंती। श्रोताओं, अगर विश्व पर्यटन दिवस की बात की जाए तो ये हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना नहीं, बल्कि ये अलग अलग देशों, संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और जीवन शैलियों को समझने का माध्यम भी है। पर्यटन के माध्यम से हमें अपने देश और दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों तथा सांस्कृतिक विविधता को करीब से जानने का अवसर मिलता है। विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO से जुड़ी है, जिसे आज UN टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत इसी के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा ही हुई थी। 27 सितंबर 1970 को मेक्सिको के शहर मेक्सिको सिटी में संगठन के संविधान को अपनाया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यटन दिवस 1980 में मनाया गया था। 27 सितंबर की तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में पर्यटन के मुख्य मौसम के अंत और दक्षिणी गोलार्ध में पर्यटन के मौसम की शुरुआत के बीच आती है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, भारत जैसे विविधता से भरे देश में भी पर्यटन का विशेष महत्व है। भारत में हिमालय से लेकर समुद्र तटों तक, रेगिस्तान से लेकर हरे भरे जंगलों तक और प्राचीन मंदिरों से लेकर ऐतिहासिक किलों तक अनेक पर्यटन स्थल हैं। ताजमहल, खजुराहो, काशी, जयपुर, गोवा, केरल, कश्मीर, अजंता एलोरा और मध्य प्रदेश के खजुराहो, सांची तथा ग्वालियर जैसे स्थान देश की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। पर्यटकों के आने से होटल, रेस्टोरां, परिवहन, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों को रोजगार मिलता है। विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन आय का महत्वपूर्ण साधन है। एक पर्यटक जब किसी शहर में जाता है तो वह केवल होटल में ही पैसा खर्च नहीं करता, बल्कि स्थानीय भोजन, कपड़े, हस्तशिल्प, टैक्सी, गाइड और अन्य बहुत सी सेवाओं का भी उपयोग करता है। पर्यटन विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। न सिर्फ वहाँ के भोजन, कपड़े, हस्तशिल्प, बल्कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य या देश की यात्रा पर निकलता है तो उसे वहाँ की भाषा, खान पान, पहनावा, लोक कला, संगीत और परंपराओं को समझने का भी अवसर मिलता है। इससे लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान भी बढ़ता है। भारत में हर राज्य की अपनी अलग पहचान है। राजस्थान की लोक संस्कृति, पंजाब के लोकगीत, गुजरात के उत्सव, दक्षिण भारत के मंदिर और नृत्य, उत्तर भारत की ऐतिहासिक धरोहर तथा पूर्वोत्तर भारत की प्राकृतिक सुंदरता, ये सभी मिलकर भारत को एक अनोखा पर्यटन देश बनाते हैं। हमारे देश में हजारों वर्षों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें मौजूद हैं। किले, महल, मंदिर, स्तूप, गुफाएं और स्मारक हमें अपने गौरवशाली अतीत और इतिहास से परिचित कराते हैं।
पर्यटन इन धरोहरों को दुनिया के सामने लाने का माध्यम है। पर श्रोताओं, पर्यटन के साथ हमारी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक स्मारकों पर लिखना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, वहां कूड़ा फैलाना हमारी धरोहर के प्रति अनादर है। हमें पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखना चाहिए और उनकी ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखना ये हमारा ही दायित्व है। जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन आज के समय में सतत और जिम्मेदार पर्यटन की आवश्यकता पहले से अधिक है। अत्यधिक पर्यटन से कई प्राकृतिक स्थानों पर प्रदूषण, कचरा और पर्यावरण को नुकसान जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसका सबसे कॉमन उदाहरण अगर हम देखें तो जो भी हम अपने निचले स्टेट से जब भी पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो अक्सर ही पर्यटनों द्वारा ऐसा वीडियो और रील्स में देखा जाता है कि हम वहाँ की सुंदरता को ख़राब करते हैं अपने द्वारा लाए हुए कूड़े करकट या फिर खाद्य सामग्रियों की पैकेट से हर जगह पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करके इधर उधर फेंकते हैं। इससे प्राकृतिक सुंदरता तो नष्ट होती ही है, हमारा ये दायित्व भी है कि हम उसको साफ सुंदर और सुरक्षित बनाए रखें, जैसे कि हम अपने घर को साफ सुंदर हमेशा रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए पर्यटकों को प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालना चाहिए, पानी और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करनी चाहिए, साथ ही साथ वन्य जीवन और स्थानीय पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। श्रोताओं, हमें ऐसा पर्यटन विकसित करना चाहिए जिससे पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले और स्थानीय लोगों तथा प्रकृति को भी लाभ हो। स्थानीय उत्पादों को खरीदना, स्थानीय गाइड और छोटे व्यवसायों का सहयोग करना भी जिम्मेदार पर्यटन का हिस्सा है। आज का ये विशेष दिवस हमें यह समझाने का अवसर देता है कि पर्यटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, यह रोजगार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा और आपसी समझ को बढ़ावा देने का माध्यम भी है। हर वर्ष इस दिवस पर पर्यटन से जुड़े किसी विशेष विषय को केंद्र में रखकर कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यटन किसी देश की सुंदरता और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए पर्यटन विकास की बहुत बड़ी संभावना रखता है। पर्यटन हमें संदेश देता है कि यात्रा केवल स्थान बदलना नहीं बल्कि अनुभवों और ज्ञान को समृद्ध करना है। श्रोताओं, अगर हम बात करें अपने ग्वालियर की तो सिर्फ किला ही एक पर्यटन का स्रोत नहीं है, इसके साथ साथ हम बहुत कुछ है जो ग्वालियर में अपने आने वाले पर्यटकों की को दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो बिल्कुल

पहले किले की बुलंद प्राचीरों पे जो भी पर्यटक आता है उसकी नज़र पड़ती है, पर साथ साथ जयविलास पैलेस की शाही चमक, तानसेन की समाधि की संगीत साधना और सासबहु मंदिर की अद्भुत स्थापत्य कला पर ठहरती है। लेकिन अगर सफ़र यहीं ख़त्म कर दिया तो समझिए ग्वालियर चंबल की आधी ही कहानी देखी। शहर से अगर कुछ किलोमीटर बाहर निकलते ही पर्यटन का एक ऐसा संसार शुरू होता है जहाँ इतिहास किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि पहाड़ों, पत्थरों, जंगल और बीहड़ों में सांस लेता दिखाई देता है। कहीं मितावली की पहाड़ी पर गोलाकार मंदिर अपनी स्थापत्य पहेली से चौंकाता है तो उसके आसपास पड़ावली और बटेश्वर के मंदिरों का संसार सदियों पुराने वैभव की कहानी सुनाता है। कहीं ककनमठ की ऊंची पत्थर की संरचना अपने निर्माण को लेकर कौतूहल जगाती है तो कहीं चंबल के बीहड़ों के बीच बहती नदी के शांत पानी में घड़ियाल और डॉल्फिन की झलक रोमांच बढ़ा देती है। शिवपुरी की राजसी छतरियां और जंगलों की हरियाली इतिहास और प्रकृति को एक ही फ्रेम में समेट लेती है। अगर हम आज विश्व पर्यटन दिवस पर अपने ग्वालियर के पर्यटन की बात करें तो नरेश्वर, ककनमठ, चंबल, नलकेश्वर ये कुछ ऐसे स्थान हैं जो प्रकृति की एक अनोखी छटा समेटे हुए हैं। मुरैना ज़िले का नरेश्वर उन स्थलों में से है जिन्हें पर्यटन के नक्शे पर ज़्यादा जगह मिलने की ज़रूरत है। वहाँ भी बहुत कम पर्यटक पहुँचते हैं, यानी यह चुनौती सिर्फ धरोहर ही नहीं बल्कि उसकी कहानी को पर्यटक तक पहुँचाने की भी है। अगर सही से पर्यटन सर्किट अगर हम तैयार करें तो हम देख सकते हैं कि ये मितावली बटेश्वर के साथ इसका नाम भी जोड़ा जा सकता है। अगर सिहोनिया का ककनमठ मंदिर की बात करें तो ये अपनी भव्यता और स्थापत्य के कारण अलग पहचान रखता है। यह 11वीं शताब्दी का शिव मंदिर है और कच्छघात काल के महत्वपूर्ण मंदिरों में शामिल है। मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। ककनमठ के साथ सिहोनिया में जैन मंदिर परिसर और अन्य प्राचीन स्थापत्य अवशेष भी हैं, यानी एक स्थान पर धार्मिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य पर्यटन को जोड़ा जा सकता है। बात करें तो अगर अपने चंबल क्षेत्र की तो चंबल का नाम आते ही अक्सर बीहड़ों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन आज यही क्षेत्र इको टूरिज्म की बड़ी संभावना रखता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, कई पक्षी और प्रजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन चंबल सफारी को ग्वालियर क्षेत्र के प्रमुख अनुभवों में शामिल करता है। राजघाट से डॉल्फिन पॉइंट और अन्य रूट पर बोटिंग के विकल्प भी पर्यटन सामग्री में दर्ज हैं। इसका मतलब साफ है कि चंबल में इतिहास के साथ प्रकृति को और रोमांच को भी पर्यटन पैकेज का हिस्सा बनाया जा सकता है। साथ ही साथ तिगरा बांध से आगे है नलकेश्वर महादेव। ये ऐसा स्थल है जिसे मुख्य पर्यटन सर्किट में ज़्यादा मजबूरी से और भी आगे जोड़ा जा सकता है। धार्मिक पर्यटन होने के साथ साथ इसे कई तरीके से और भी विकसित किया जा सकता है और तिगरा नलकेश्वर मार्ग स्वयं एक आकर्षक डे ट्रिप रूट बन सकता है अगर हम बात करें ग्वालियर पर्यटन की। तो श्रोताओं, बात हो रही है नदियों की, हम बात कर चुके हैं अपने पर्यटन में जुड़े चंबल क्षेत्र की, तो आज विश्व नदी दिवस भी है। ये हर वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। ये दिवस दुनिया की नदियों के महत्व को समझने, उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखने तथा लोगों में नदियों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि वे मानव सभ्यता, कृषि, वन्य जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधार भी हैं। अगर बात की जाए इतिहास की तो हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ नदियाँ बहती हैं वहीं सभ्यता धीरे धीरे विकसित होती है। विश्व नदी दिवस मनाने की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नदियों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इस पहल से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में कनाडा के पर्यावरणविद मार्क एंजेलो का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्हें लंबे समय से नदियों के संरक्षण और स्वच्छता के लिए कार्य करते हुए देखा गया।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 को जल के लिए जीवन दशक वाटर फॉर लाइफ डिकेड की शुरुआत के वर्ष के रूप में मनाया गया था। इसी व्यापक वैश्विक जागरूकता के वातावरण में विश्व नदी दिवस की पहल को बढ़ावा मिला। आज दुनिया के अनेक देशों में इस दिन नदियों की सफाई, जागरूकता कार्यक्रम, नदी यात्राएं, शैक्षणिक गतिविधियां और पर्यावरण संबंधी अभियान आयोजित किए जाते हैं। नदियां पृथ्वी पर जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने नदियों के किनारे अपनी बस्तियां और सभ्यताएं विकसित की हैं। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी नदियों के आसपास हुआ है। नदियों ने लोगों को पीने का पानी, खेती के लिए जल और आवागमन के साधन उपलब्ध कराए। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और चंबल जैसी अनेक महत्वपूर्ण नदियां हैं। इन नदियों का हमारे जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रोताओं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। नदियाँ खेतों की सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नदियों से मिलने वाला पानी फसलों के उत्पादन में सहायता करता है और किसानों को आजीविका को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई क्षेत्रों में नदियों पर बांध और जलाशय बनाए गए हैं, जिससे सिंचाई के साथ साथ पेयजल और विद्युत उत्पादन में भी सहायता मिलती है। नदियाँ केवल मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वे हमारे प्राकृतिक परिवेश में जो जितने भी पशु पक्षी, मछलियों, कछुए, मगरमच्छ, ये स्थलीय जीव हैं, जलीय जीव हैं, इनके भी आवास का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। नदियों का स्वस्थ पर्यावरण हजारों जीव जंतुओं और पौधों को जीवन का भी सहारा देता है। यदि नदियाँ प्रदूषित होती हैं या उनमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो इसका सीधा प्रभाव जलीय जीवों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। भारत में नदियों का केवल आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व ही नहीं, बल्कि उनका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। अनेक त्यौहार, मेले और धार्मिक गतिविधियां नदियों के किनारे आयोजित होते रहे हैं। नदियों के प्रति श्रद्धा का भाव हमें यह भी सिखाता है, हमें उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। विश्व नदी दिवस हमें याद दिलाता है कि नदियां हमारे जीवन की आधारशिला हैं। वे हमें पानी देती हैं, खेतों को सींचती हैं, जीव जंतुओं को जीवन देती हैं और हमारी सभ्यता तथा संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं। यदि नदियाँ स्वच्छ और जीवंत रहेंगी, तो हमारा पर्यावरण और समाज भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए नदी संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आइए विश्व नदी दिवस पर हम भी ये संकल्प लें कि नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे, पानी की बर्बादी को रोकेंगे और अपनी नदियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, निर्मल, सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे। नदी बचेगी तो जल बचेगा, जल बचेगा तो जीवन बचेगा। कार्यक्रम में बातें अभी और भी हैं, उससे पहले रुककर सुनते हैं ये गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से गुड मॉर्निंग ग्वालियर। श्रोताओं, आज विश्व बधिर दिवस भी है। प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ये दिवस उन लोगों के प्रति समाज में जागरूकता और सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है जो सुनने में असमर्थ हैं। ये दिन हमें यह समझने का संदेश देता है कि सुनने की क्षमता में कमी किसी व्यक्ति की प्रतिभा, योग्यता या सपनों को सीमित नहीं करती। उचित शिक्षा, अवसर और सहयोग

पर बड़े व्यक्ति भी समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विश्व विधिर महासंघ यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ WFD से जुड़ा हुआ है। विश्व बधिर महासंघ की स्थापना 1951 में रोम इटली में हुई थी। इसके बाद बधिर लोगों के अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए। विश्व बधिर दिवस को सितंबर के अंतिम रविवार को मनाने की परंपरा इसी अंतर्राष्ट्रीय बधिर आंदोलन से जुड़ी हुई है। कई स्थानों पर विश्व बधिर सप्ताह भी मनाया जाता है, जिसमें सांकेतिक भाषा, बधिर संस्कृति, शिक्षा, रोजगार और समान अधिकारों के विषय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बधिर लोगों के अधिकार और सम्मान के लिए ये कार्यक्रम यहाँ करवाए जाते हैं, जिसमें उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर मिलना चाहिए। इस पर परिचर्चाएँ होती हैं। केवल इसलिए किसी व्यक्ति को कमज़ोर समझना उचित नहीं है क्योंकि वह सुन नहीं सकता। आज सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज बधिर समुदाय के लिए संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सांकेतिक भाषा के माध्यम से बधिर लोग अपने विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। समाज में अधिक से अधिक लोगों को सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी हो तो बधिर लोगों के साथ संवाद करना और आसान हो सकता है। विश्व बधिर दिवस हमें समानता, सम्मान और समावेश का संदेश देता है। किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसकी शारीरिक क्षमता से नहीं होती बल्कि उसकी प्रतिभा, मेहनत, सोच और व्यक्तित्व से होती है। हमें ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां बधिर लोगों को किसी प्रकार का भेदभाव महसूस ना हो, उन्हें शिक्षा, रोजगार और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। विश्व बधिर दिवस का सच्चा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम केवल एक दिन जागरूकता न फैलाएं बल्कि अपने व्यवहार और समाज की व्यवस्था में स्थायी रूप से समानता और संवेदनशीलता को भी अपनाएं। श्रोताओं, आज विठल भाई पटेल की जी की जयंती भी है। विठल भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं, महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक थे। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और केंद्रीय विधानसभा के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी जयंती हमें उनके संघर्ष, देशभक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाती है। विठल भाई पटेल भारतीय इतिहास के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ भारत में लोकतांत्रिक और विधायी परंपराओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन देशभक्ति, साहस, नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का उदाहरण है। उनकी जयंती पर हमें उनके योगदान को याद करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और नागरिक जिम्मेदारियों का सम्मान करेंगे। विठल भाई पटेल का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि सच्ची देश सेवा केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी से होती है। कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में हाज़िर आहियां तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। बडरे महीने जी सतनारायण साण ही श्राद्ध शुरू थी चुका आहिनि। ॾींहं पंहिंजे पितरनि खे यादि करण जा, उन्हनि जा थोरा मञण जा, श्रद्धा भाव सां पितृ निमित ॿांभण ऐं नियाणी खाराइण जा। हिननि ॾींहनि में गांइ, कुतो ऐं कांग खे बि खाराइण जो रवाज़ु आहे। विशेष रूप सां गीता जे 7 अध्याय जो पाठ बि ज़रूरु कबो आहे। त साथियों, असांजे पितरनि जी महर शल असां सभिनी ते रहिजी अचे। कार्यक्रम जी शुरूआति अॼु कमला केसवानी जे हिन सुहिणे गीत सां था कयूं।

0: साथियों, कॾहिं तेज़ बुख में न वणंदड़ भाॼीअ सां बि ॿिनि जे बदिरां टे फुल्का खाधा अथव त अमा ज़रूरु चयो हूंदई, पुट बुख में बसर बि मिठा। केतिरी सच ऐं असरदार ॻाल्हि आहे। समाज जंहिं सच जो आज़मूदो सालनि खां कंदो आयो आहे, उन सच खे पहाकनि, इस्तलाहनि, चवणियुनि जे रूप में सांढे रखंदो आहे। चवणियूं भाषा जी सूंह आहिनि। भाषा में जेतिरी चवणियूं, भाषा ओतिरी ही पुख़्ता, कशिश कंदड़ ऐं असरदायक बणिजे थी। अॼु चवणियुनि सां जुड़ियल हिकु ख़ासि वार्ता लाइ आकाशवाणी भोपाल में असां नींढ ॾिनी आहे कवि, लेखक ऐं वरिष्ठ साहित्यकार श्री नंद कुमार सनमुखानी जी खे। अचो त ॿुधूं था उन्हनि खां इहा विशेष वार्ता।
1: नमस्कार, मां अॼु तव्हांजे साम्हूं सिंधी चवणियुनि जी अॼु जे दौर में अहमियत विषय ते हिकु वार्ता पेश करे रहियो आहियां। कंहिं बि ॿोलीअ जूं चवणियूं या पहाका उन समाज जे अनुभवनि, जीवन दर्शन, वहिंवारिक ज्ञान ऐं सामूहिक यादगिरियुनि या स्मृतियुनि जो संक्षिप्त रूप हूंदियूं आहिनि। पर उन्हनि जे अंदरि ज़िंदगी जे डिघे अरसे जे अनुभवनि जो निचोड़ लिकल हूंदो आहे। इहो ई सबबु आहे जो दुनिया जे लॻभॻि हर ॿोलीअ में चवणियुनि या पहाकनि जो वॾो ख़ज़ानो मिले थो। जीअं हिंदीअ में चवणी आहे जेसी करनी वैसी भरनी, त सिंधीअ में चवणी आहे जेको पोखींदे सो लुढ़ंदे। हिंदीअ में चवणी आहे त जान है तो जहान है, त सिंधीअ में चवणी आहे जीव आहे त जहान आहे। हिंदीअ ऐं सिंधीअ में सामूहिक अनुभवनि मां निकितल अहिड़ियूं बेशुमार चवणियूं थी सघनि थियूं। ॿोलियूं अलॻि अलॻि थी सघनि थियूं, लफ़्ज़ जुदा जुदा थी सघनि था, पर इंसान जा अनुभव ऐं ज़िंदगी जूं हक़ीक़तूं अक्सर हिकु जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि। अॼु जे वक़्त में सिंधी भाषा जो वाहिपो या इस्तेमालु जहिड़ी तरह तेज़ीअ सां घटिजी रहियो आहे ऐं नई पीढ़ीअ जे सिंधियुनि में पंहिंजी मातृभाषा जो शब्दकोश या वाकेबुलरी जीअं घटिजंदी पई वञे, उन्हनि हालतुनि में सिंधीअ जे पहाकनि ऐं इस्तलाहनि जो इस्तेमालु उन्हनि जी ॿोलीअ जी ॼाण वधाइण जो हिकु कारगर उपाउ थी सघे थो। जीअं हुननि जा पाण में ॾुतर सवा न आहिनि। इन चवणी में ॾुतर माना ॾेव, मतिलबु त हुननि जी पाण में पवे कोन थी। या ॿी चवणी आहे वुठो त थर न त बर। इन में वुठो माना वसियो, यानी जे थर में बरसाति पवे त थर ॼण चमन थी पवे, न त हिकु ब्याबान मिसल पियो भासे। इन तरह असां ॾिसूं था त पहाकनि में घणो करे ॿोलीअ जा अहिड़ा लफ़्ज़ ऐं व्याकरणी फ़िकरा सुरक्षित थियल आहिनि जेके अॼुकल्ह ॿोलीअ में ॿिए वाहिपे में नथा अचनि। इन करे ॿोली जी असुली शिकिल सम्झण लाइ पहाकनि जो अभ्यास घणी अहमियत रखे थो। चवणीअ जा लफ़्ज़ थोरा हूंदा आहिनि, पर उन्हनि जे पुठियां ज़िंदगी जा लंबा अनुभव हूंदा आहिनि। कंहिं बुज़ुर्ग जो मुशाहिदो, कंहिं हारीअ जो अनुभव, कंहिं माउ जी नसीहत, कंहिं मुसाफ़िर जी ॾिठल दुनिया या कंहिं समाज जी सामूहिक सम्झ, इहे सभु गॾिजी कंहिं वक़्तु हिकिड़े अहिड़े जुमिले खे जनम ॾियनि था जेको पीढ़ियुनि ताईं ज़िंदह रहे थो। उनखे ई असीं चवणी चऊं था। इहो ई सबबु आहे जो सिंधी ॿोलीअ में बि चवणियुनि या पहाकनि जो हिकु विशाल ऐं क़ीमती ख़ज़ानो मिले थो। पर सुवाल इहो आहे त अॼु जॾहिं दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, रोबोट्स, अंतरिक्ष जी खोजनाउनि ऐं डिजिटल क्रांतीअ जे दौर में दाख़िल थी चुकी आहे, तॾहिं इन्हनि पुराणियुनि चवणियुनि जी कहिड़ी अहमियत बाक़ी रहे थी? असांजी ज़िंदगी जो अंदाज़ कुझु ई ॾहाकनि में एतिरो बदिलिजी वियो आहे जेतिरो शायदि सदियुनि में बि न बदिलियो हो। अहिड़े वक़्त में इहो सुवाल स्वाभाविक आहे त सदियूं या पीढ़ियूं अॻु चयल चवणियूं या पहाका छा अॼु बि एतिरियूं ई कारगर ऐं लाॻापियल आहिनि? इन जो जवाबु आहे घणे हद ताईं हा, पर इन्हनि खे संदनि असुली पृष्ठभूमिअ सां मिलाए आधुनिक संदर्भनि में सम्झण जी ज़रूरत आहे। मिसाल तौरु, जेको पोखींदे सो लुणंदे। हिकु हारीअ जी ज़िंदगीअ मां निकितल हीअ सादी ॻाल्हि अॼु बि ज़िंदगीअ जे केतिरनि ई मामलनि में लागू थिए थी। तालीम में महिनत कंदासीं त इल्मु हासिलु थींदो, कारोबार में ईमानदारीअ महिनत कंदासीं त ग्राहकनि जो भरोसो या विश्वास जीते सघिबो, सिहत जो ख़्यालु रखंदासीं त जी ख़ुशि जान ख़ुशि वारी चवणी मूजिबि जीअण में ॼण मज़ो पियो ईंदो, ऐं जेकॾहिं कूड़ या नफ़रत जा ॿिज पोखींदासीं त उन्हनि जा नतीजा बि कंहिं न कंहिं सूरत में साम्हूं ईंदा। अहिड़ी तरह जिते चाह उते राह, अॼु जी टेक्नोलॉजी वारे दौर में एतिरी ई माना खेज़ आहे जेतिरी पहिरीं हुई। भले वसीला बदलजी विया आहिनि, चैलेंज बदलजी विया आहिनि, पर मक़सदु हासिलु करण लाइ ख़्वाहिश, सब्र ऐं कोशिश जी ज़रूरत अॼु बि ओतिरी ई आहे। अॼु बि उथ बि नाणो, वेह बि नाणो, नाणे बिना न रवे गाणो। मतिलबु उथ या वेह यानी घर मां उथी ॿाहिरि वञ, तोड़े घर में वेह, त बि ख़र्च पखे लाइ पैसो घुरिजे। पैसे खां सवाइ मुड़ुसु वेगाणो या मोगो आहे। इन सां मिलंदड़ जुलंदड़ कुझु ॿिया पहाका आहिनि। उठ खे लाणो, घोड़े खे दाणो, मर्द खे नाणो, महबूब खे माणो। या पैसो नाहे पास, जेरो आहे उदास। या जेकी करे नाणो, सो न करे राणो। या पीर ईसा, पीर मूसा, बड़ा पीर पैसा। या दाम करे सभु काम। अॼु तोड़े मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संपर्क ऐं मालूमात हासिलु करण जी दुनिया बदिलाए छॾी आहे। तंहिं हूंदे बि इंसान जा बुनियादी जज़्बा लालच, हसद, मुहबत, गुरूर, ख़ौफ़, ख़्वाहिशूं, सहकार ऐं हमदर्दी अॼु बि लॻभॻि साॻिया आहिनि। इन करे उहे चवणियूं जेके इंसानी सुभाउ सुञाणनि थियूं, अॼु बि ख़ासि तौर सां ओतिरो ई लाॻापियल आहिनि। खीर जो सड़ियल लस्सी बि फूके फूके पिए, इहा चवणी अॼु ज़ाती तजुर्बे ऐं डिजिटल सलामती ॿिन्ही में लागू थी सघे थी। ऑनलाइन ठगी जो शिकार थियल माण्हू भविष्य में कंहिं बि अणॼातल लिंक या संदेश खे वधीक सावधानीअ सां खोलींदो। ताड़ी हिकु हथ सां न वॼंदी, इहा चवणी रुॻो ॿिनि माण्हुनि जे मतभेद या अणबणत जी ॻाल्हि नथी करे, पर हीअ इंसानी समाज जी हिकु बुनियादी हक़ीक़त ॾांहुं इशारो करे थी, त कंहिं बि तकरार या मतभेद या समस्या खे सम्झण लाइ सभिनी धुरियुनि जी भूमिका खे ॾिसणु ऐं सम्झणु ज़रूरी आहे। आज़माए खे आज़माइणु ॼण धूड़ मुंहं में पाइणु, इहा चवणी ॿुधाए थी त कंहिं माण्हूअ या कम मां हिकु वारी ख़राबु नतीजो ॾिसी उनखे वरी आज़माइबो त पाण खे ई ख़्वार, ख़राबु ऐं निराश कबो। या आहे त ईद न त रोजो, इहा चवणी उन्हनि माण्हुनि सां लागू आहे जेके पैसो या शइ हुअण ते ईअं उॾाईंदा आहिनि जो ॼण ईद था मल्हाइनि, औखीअ सोखीअ लाइ कुझु बि बचाए नथा रखनि, पर उहे पैसो ख़तमु थी वञण जी सूरत में ईअं बुखूं था कढनि जीअं रोज़ा रखिबा आहिनि। अॼु जे दौर में जॾहिं सोशल मीडिया इंसान खे इज़हार जी बेमिसाल आज़ादी ॾिनी आहे, तॾहिं उन सां गॾु ग़लति ॼाण, अफ़वाहुनि ऐं अधूरी जानकारीअ जे प्रचार प्रसार में बि वाधारो थियो आहे। को बि मतभेद कुझु ई लम्हनि में वॾे बहस में तब्दील थी सघे थो। तॾहिं हीअ चवणी असांखे हिकु अहम सबक थी सेखारे त कंहिं बि मामले में फ़ैसिलो हिकु तरफ़ी ॻाल्हि ॿुधी न करणु खपे। ॿुधियल ॿुधायल ॻाल्हि ते यकीन न कर, अहिड़ी सार्वजनिक ज्ञान जी ताक़ीद अॼु जाली ख़बरुनि ऐं सोशल मीडिया जी अफ़वाहुनि वारे दौर में वधीक अहम थी वई आहे। साॻी तरह गॾियल कम लाइ उनजो ॿियो रुख साम्हूं अचे थो। हिकु माण्हू जी क्षमता या सम्झ सीमित थी सघे थी, पर गॾियल कोशिशुनि सां वॾा नतीजा पैदा करे सघजनि था। अहिड़ीअ तरह ठलो चणो वॼे घणो वारी चवणी उन्हनि हालतुनि ते लागू थी सघे थी जिते हक़ीक़ी इल्म या कामयाबीअ खां वधीक उन जी नुमाइश नज़र अचे थी। सोशल मीडिया ते नज़र ईंदड़ चमक दमक ऐं हक़ीक़ी ज़िंदगीअ जे विच में फ़र्क़ु सम्झण लाइ समुझ ऐं सियाणप जी ज़रूरत आहे। चवणियूं नैतिक शिक्षा या अख़लाक़ी तालीम जो बि हिकु ताक़तवर ज़रियो थी सघनि थियूं। इहे ॿारनि ऐं नौजवाननि खे डिघनि डिघनि प्रवचननि खां सवाइ ई ज़िंदगी जे बुनियादी क़दुरनि या जीवन मूल्यनि सां परिचित कराइनि थियूं। सच जी हमेशह जीत थींदी आहे, ॿधीअ में ताक़त आहे, जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी। अहिड़ा ख़्याल असांखे ज़िम्मेवारी, सहकार ऐं अमल जे नतीजे जो अहसासु ॾियारनि था। अॼु जॾहिं ज़िंदगीअ में मुक़ाबिलो या प्रतियोगिता तमामु घणो वधी वई आहे ऐं कामयाबीअ खे अक्सर दौलत, उहिदे या शोहरत सां मापियो थो वञे, तॾहिं चवणियूं असांखे यादि ॾियारनि थियूं त ज़िंदगी रुॻो कामयाबियुनि जो ई नालो न आहे। किरदार, रिश्ता, भरोसो, सब्र ऐं इंसानियत बि ज़िंदगी जी अहम पूंजी आहिनि। पर हर चवणीअ खे अखियूं ॿूटे क़बूल करणु मुनासिबु न आहे। इहो बि ज़हन में रखणु ज़रूरी आहे त सभई चवणियूं हर दौर जी हालत में हिकु जहिड़ियूं दुरुस्त नथियूं थी सघनि। कुझु चवणियूं उन वक़्त जे निज़ाम, व्यक्तिगत भेदभावनि या सामाजिक परंपराउनि मां पैदा थियल हालतुनि मूजिबि पैदा थी सघनि थियूं। समाज हर दौर में बदिलजंदो रहे थो, इन करे चवणियुनि खे बि अॼोकियुनि हालतुनि अनुसार जांचे, परखे, सोच वीचार करे ई लागू करणु खपे। कंहिं चवणी जो पुराणे वक़्त में वजूद में अचणु ई पाण मुरादो उन जो दुरुस्त हुजण जो सबूत न आहे। असांखे ॾिसणु घुरिजे त उन में लिकल ख़्याल अॼु जे ज़माने में जीवन मूल्यनि, समानता, स्वतंत्रता ऐं वैज्ञानिक सोच सां ठहिकी अचे थो या न। तंहिं करे चवणियुनि खे अंधविश्वास वांगुरु न पर अनुभव ऐं सोच जी कसोटीअ ते कसे पोइ ई क़बूल करणु घुरिजे। हक़ीक़त में चवणियुनि जी असुल ताक़त लफ़्ज़नि में न पर उन्हनि जे पोयां लिकल इंसानी अनुभव ऐं मुशाहिदे में आहे। असांजे वॾड़नि वटि शायदि फेसबुक, व्हाट्सएप या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा लफ़्ज़ न हुआ, पर इंसान ते भरोसो करणु, ॻाल्हि जी तसदीक करणु ऐं जल्दी फ़ैसिलो न करण जा अनुभव उन्हनि वटि बि हुआ। अॼु जी नौजवान पीढ़ीअ लाइ सिर्फ़ु चवणियुनि खे यादि कराइणु शायदि काफ़ी न हुजे, ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त उन्हनि खे आधुनिक मिसालनि सां सम्झायो वञे। जेकॾहिं सेखारींदड़ हिकु हथ सां ताड़ी न वॼंदी आहे खे सिर्फ़ु यादि कराइण बदिरां सोशल मीडिया ते कंहिं विवाद सां जोड़े सम्झाए या जेको पोखे

अखियुनि ते सो लुड़ंदो खे शिक्षा सिहत ऐं माहौल सां ॻंढे बयानु करे त चवणी किताब मां निकिरी ज़िंदगी जो हिसो बणिजी सघे थी। इन रीति चवणियूं म्यूज़ियम में रखियल गुज़िरियल वक़्त जूं शयूं न रहंदियूं, पर अॼु जे इंसान सां ॻाल्हाईंदड़ जीअरी जाॻंदी सियाणप बणिजी पवंदियूं। निष्कर्ष रूप में चई सघूं था

0: अञा बि साॻी आहे। इन करे चवणनि खे वक़्त जी कसोटी ते परखणु, उन्हनि जे अंदरि लिकल इंसानी अनुभव ऐं सिख्या खे समुझणु ऐं आधुनिक ज़िंदगीअ सां नई माना खे ॻंढणु घुरिजे। छो त चवणी माज़ीअ में जनम वठे थी, पर उन जी माना हर दौर में नओं जनम वठी सघे थी। ऐं शायदि चवणियुनि जी असुल दायमी ताक़त बि इहा ई आहे त उहे गुज़िरियल पीढ़ियुनि जी गॾु कयल या संचित सियाणप खे ईंदड़ पीढ़ियुनि ताईं पहुचाइनि थियूं।
1: महिरबानी संतमुखानी जी इन विशेष वार्ता लाइ। साथियों, तव्हां सभई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल खे त सुञाणो ई था, पर छा तव्हांखे ख़बर आहे त उन्हनि जा वॾा भाउ श्री विठल भाई पटेल बि उन्हनि जीअं ई हिकु महान स्वतंत्रता सेनानी ऐं देश भक्त हुआ। विठल भाई पटेल बि पंहिंजी सॼी हयाती अलवतनी ऐं मुल्क जी शेवा लाइ क़ुर्बान कई। ब्रिटिश हुकूमत जे साम्हूं उन्हनि सदाई बेटप थी पंहिंजी ॻाल्हि रखी ऐं देशवासियुनि जे हित ऐं अधिकारनि जी हिफ़ाज़त कई। अॼु 27 सितंबर उन वीर स्वतंत्रता सेनानी जी जयंती आहे। उन्हनि जे चरणनि में असांजो सदाई नमन। शायर चए थो, बाहि मजबूर जी महफ़िल खे लॻायूं साथी, जोत जा दिल जे विसाणी सां जलायूं साथी, आहे इंसान जे सिर ते ग़ुलामीअ जो दाग, साफ़ सो दाग ग़ुलामीअ जो मिटायूं साथी। साथियों, 28 सितंबर जयंती आहे वीर शहीद भगत सिंह जी। महज़ 23 वारनि जी नंढड़ी उमिरि, जंहिं उमिरि में नौजवान पंहिंजे ख़ूबसूरत आईंदे जा ख़्वाब ॾिसंदा आहिनि, उन उमिरि में भगत सिंह रुगो हिकु ई ख़्वाबु ॾिठो, सो हो आज़ाद भारत जो। अंग्रेज़ी हुकूमत भगत सिंह खे सूर्य ते चाढ़ण जी सज़ा मुक़ररु कई, पर सूर्य ते चढ़ण वक़्त बि भगत सिंह जे चेहरे ते न डपु हो न अफ़सोस, बसि हिकु शांत मुर्क हुअसि। सूर्य खे हुन पाण गिचीअ में ईअं पातई जीअं आज़ादीअ जी माला हुजे। अॼु जॾहिं असां सभई इन आज़ाद मुल्क में साह था खणूं, त भगत सिंह जी हयातीअ जा किसा ॿुधी दिलि में दर्द बि अचे थो ऐं फ़ख्रु बि। भारत माता जे हिन अमर सपूत खे शत शत नमन आहे। अचो त ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में अर्जुन हासत पारां लिखियलु हीउ गीत।

दोस्तों 28 सितंबर वीर भगत सिंह सां गॾु भारत जी स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी जयंती बि आहे। ही उन डात जे समुंड खे यादि करण जो ॾींहुं आहे जंहिं नई चाहे पुराणी हर टईअ खे प्रभावित कयो। आवाज़ जो अहिड़ो जादू जो समय जी सीमा खां परे आहे। लता जी जी आवाज़ में उहा रुहानियत हुई जो लफ़्ज़ रुगो कननि ताईं न आत्मा के छुअंदा हुआ। लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो न हो, ही गीत जैमें विछोड़े जो ड्रप ए प्रेम जी पराकाष्ठा गड थियूं डिसजन, या वरी ए मेरे वतन के लोगों गीत जै हर भारतवासी सा गड उन वक्त जे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अखियुन के भी नम करे छड़ियो। लता जी जा केतरा ही गीत एक मिसाल आहिन। लता जी संघर्ष जी भट्टी में तपी सोन ठही निकती हुई। नंढड़ी उम्र में पिता जो स्वर्गवास ए कुटुंब जी जिम्मेवारी सवली न हुई, पर लता जी हार न मनी। साधना अहड़ी पक्की जो हर सुर हर राग संदन अग्या नतमस्तक थी वियो। लता जी अज भले ही शरीर सा असांजे विच में न हुजन, पर पंहिंजे गीतन ज़रिए अमर आहिन। सिंधी भाषा जी खुशकिस्मती आहे जो सुरन जी इन देवी केतरन ही सिंधी गीतन के भी पहेंजी आवाज सा सजायो आ। उन्हन जी जयंती ते इहो ही गीत याद अचे थो, मेरी आवाज ही पहचान है। सचपच भारत देश इन पहचान के युगन युगन ताई याद कंदो। अचो त बुधूं था लता मंगेशकर जी ही आवाज़ में गोवर्धन भारती पारां लिखियल ए सी अर्जुन जे संगीत सां सजायल ही गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम में हाणे वक्त आहे तव्हां ताईं ज़रूरी ॼाण पहुचाइण जो। जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर ई हूंदी त 17 सितंबर खां 17 अक्टूबर ताईं सेवा से संकल्प अभियान हली रहियो आहे, जंहिंजो उद्देश आहे सेवा से समाज, संकल्प से विकसित भारत। इन दौरान स्वास्थ्य सेवाऊं हलायूं थी वञनि, प्रतियोगिताऊं थी करायूं वञनि, योजनाउनि जी ॼाण देशवासियुनि ताईं थी पहुचाइजे। इन्हीअ कड़ी में मां ॼाण थी ॾियणु चाहियां प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बाबति। इन योजना जो उद्देश सूक्ष्म ऐं लघु वापारियुनि खे सवलो ऐं बिना गारंटी जो लोन उपलब्ध कराइणु आहे। हिन योजना जे अंतर्गत 50,000 खां वठी 20 लख ताईं जो लोन ॾिनो वेंदो आहे। लोन जी प्रोसेसिंग फी तमामु घटि आहे ऐं मुद्रा कार्ड वर्किंग कैपिटल लाइ कार्ड जी सुविधा बि आहे। त बिल्कुल जेके नंढा वापारी या नया वापारी आहिनि से इन योजना जो लाभ वठी सघनि था। साथियों, हाणे ॻाल्हि कंदासीं तालाबनि जे बारे में। असां ॾिसूं था त असांजे शहर जा तालाब केतिरा प्रदूषित थी चुका आहिनि। तालाब जो ई पाणी सॼे शहर जी पाणीअ जी आपूर्ति जो स्त्रोत आहे। इहो ई पाणी असांजे घरनि ताईं वरी थो पहुचे। प्रशासन त पंहिंजा कम लॻातार करे ही थी, पर असांजी बि ज़िमेदारी आहे त असीं जॾहिं बि घुमणु फिरणु या पिकनिक लाइ कॾहिं तालाब ते वञूं त उते गंदगी न फैलायूं। खाधे पीते जा रैपर, प्लास्टिक जी बोतलूं या को प्लास्टिक जो खिलौनो, इहे सभु तालाब में न फिटी कयूं। छो जो दोस्तो, जल आहे त जीवन आहे। त दोस्तो, इन ॼाण सां गॾु ई असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्त बि समाप्त थो थिए। उमेदु आहे त तव्हांखे ही कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार, पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजबो, सभ जो भलो।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। इसका प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया गया।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये प्रसारण आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात। हिंदी और संस्कृत भाषा में ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। समय याद रखिए, सुबह 11 बजे।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों आगर मालवा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 से अधिक लाभार्थी बहनों के खातों में सितंबर माह की 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने जिले में 2,54,00,000 रुपए की लागत के 50 विकास कार्यों का लोकार्पण और 2,25,00,000 रुपए की लागत के 33 कार्यों का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जिले का चहुमुखी विकास हो रहा है। यहां पर 4,000 करोड़ की लागत से आलू आधारित उद्योगों की स्थापना हो रही है। वहीं पर 300 से अधिक अन्य उद्योग भी लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत बीते दिनों एक दिवसीय प्रवास पर आगरमालवा पहुंचे। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी के दर्शन किए। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने बीते दिनों सर्किट हाउस पर सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा की। इस मौके पर कलेक्टर शेर सिंह मीणा और जिला पंचायत सीईओ ने प्रभारी मंत्री को शिविरों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आगरमालवा स्थित मोती सागर तालाब के कमलकुंडी पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। इसके साथ ही पूरे जिले में लगभग 3,62,500 से अधिक दीयों की रोशनी की गई। नमो सेवा अभियान के तहत आगरमालवा जिले के नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 20 स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा आगरमालवा जिला अस्पताल के लिए नई हेमोडायलिसिस मशीन, मय आरओ प्लांट एवं 3 KV ऑनलाइन UPS करीब 10,00,000 रुपए की राशि सांसद निधि से स्वीकृत की गई है। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित आगरमालवा जिले की चयनित ग्राम पंचायतों शिवगढ़, महुड़िया, भीमाखेड़ी, निपनिया, हनुमान, गैलाना, खनोटा, देहरी, गुर्जर, करकड़िया, अमरकोट पंचायतों के 19 ग्रामों में प्रत्येक सप्ताह 3 दिवसीय शिविर पंचायत स्तर पर आयोजित किए गए। वहीं आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होगा। 29 सितंबर को मतदान में 15 वार्ड के 13,843 मतदाता कुल 17 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीएम हेल्पलाइन के तहत आगरमालवा जिले में आमजनों की 81% शिकायतों का निराकरण करते हुए जिला शिकायत निराकरण में ए ग्रेड हासिल किया है। वहीं युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा में बीते दिनों आयोजित हुए रोजगार मेले में 83 शिक्षित बेरोजगारों का प्रारंभिक चयन किया गया। वहीं स्वरोजगार के तहत 86 हितग्राहियों को 52,00,000 रुपए के स्वीकृति पत्र एवं ऋण वितरित किए गए। इसके साथ ही स्वरोजगार के लिए 45 आवेदकों का पंजीयन भी किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या को कम करने के उद्देश्य से आगरमालवा पुलिस द्वारा बीते दिनों मिशन जीवन रक्षक अभियान की शुरुआत के मौके पर पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने नागरिकों से संवाद करते हुए CPR गोल्डन आवर तथा राहवीर योजना के संबंध में जानकारी दी। वहीं डॉक्टरों और उनकी टीम ने लोगों को प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। आपदा मित्र योजना के तहत आगरमालवा जिले में नामांकित 125 आपदा मित्रों को पिछले दिनों दिए गए 7 दिवसीय प्रशिक्षण में समस्त प्रकार की आपदाओं, दुर्घटना से बचाव एवं तकनीकी विषय पर SDERF तथा होमगार्ड के जवानों द्वारा समझाया गया। आगरमालवा जिले के वृंदावन ग्राम तनोडिया में बीते दिनों आयोजित किए गए पशु चिकित्सा शिविर में 238 पशुओं का उपचार कर निःशुल्क औषधि वितरण किया गया। वहीं नस्ल सुधार के लिए 4 कृत्रिम गर्भाधान किए गए। इस मौके पर योजना के तहत चयनित पशुपालकों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। आगरमालवा जिले में सोयाबीन की फसल को रोग और कीट से बचाने की सलाह देने के लिए कृषि विभाग के अमले द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों में किसानों के खेतों में जाकर फसल निरीक्षण कर रोगों के प्रारंभिक लक्षण दिखते ही तत्काल नियंत्रण करने के लिए दवाइयों के छिड़काव के साथ अन्य उपाय अपनाने की सलाह दी गई। हाल ही में आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर के बाहर पुलिया से तेज बारिश में एक चार पहिया वाहन के बह जाने से कार में सवार उड़ीसा निवासी 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय लेते हुए रात 8 बजे के बाद किसी भी प्रकार के हवन, यज्ञ और अनुष्ठान आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगरमालवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 10:05 का समय हो रहा है। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजौरिया। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, रेशमा और राजेश साहू। आप सब सुनना चाहते हैं डर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिवहरी का और अपने सुरों से सजाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है जलगांव जंक्शन से विदर्भ श्रोता क्लब द्वारा। आप हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नवावकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष, तेलंगाना भोगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फिजानुल्ला, फरहान, समायरा, आजमीन और गुड़िया, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत, साथ ही साथ एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनवी बोट और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन के साथ कविता गौड़। आप सब सुनना चाहते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है विवाह फिल्म के इस गीत के लिए, जिसे सुरों से सजाया और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने। माफ कीजिएगा, बोल और संगीत है रविंद्र जैन का, स्वर हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल के। इस गीत को सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निपी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह और रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह। बीर शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे। अनारकली वजराव जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीको की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान नेत्रहीन, डांगरी से बाबूराम जयपाल दिव्यांग, पटियाली रोड गुंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, बेबी अरेबा और हबीबा, नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा, गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। आप सब सुनना चाहते हैं वीर ज़ारा फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। अगली फरमाइश है बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना भवन पाटिल, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली। ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद्र यादव, रागिनी रिया, रेणु और रौनिका यादव। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। आप सब सुनना चाहते हैं वीर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र में। आप सभी सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9425702768। फिल्म और गीत के नाम के साथ साथ अपना नाम और पता हमें लिख भेजें। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुढ़ामा और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, मोगा पंजाब से जगदीश सिंह मठाड़ू, वीरपाल कौर, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश है काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा परिधि और मायरा। आप सब सुनिए वास्तव फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने और इस गीत को अपने सुरों से सजाया है सोनू निगम ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, जयश्री महेत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय। ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतीन कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोना मदीबा और दानिश अंसारी। गुला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य। सालिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, असमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। आप सब सुनिए तनुवेट मनु फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है राजशेखर ने, स्वर और संगीत है कृष्णा का, साथ ही साथ इसमें अपना स्वर वडाली बदर्स ने भी दिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और
1: शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। 10:55 होने को हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रसारण कुछ ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूं यार
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
4: तो क्या करूं
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा
5: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार कितनी बातें भूल गया हूँ तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है
7: कहाँ से पता चलेगा
6: उद्गम से

0: रिसर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें, जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की यह सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी

आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है। और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढ़ेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव
देश का प्रथम सूर्यग्राम

सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था,
तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था।
इन दोनों ही टूर्नामेंट में

वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई हैं। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की

0: देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं इन श्रोताओं की पसंद का गीत, जिन्होंने सुनना चाहा है उपहार फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फरमाइश भेजी 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्ठा बजाज, साहिल बजाज, नेपाल पैलेस सागर से पतराया, तिलक राणा, मोनिका राणा, मीना, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन का। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

अगला गीत घर फिल्म से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे आवाज दी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। संगीत आरडी बर्मन का है और गुलजार ने इस गीत को लिखा। सुना चाहा प्रमिलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से पत्राया कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, सायमा पोत्रा, मुश्ताबा खान, अफिया खान, राव भाई और शहीद भाई का। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का घर फिल्म का गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पहचान फिल्म से, जिसे सुना चाहा राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। गोवर्धन जिला वाशिम से ये पत्र आया है। श्री रविंद्र पवार, मीनाबाई पवार, श्रीकांत, एकनाथ काले और समस्त परिवार के सदस्यों का। इसी गीत की फरमाइश भेजी घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का। तो इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत पिया का घर फिल्म से हमने लिया है। आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इसे सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इसी गीत की फरमाइश भेजी है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ बुरहानपुर मुकाम पोस्ट से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज, बिटिया रोजमीन, तैमूर भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ, रोजूबाई, सनी बाबू और परूद तड़वी ने। इसी गीत की फरमाइश पहुंचाई है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, टुकटुक, श्वेता और सुमिता गवाड़कर ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी की श्रोताओं की पसंद का पिया का घर फिल्म का ये गाना।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया पिया का घर फिल्म का ये गाना। इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यही समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब
2: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 9।

0: अरे भैया खोलत हैं, हैं? अरे काय घंटी के प्राण ले रहे हो
1: क्या रामू काका? आप हमेशा दरवाजा खोलने में देर करते हैं।
0: अरे जी नहीं भैया, हम तो आपकी तेज चलत मोटर के ब्रेक सुन के ही समझ लेते हैं कि आप आई हैं, सो फौरन दरवाजा खोलबे के लाने आ जाते हैं।
1: क्या रामू काका, आप भी शिक्षा देने लगते हैं।
0: अरे शिक्षा नहीं भैया, जरूरी बात है कि मोटर धीरे चलाओ ताकि आप भी सुखी रहो और राह चलवे बारे भी सुखी रहें।
1: अच्छा काका, ये लोग कान पकड़े।
0: अरे नहीं भैया,
1: अब से धीमे ही चलाया करूंगा।
0: अरे भैया हमारे आगे कान मत पकड़ो, अरे हम तो ठहरे आपके नौकर चाकर।
1: रामू काका, किसने कहा आप नौकर हैं? आप हमारे काका हैं काका।
0: अरे नहीं भैया,
1: हमें तो याद भी नहीं कब हमारे माँ बाप कब हमें आपकी गोद में डालकर चले गए।
0: ऐसा मत ही कहो भैया, अब वो आपके दोस्त है ना, वो गौरी शंकर साहब भैया, वो आए थे।
1: क्या गौरी आया था? क्या कह रहा था?
0: अरे भैया वो कह रहे थे कि संजा को आएंगे और एक किताब दे गए।
1: कविताओं की किताब होगी?
0: अब भैया हमें पतो नहीं, वो धरी है टेबल की दराज में। हाँ
1: ठीक है काका, हम निकाल लेते हैं। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, कविताओं की ही किताब है। काका आज शाम को अच्छे से शिकंजी बनाना और साथ में बढ़िया नींबू भी।
0: भैया आप कोनू चिंता मत ही करो, हम है ना। हाँ आप तो बस मुंह हाथ धो लो और फिर बस।
1: ठीक है काका। अरे कौन है?
2: हम है पोस्टमैन।
1: काका देखो पोस्टमैन है।
0: जी भैया।
1: चिट्ठी ले लीजिए।
0: अच्छी बात।
2: हाँ काका कैसे हो?
0: ठीक है भैया, ठीक है।
2: ये लो ये चिट्ठी है भैया तुम्हारी।
0: अच्छा ले आ।
2: हाँ ये लो। चलूं काका?
0: जी भैया। राम राम।
1: हाँ लाओ काका चिट्ठी दो।
0: लीजिए भैया लीजिए, ये लो चिट्ठी। किनकी है भैया?
1: हाँ बताता हूँ काका। बहू रानी की है।
0: सब ठीक ठाक तो है ना भैया?
1: हाँ हाँ काका सब ठीक है। लगता है गौरी आ गया। ये उसी के स्कूटर की आवाज है।
0: भैया आप ठीक है क्या? तो गौरी शंकर भैया को स्कूटर है। हाँ हम किवाड़ खोलें दे।
1: खोलो काका।
0: आओ भैया आओ।
2: राम राम काका। राम राम।
0: राम राम भैया। राम राम। आओ आओ अंदर आ जाओ।
2: अच्छा अच्छा
0: भैया, ये तुम्हारी बाढ़ जो हो रहा है।
2: काका वो आपने बता तो दिया था ना कि मैं आया था और वो अब एक किताब दे गया था आपको।
0: हाँ कैसी बातें करत हो भैया। का आपने हमें भुलक्कड़ समझो?
2: अरे नहीं नहीं काका, नहीं नहीं नहीं।
1: अरे आजा गौरी इधर ड्राइंग रूम में आजा।
2: अच्छा अच्छा अरे आया आया आया। क्यों यार उठ के स्वागत भी नहीं कर सकता तू?
1: यार तू जो ये किताब दे गया था उसी में खो गया हूँ। क्या भावुक कविता है सच्ची, कवि ने कलेजा शब्दों में रख दिया है दोस्त।
2: भाई मुझे अच्छा लगा था ये कविता संग्रह तो ले आया,
1: पर क्या
2: यार तुझे तो कविताएं पसंद नहीं आती है, ये संग्रह तो मैं भाभी के लिए लेकर आया था। खैर और सुना क्या हाल है?
1: हाल तो गर्मी ने बेहाल कर रखे हैं दोस्त।
2: हाँ यार ये तो तू ठीक कहता है, अभी से ये हाल है तो जब गर्मी का मौसम आएगा सोचो तब क्या होगा।
1: होगा क्या? धूप में तपेंगे।
2: तेरा क्या, तू ठहरा कार वाला। अरे मरण तो हमारी है भैया, स्कूटर पर लू के थपेड़े लगते।
1: रामू काका।
0: जी भैया।
1: जरा शिकंजी बना लाओ और सुनो उसमें बढ़िया बर्फ भी डालकर लाना।
0: अरे भैया केवी की कोनो जरूरत नहीं है, हम वो भी तैयार कर रहे थे। अरे जे लो जग भर के शिकंजी।
2: अरे काका भाई वाह वाह यार वाह, बर्फ डरी शिकंजी का जवाब नहीं।
0: अरे गौरी भैया किनसे भी तो कहो कि बहु रानी खोलो वाले हर बड़ो सुनो सुनो लगा।
2: सही बात यार।
0: अब देखो
2: ये सिगरेट, ये कितनी सिगरेट पीता है तू यार?
1: कुछ नहीं यार, दो चार पी लेता हूँ बस।
0: अरे काहे झूठ बोला था भैया, अरे दो डुबिया तो रोज ही पी जाते हैं गौरी भैया जी।
2: बेटा बनारसी छोड़ दे ये खून सुखाने की लत।
1: जी हाँ चाचा जी, आदरणीय छोड़ दूंगा।
0: अरे मजाक नहीं भैया, बहू रानी भी कितने एक बार कह चुकी
2: बिल्कुल
0: सिगरेट छोड़वे की।

0: ठीक कहती हो नंदनी, क्या लिख रही हो?
1: नहीं,
0: छुपा क्यों लेती हो?
1: मैं चाहती हूँ मेरी कविताएं कोई ना पढ़े, बस मैं ही लिखूं और मैं ही पढ़ूं।
0: नंदनी, ये कविताएं, ये कहानियां, ये लेख, उपन्यास अगर लोग नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा कि साहित्यकार कैसा लिख रहा है?
1: एक गुट के साहित्यकार अपने ही गुट के लोगों की ही तारीफ करते हैं।
0: सही है, जैसे मैं अपने गुट की हृदय नंदनी जी की कविताओं की तारीफ करता हूँ।
1: ये बिल्कुल ठीक नहीं है मुंशी बनारसी प्रसाद जी, आप फेवर और पार्शलिटी कर रहे हैं।
0: भाई, जब दुनिया का चलन ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं।
1: चलिए चलिए, अब आप हाथ मुंह धो लें, मैं चाय और पकोड़े बना के लाती हूँ।
0: बरसात में तो हाथ मुंह दोनों धुल गए हैं। ये रामुका का कहाँ गए?
1: अरे भाई, उन्हें बुखार आ गया था, दवा देकर मैंने सुला दिया है। ओफो, अब ये क्या, घर आए नहीं कि सिगरेट जला रहे हो?
0: अरे रामू काका, कैसे हो?
2: हम ठीक ही हैं भैया, बहू रानी तो बेकार की फिक्र करत हैं, चाय पकोड़े हम ही बनाए लात।
0: नहीं रामू काका, चाय पकोड़े तुम नहीं बनाओगे, आराम करो।
2: अरे भैया, आराम ही तो करत रहे थे पूरे दिन।
1: अब देखो ना जी, बिल्कुल बात नहीं मानते रामू काका।
2: अब बहू रानी, भैया भी कौन सी बात मानत हैं?
0: अरे अरे अरे, बात तुम्हारी हो रही थी काका और तुमने हमें ही लपेट लिया।
2: अरे बहू रानी, इनसे सिगरेट छोड़वा दो बस।
1: अरे कोशिश तो करती रहती हूँ काका, पर ये जो सिगरेट है ना, मेरी सौत ही बन गई है अब।
0: छुट्टी नहीं है जालिम, मुंह से ये लगी हुई।
1: सुनिए मिस्टर, ये शेर ना सिगरेट के लिए नहीं है।
0: तो जिसके लिए है वो शुरू कर दूं?
1: खबरदार। हाँ
0: बाबा, गुस्सा नहीं हो, ये लो, ये बुझा देता हूँ।
1: अब हुई ना बात।
2: भैया जे हुई ना बात से आनो जैसी।
0: तुम सिगरेट को सौत कह रही थी ना, अगर वास्तव में सौत ले आया तो?
1: हाँ तो मैं उन महारानी का चप्पलों से भरपूर स्वागत करूंगी। हाँ
2: जे ठीक बात कही बहू रानी।
0: क्या काका, तुम भी बहुरानी की तरफ हो गए? और हाँ, तुमको तो आराम करने की बात हो रही थी ना, चलो चलो चल कर लेटो, नहीं तो तुम्हारी देखभाल के लिए एक सुंदर सी नर्स बुला लूंगा।
2: अरे भैया बस आप तो।
1: अरे बैठे रहने दो ना, मैं चाय पकौड़ी बनाकर लाती हूँ, चाय के साथ दवा लेकर आराम कर लेना।
2: चाय पकौड़ी हम?
0: बैठो काका बैठो, तुम्हारी बहुरानी बना के ला तो रही है।
2: भैया ऐसी बहू रानी सबको मिले और जुग जुग जिए, भगवान से जय प्रार्थना है मोरी।
0: और हम?
2: अरे आप तो हीरा हैं भैया, हीरा।
0: क्यों, वो तुम्हें मायके कब जाना है?
1: क्यों बार बार क्यों पूछ रहे हो, जब कभी रिजर्वेशन मिल जाएगा चले जाऊंगी। और हाँ, टिकट लाए क्या?
0: अरे लाया हूँ बाबा, कल का अवेलेबल था, फिर एक महीने बाद मिल रहा था।
1: ओ ये तो ठीक ही रहा।
0: अरे वो बिट्टू नहीं दिख रहा?
1: सो रहा है ना।
0: अच्छा सुनो, सामान वगैरह सब अच्छे से पैक कर लिया?
1: हाँ हाँ वो तो सब हो गया।
0: ठीक है।
1: देखो जी मैं जा रही हूँ, पर दो बातें, एक तो तुम गाड़ी धीमे चलाओगे और दूसरे सिगरेट नहीं पियोगे।
0: वादा, दोनों बातों के लिए मुंशी बनारसी प्रसाद वादा करते हैं।
3: यार भाभी ठीक वादा करवा गई थी तुझसे, तू कोशिश क्यों नहीं करता?
0: ये ठीक बात हुई।
3: कौन सी?
0: यही कि दोस्त वादे टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब होती है। अरे सुन, एक आइडिया आया।
3: आइडिया कैसा?
0: तेरी भाभी को जलाने का।
3: जलाने का?
0: हाँ यार, मैं चिट्ठी लिखता हूँ कि मेरे घर कोई रहने आ गई है।
3: क्या क्या क्या?
0: हाँ यार, ये पढ़कर वो दौड़ी चली आएगी, एक महीना हो गया मायके जाकर खूब ही रम गई है।
3: देख देख वो चिट्ठी दिखा ना मुझे है।
0: प्रेम पत्र होता तो नहीं पढ़ाता, परंतु इसे दिखा भी दूंगा और पढ़ा भी दूंगा।
3: ठीक है ठीक है यार, तो फिर मैं चलता हूँ।
0: ठीक है, अरे लेकिन पहले स्कूटर तो स्टार्ट कर ले।

0: अरे आउट है भैया, को है
1: काका? राम राम
0: राम राम
1: बनारसी राम राम बनारसी है क्या काका?
0: अरे हाँ भैया, गौरी भैया आज भी बैठक में बैठे कछु लिख रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा क्यों भैया, चिट्ठी पूरी हुई कि नहीं?
2: अरे पूरी हो गई भाई, आजा आजा आजा आ बैठ।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ पूरी हो गई और साइन भी कर दिए आखिर में।
1: अरे वाह, सुनाओ सुनाओ।
2: तो सुन प्यारे।
1: हाँ सुना।
2: प्रिय हृदय नंदिनी नायक, उस दिन न जाने कैसे मेरी तबीयत चल गई। जिस तरह तुम अपनी लिखी कविता को छिपा लिया करती हो, उसी तरह मैं उसे छुपा कर घर में लाया और कुर्सी पर विभूषित कर दिया।
1: वाह,
2: मेरा मन कहता था कि तुम गैर हाजिर हो और तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे घर में किसी अनजान को लाना और जगह भी नहीं देनी चाहिए थी।
1: ठीक,
2: पर ये क्या कोई अपराध है? जब मैं और तुम दूर कल्याण में पटवारी जी के पीपल के पेड़ के नीचे मिले थे, तब अपने बीच भी पहचान कहाँ थी?
1: ठीक ठीक,
2: जान पहचान तो शादी के बाद ही हुई।
1: ठीक,
2: सब कुछ नियत समय पर जान पहचान बन जाता है।
1: हाँ।
2: ये जो बिट्टू है जिसे तुम अपनी गोद में लिए घूमती हो, यही कौन मेरे और तुम्हारे बाप दादों से परिचित था?
1: ठीक ठीक,
2: आज न जाने किस लोक से तुम्हारी गोद में आ बैठा है। कविता का अपरिचित विचार मौलिक कहलाता है, तुमने तो अपने गोरखपुर के भाषण में कहा था।
1: कवि का अपरिचित विचार मौलिक कहलाता है? भाई वो भाभी हैं तो जीनियस, तभी तो कवि सम्मेलनों और विचार गोष्ठियों में आमंत्रित होती रहती हैं।
2: ये बात तो है। और सुन,
1: सुन
2: प्रिय नंदनी, कवि का तो अपरिचित विचार मौलिक कहलाता है, तुमने तो अपने एक गोरखपुर के भाषण में कहा था, सो इस देवी का मेरे घर में तुम्हारी गैर हाजिरी में भी पधारना मौलिक तो माना ही जाना चाहिए।
1: मौलिकता के साथ सुंदरता भी हो तो भाभी पर गहरा सोतिया प्रभाव पड़ेगा। परंतु तू लिख किस पर रहा है यार?
2: ये रहस्य है भैया, चुपचाप सुन।
1: सुना
2: है, हृदय नंदिनी जी की एक शर्त, शायद सुंदरता भी हो, सो ये देवी धवल शुभ्र वसना और ऐसी नपीतुली गठन की हैं कि अगर तुम होती तो तुम इन पर नव आगंतुक शीर्षक से एक कविता जरूर लिख देती। हाँ तो ये आई हैं। मुंह लगापन जरा इनमें ज्यादा है, शायद ये स्वभाव तुम्हें पसंद ना हो, किंतु तुम्हारे कवि जीवन के रिटायरिंग नेचर में और नेता जीवन के अभिनेतापन में जो मुंह बनाना, एकांत में बैठना और सैर सपाटे लगाना है, उसमें इनका मुंह लग जाने का स्वभाव बहुत भाएगा।
1: यार भाभी तुझे बहुत मारेगी।
2: अरे छोड़ और आगे सुन।
1: अच्छा सुना।
2: तुम्हारा काल तो अनंत ठहरा, वो जो कवियों का अनंत है, पर मैं तो गरीब इंसान नाम का जानवर हूँ। मेरे सुबह, दोपहर और शाम के बाद रात भी होती है।
1: वाह,
2: मेरी उम्र के बरस होते हैं, बरस के महीने, महीनों के दिन, दिन के घंटे, और घंटे भी टुकड़े टुकड़े में बटे होते हैं।
1: भाई वाह,
0: का भैया मंदिर के घंटे के टुकड़े?
2: अरे काका तुम तो चुप ही रहो, सुनते जाओ। हाँ एक काम करो, शिकंजी जरा ग्लास में डालो।
0: हाँ जी भैया,
1: मुझे भी थोड़ी सी।
0: हाँ जी भैया,
2: ठीक है। तो गौरी शंकर अब आगे सुन।
1: हाँ सुना।
2: मैं मृत हूँ, मुझे मृत साथी ही भाता है, अकर्मणी यानी दुनिया भी कामों में लगा हुआ। तुम अमर हो, अमराई का एकांत तुम्ही को शोभता भी है, ऐसे समय मेरा भी एक साथी हो तो तुम्हें क्या नाराजी होगी? पिछली बार जब हम लड़े थे तब तुम्ही ने तो कहा था,
3: बहुत दूरी से अपने पारिवारिक और आत्मीयता के आकर्षण छोड़कर जो तरुणियां अपना जीवन सौंपती हैं, उन पर टूट पड़ने की बजाय उनका आदर करना चाहिए, और तुम तो बस न जाने कैसे हो।
2: तुम्हारी ये बात मैंने कान पकड़कर मान ली थी, अब इन नव आगंतुका के आने पर भी मान लो, मैं तुम्हारे सदुपदेश को सपोर्ट करता हूँ। ये भी बहुत दूर से आई हैं, शुभ्र वर्णा।

0: और दूसरी ये नवागंतुका, इतनी चिट्ठी हो गई, ये है कौन यार? मुझे तो घर में कहीं कुछ नजर ही नहीं आता।
1: अरे बच्चू, यही तो रहस्य है। तू तो सुनते जा सुनते जा।
0: सुना सुना सुना।
1: प्री, जब वॉल्ट हिल्टमन की कविता पुस्तक के पन्नों को चूम लेती हूं, कृष्ण भगवान भी बांसुरी के होंठों पर अपने होंठ रखे रहते हैं, परंतु यही बात तुम्हें मंजूर नहीं होती। यदि मैंने तुम्हारे अपने मैके से यहां आने के पहले ही इन नव आगंतुका के होठों को अपने होठों के बीच ले लिया, तो मुझे आशा है तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी।
2: छी छी छी छी छी छी छी। अरे भैया, जो का करवे चले जा रहे हो।
1: काका, तुम इतना ध्यान मत लगाओ, ये तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। तुम
2: अच्छे
1: तो शिकंजी का ग्लास भरो।
2: भरत।
1: हाँ, और भैया तू गौर से सुन।
0: हाँ सुनाओ यार।
1: हाँ,
0: सुनाओ।
1: सुन प्रिय नंदिनी, इनमें एक आदत है, जब अपनी आदत से लाचार ये जल पड़ती हैं, तब लोगों पर जरूरत के या बिना जरूरत के कालिमा पोतने, ये तुम्हारी ही तरह डर कर खड़ी होती हैं।
0: ठीक।
1: पर इससे क्या, ये अपनी कहानी कहे जाएंगी और मैं इन्हें होंठ से चिपका जाऊंगा। इनकी जलन में शांति देना मुझे मेरा कर्तव्य मालूम होता है।
0: यार अब तो बता दे कि आखिर ये है कौन।
1: भैया सुन रहा, चुपचाप मैं कह रहा हूं सुन।
0: अच्छा भाई
1: हाँ
0: सुना सुना।
1: प्रिय हृदय नंदिनी, मैं मानता हूं कि ये बहुत सुंदर नहीं है, सदा बाग में गरीबी से दिन काटे हैं, अतः ठंडक गर्मी और बरसात तीनों ने अपने जौहर इन पर आजमाए हैं। किंतु जिस तरह तुम अपनी कविताओं में कहती हो कि प्रेम के ग्राहक को रूप का गुलाम नहीं होना चाहिए, सच पूछो तो तुम्हारी गैर हाजिरी में इन्हें पाकर तुम्हारी उस परम सूझ का अर्थ आज समझ आता है, और
0: पर
1: उसके आधार
0: भाई
1: पर मेरे होंठ तक बात आ गई है कि मैं इनसे कह दूं कि तुम मेरे पास ही रहो।
0: वाह।
2: अरे का भैया, जो उल्टो सीधो लिख रहे हो। अरे सिकंजी पियो, लियो, गरम हो रही है, जा लीजिए
1: थैंक यू
2: लीजिए।
1: काका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर नंदनी, एक दोष उनका मुझे और दिखता है, जिसे तुम्हारे सामने साफ साफ कह देना चाहता हूं। ये बड़े निराशावादी हैं, इनकी हर सांस से मानो अंधकार बिखरता है। क्या दुनिया में मुंह सीधे और मन के मेले लोगों की कमी है, जो प्यारे लगते हैं परंतु बड़ी कड़वी बात कहते हैं? फिर इनकी जलन में इनके मुंह से जो निकल जाए उसे कभी निगलने के लिए हमें उदार होना चाहिए, क्योंकि गांव में जब घर के चूल्हे का धुआं उठता है तो लोग घर छोड़कर भाग नहीं जाते, और जब चौके में अंगारे बिखरे रहते हैं तो लोग उन्हें हटाकर भोजन करने के लिए जगह बना ही लेते हैं।
0: यार वर्णन तो बहुत अच्छा है, बात भी ठीक है, पर भैया ये महिला है कौन?
1: बोल मत, बार बार कह रहा हूं बोल मत,
0: अरे
1: सुनता जा,
0: यार,
1: तू मेरा फ्लो खत्म कर
0: अच्छा
1: देता।
0: भैया चल
1: हाँ
0: सुना, आगे सुना। हाँ सुना।
1: सुन। हाँ तो प्रिय हृदय नंदिनी, इन नवेली के आने से तुम्हारी गैर हाजिरी में मेरा जी खूब रम रहा है, और तुम्हारे आने पर भी रमा रहेगा, क्योंकि तुम जब प्रसाद और पो सूर और गोविंदा ग्रज की रचनाओं से अपना जी रमाते समय मेरी भरपूर उपेक्षा करके कभी उस पर दुखी नहीं होती हो, तो मैं यदि उन देवी जी से अपना मन बहलाऊं तो तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर त्याग का उदाहरण भी देखना पड़ेगा, जो अपने पर मिटने को तत्पर हो उनका निरादर कैसे किया जाए, जो आत्मसमर्पण की ज्वाला जगाते रहे उनसे कैसे मुंह फेरा जाए, जो मेरे लिए तिल तिल मिटने को तैयार हो उसका निरादर कैसे किया जाए, जो जीते जी हृदय से चिपक कर छोटापन स्वीकार करने को प्रस्तुत है उस पर अपना बड़प्पन जताकर कैसे कहा जाए कि मेरे घर मत आओ।
0: यार तेरा ये रहस्यमय पन्ना और कितना लंबा है?
1: बस आखिरी पन्ना है। प्रिय नंदिनी, ऐसे जनसेवक देशी हो या विदेशी गुणज्ञ होने चाहिए, सो ये तारीफ के लायक गुण संपन्न है। भारतीयों में तो इस जाति के लोग अपने गुण को अपने मुंह पर लटकाए घूमते हैं, किंतु ये गुण का प्रदर्शन लेकर नहीं चलती, इनकी भलाई तो इनके रग रग में भरी हुई है, अतः मैंने इन नवेली मेहमान इनको अपने घर में जगह दे दी है। तुम नाराज मत होना, तुम्हारा मुंशी बनारसी प्रसाद। लो
0: वाह
1: गौरी, चिट्ठी पूरी।
0: भाई वाह।

0: मैं इसे मोड़ता हूँ।
1: ठीक।
0: और चौकोन लिफाफे में रखता हूँ।
1: ठीक है।
0: अरे एक मिनट, फुटनोट लिखना रह गया भाई।
1: है? अरे यार, इतनी रामायण लिखने के बाद भी कुछ कसर बाकी है।
0: ये लो, लिख दिया, बिट्टू को प्यार और मेरे होंठ। मेरे होंठ तो आजकल नवेली के लिए सुरक्षित हैं। रामू काका।
2: जी भैया।
0: इसे पोस्ट ऑफिस में डालो।
2: बहुत अच्छी।
1: अरे भैया, पता लिख लिया है?
0: बिल्कुल लिख दिया है।
1: ठीक है।
0: श्रीमती हृदय नंदिनी नायक, शैल नगर, पोस्ट ऑफिस वर्षा घाट, कैलाश प्रांत।
1: ठीक।
2: लो भैया, हम डाले आओ। लो। अरे कौन है भैया?
3: मैं हूँ काका, पोस्टमैन।
2: अरे ठहरो भैया, हम आ रहे हैं।
3: आओ। और भैया, काका कैसे हैं आप?
2: अरे ठीक हैं भैया।
3: हाँ, ये चिट्ठी लीजिए।
2: लाओ भैया लाओ। किनकी है
3: ये? तो तुम्हारे साहब की चिट्ठी है।
2: साहब की?
3: हाँ।
2: अच्छा भैया, बहुरानी ने भेजी है?
3: हाँ हाँ, श्रीमती नायक ने भेजी है।
2: अच्छा भैया।
3: हाँ, ये लो।
2: लाइए।
3: हाँ, चलता हूँ काका।
2: हाँ भैया।
3: अच्छा, राम राम।
2: राम राम भैया, राम राम।

0: अरे भैया, आपने आज मोटर के तेज ब्रेक नहीं लगाए?
1: नहीं रामू काका, मैंने तेज गाड़ी चलाना और ब्रेक लगाना छोड़ दिया।
0: वाह भैया।
1: आओ गौरीशंकर, आ जाओ।
0: अरे भैया, बहू रानी की चिट्ठी आ गई है।
1: अच्छा।
0: हाँ भैया।
1: चिट्ठी कहाँ है?
0: ओ, मेज की दराज में ही देख लो भैया।
2: पढ़ो यार, भाभी ने क्या लिखा है।
1: श्रीमान, अच्छा हुआ नए कवि नए विषय पर कविता लिखते हैं।
3: तो आपके पुराने कट्टर दिमाग ने भी जो कविता लिखी नए विषय पर लिखी, न वो भगवान पर है, न भक्तों पर, और ना ही देशभक्त पर ही, धूम्रपान ही पर सही।
2: क्या धूम्रपान?
1: चुपचाप सुन यार, आखिर तेरी भाभी कवियत्री हैं, इसलिए उसने ये रहस्य खोल लिया।
3: आप कवि बनने चले, ये तो अच्छा हुआ। विषय भी कैसा बढ़िया मिला है आपको, सिगरेट पर। ये विवेचन अभी ताजा ही ठहरेगा। 10-20 नवेलियां रोज राख करके आपकी सुरुचि बढ़ेगी। सारी शुक्ल वर्णा बेचारियां श्याम हो जाएंगी। उनके जलने भुनने में आपने साम में मेरे साथ ही ढूंढा। पहली की नवेली से मुझे डाह क्यों होने लगी भला, जब साक्षात नवेली के आने तक मैं धीरज धरने की बात सोचे हुए हूँ। हाँ, केवल एक ही डर है, धुएं से निकोटिन जहर आपके कलेजे में बढ़ेगा और वो आपके और बिट्टू दोनों के लिए हानिकारक होगा। इसके सिवा मुंह से आने वाली दुर्गंध और बढ़ेगी। सभ्यता में नवागता नवेलियों के सिवा बाजार में और भी चीजें मिलती हैं, किंतु जो प्रसाद और पो पर ताने कशी कर उसमें कश खींचने का लालच कोई देखे तो आश्चर्य क्या। अभी तक गृह जीवन का विनोद हमारे विषय स्वभावों में भी जीवित था, अब नवागत आदत से आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते ही स्वभाव को भी हानि पहुंचेगी, और जिसका परिणाम ये होगा कि आपकी आज की कविता कल वालियों में बदल जाएगी। और ये मैं चाह से कह रही हूँ। कितना अच्छा होता यदि ऐसा ही गद आपने बेचारी घर की मेहरी पर ही लिख दिया होता। वो स्वास्थ्य नाशक तो नहीं है, बर्तन साफ रखती है, स्वास्थ्य वर्धक है, या फिर रामू काका पर ही लिख दिया होता। वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, इसी से आप तंदुरुस्त रहते हैं। आपकी नहीं, युग के महाभावों की हृदय नंदनी।
2: क्या कहते हो बनारसी?
1: मैं सोच रहा था कि वो मेरे दुश्चरित्र होने पर लताड़ेंगी, किंतु उन्होंने मेरे गुड़ पात्र की चिंदियां बिखेर दी। आज से सिगरेट से भी तौबा।
2: भाई वाह, लेकिन क्यों?
1: यार दोस्त, बाजी में हार गया।
0: अरे गोरी भैया, जा भाई ना मार।

0: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 9। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट स्ट्राइक को एक दशक पूरा होने पर मन की बात के 138वें एपिसोड में आज कहा कि एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद का करारा जवाब देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बापू ने हमें स्वच्छता का मंत्र दिया है। स्वच्छता से जुड़े प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनभागीदारी से नदियों की सफाई ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास है। प्रधानमंत्री ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि हर नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल स्थित RCVP नरोन्हा अकादमी में मुख्यमंत्री स्टार्टअप संवाद के तहत युवाओं से संवाद कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 5 दिवसीय हाथी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। परासी गेट के पास 24 सितंबर से शुरू हुआ ये शिविर 28 सितंबर तक चलेगा। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच आज दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कार्यक्रम की शुरुआत में बात करेंगे हमारी भारतीय परंपरा पितृपक्ष की। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ जीवन को केवल वर्तमान तक सीमित करके नहीं देखा जाता। हम अपने अतीत को याद करते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे संस्कार छोड़ने की बात करते हैं। हमारी इसी महान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अवसर है पितृपक्ष, जो कि 26 सितंबर से शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष आते ही वातावरण में एक अलग ही भाव दिखाई देने लगता है। घर परिवार में लोग अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी और अन्य पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, दान और सेवा कार्य किए जाते हैं। लेकिन क्या पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा है? नहीं, इसके भीतर हमारी संस्कृति का एक बहुत सुंदर और गहरा संदेश छिपा हुआ है। वो है कृतज्ञता का संदेश। हम आज जहाँ हैं, वहाँ तक पहुँचने में केवल हमारा अपना प्रयास नहीं है, हमारे पीछे हमारे माता पिता का त्याग है, हमारे दादा दादी के संस्कार हैं, हमारे परिवार की अनेक पीढ़ी

पीढ़ियों का अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने कठिन परिस्थितियों में परिवार को संभाला, सीमित साधनों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। उन्होंने हमें जीवन जीने के तरीके सिखाए, रिश्तों की अहमियत बताई और समाज में मिलजुल कर रहने की सीख दी। इसलिए पितृपक्ष हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का अवसर देता है। एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, उसकी मजबूती उसकी जड़ों से ही होती है। ठीक इसी तरह मनुष्य चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, उसकी पहचान और उसके संस्कार उसकी जड़ों से जुड़े होते हैं। हमारी जड़ें हैं हमारे पूर्वज। पितृपक्ष में हम उन्हीं जड़ों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। बहनों, पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान उनके जीवन काल में ही करें। अक्सर जब व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता तब उस व्यक्ति की खूबियां याद करते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जब हम माता पिता और हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हों तब हम उन्हें समय दें, उनकी बातें सुनें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि किसी बुजुर्ग के लिए सबसे बड़ा सम्मान महंगा उपहार नहीं बल्कि समय, अपनापन और सम्मान होता है। आज जब पूरी दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है तब अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ना हमें अपनी पहचान से जुड़े रखता है। पितृपक्ष हमें आधुनिक जीवन से पीछे जाने की शिक्षा नहीं देता बल्कि यह सिखाता है कि आधुनिक बनिए लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलिए। हमारे पूर्वज भले ही हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से मौजूद ना हो लेकिन उनके संस्कार, उनकी सीख और उनका प्रेम हमारे जीवन में हमेशा जीवित रह सकता है। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस पर। सखियों, प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने का नाम नहीं है, यह अपने देश को देखने, समझने और उसकी विविधता से परिचित होने का एक सुंदर माध्यम है। अपने राष्ट्र को जानने के लिए उसकी धरती को जानना जरूरी है। जब हम किसी देश की यात्रा करते हैं तो हमें वहाँ का इतिहास, संस्कृति, परंपराएं, खान पान, कला और जनजीवन करीब से देखने का अवसर मिलता है। जब हम किसी ऐतिहासिक किले या स्मारक को देखते हैं तो हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। किसी तीर्थ स्थल की यात्रा हमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ती है। गांव और ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा से हमें स्थानीय जीवन, हस्तशिल्प और लोक परंपराओं को समझने का अवसर मिलता है। बहनों, पर्यटन का महत्व केवल ज्ञान और मनोरंजन तक सीमित नहीं है, इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यवसाय के अवसर भी पैदा होते हैं। होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प, खान पान और गाइड जैसी अनेक गतिविधियां पर्यटन से जुड़ी होती हैं। पर्यटन हमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी सिखाता है। यदि हम पहाड़ों, नदियों, जंगलों और ऐतिहासिक स्मारकों को देखने जाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखें, प्लास्टिक और कचरा न फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी सहयोग दें। साथ ही आज जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो हमें अपने आसपास के स्थानों को भी पहचानना चाहिए। अपने ही जिले और प्रदेश में अनेक ऐसे स्थान होते हैं जिनका ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक या सांस्कृतिक महत्व होता है लेकिन हम उनसे अनजान रहते हैं। अपने आसपास की विरासत को जानना भी राष्ट्र को जानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में पर्यटन एक ऐसी खुली किताब है जिसके हर पन्ने पर भारत की एक नई कहानी लिखी है। तो जब भी हम यात्रा पर जाएं, केवल तस्वीरें लेकर वापस ना लौटें, बल्कि अपने साथ कोई नया अनुभव, कोई नई जानकारी और अपने देश के प्रति सम्मान की एक नई भावना लेकर लौटें। तो बहनों, पर्यटन को केवल यात्रा नहीं, राष्ट्र को जानने और समझने का माध्यम बनाएं। तो इस बार जब भी आप घूमने जाएं, तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें।

बहनों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी अविरल बहती नदियों की। नदियाँ केवल बहता हुआ जल नहीं है, वे हमारी सभ्यता, संस्कृति और जीवन की आधारशिला हैं। हमारी अनेक प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। इसलिए नदियों की रक्षा करना केवल पर्यावरण की रक्षा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन, अपनी संस्कृति की रक्षा करना है। बहनों, हर वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व नदी दिवस 27 सितंबर यानी आज है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि नदियाँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी हम सब की है। नदियाँ हमारे जीवन को सींचती हैं, इनके जल से खेती होती है, पीने का पानी मिलता है, वन और जैव विविधता सुरक्षित रहती है तथा करोड़ों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। लेकिन आज अनेक नदियाँ प्रदूषण का सामना कर रही हैं। शहरों का गंदा पानी, औद्योगिक अवशिष्ट, प्लास्टिक और अन्य कचरा नदियों में पहुंचकर उनके जल को प्रदूषित करता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि केवल नदी बचाओ कहने तक सीमित ना रहें, बल्कि अपने व्यवहार में भी बदलाव लाएं। सबसे पहला कदम है नदियों में कचरा न डालना। पूजा सामग्री, प्लास्टिक, घरेलू कचरा या किसी भी प्रकार का अवशिष्ट नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। हम अपनी परंपराओं का पालन करते हुए भी प्रकृति को स्वच्छ रख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अविरल नदी। नदी का अर्थ ही है निरंतर बहना। नदी के प्राकृतिक प्रभाव को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि बहता हुआ पानी नदी के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को जीवित रखता है। हमें वर्षा जल को सहेजना होगा, अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। जब वर्षा का पानी धरती में जाएगा, भूजल का स्तर सुधरेगा और नदियों तथा जल स्रोतों को भी इसका लाभ मिलेगा। नदी संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका है। घर से निकलने वाला कचरा सही स्थान पर डालना, जल की बर्बादी रोकना और नदी तथा जल स्रोतों की स्वच्छता में सहयोग करना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सखियों, नदियाँ हमारी माँ हैं, जिन्होंने हमें जीवन, सभ्यता और पहचान दी है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। सखियों, अब चर्चा करते हैं हृदय दिवस की। बहनों, हृदय की हर धड़कन हमें जीवन का संदेश देती है। इसलिए कहा जा सकता है कि स्वस्थ जीवन का आधार है स्वस्थ हृदय। लेकिन अक्सर हम अपने दिल की सेहत पर तब ध्यान देते हैं जब कोई परेशानी सामने आती है। आवश्यकता है कि हम बीमारी का इंतजार ना करें, बल्कि पहले से ही अपने हृदय की देखभाल करें। प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हृदय और हृदय संबंधी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, असंतुलित भोजन, अधिक नमक, ये सब हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। महिलाओं के लिए हृदय की देखभाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। परिवार की जिम्मेदारियों में महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को पीछे कर देती हैं। घर परिवार का ध्यान रखते वे अपने खानपान, आराम और नियमित स्वास्थ्य जांच को नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन याद रखिए, परिवार की देखभाल करने वाली महिला का स्वास्थ्य अच्छी तरह सही होना चाहिए। इसलिए अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और संतुलित आहार को स्थान दें। बहुत अधिक नमक, अत्यधिक तला भुना भोजन ना खाएं। पर्याप्त नींद लें और रोज अपनी क्षमता के अनुसार पैदल चलने या अन्य शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालें। अचानक सीने में दर्द या

दबाव, सांस फूलना, असामान्य पसीना, अचानक कमजोरी या अन्य चिंताजनक लक्षण दिखाई दें तो इसे हल्के में ना लें और तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। सबसे महत्वपूर्ण बात है उपचार में देरी ना करें। समय पर पहचान और उचित चिकित्सा हृदय संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हृदय रोगों की रोकथाम के साथ साथ समय पर पहचान और उपचार पर जोर देता है, क्योंकि दिल की धड़कन केवल जीवन की पहचान नहीं बल्कि हमारे अपनों के साथ बिताए जाने वाले हर सुंदर पल की साथी है। तो आइए अपने दिल की आवाज सुने और कहें, दिल धड़के स्वस्थ, जीवन रहे मस्त, हर धड़कन में हो खुशियों का विश्वास। सखियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात उनकी जो देशभक्ति और बलिदान की अमर मिसाल हैं, शहीद आजम भगत सिंह। 28 सितंबर का दिन हमारे लिए इसलिए विशेष है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह का जीवन केवल एक क्रांतिकारी के रूप में ही नहीं बल्कि एक ऐसे जागरूक युवा के रूप में भी हमें प्रेरित करता है जिसने अपने देश, समाज और भविष्य के भारत के बारे में गंभीरता से विचार किया। उनका मानना था कि देश की स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिसमें अन्याय, शोषण और भेदभाव के लिए कोई स्थान ना हो। भगत सिंह जानते थे कि उनका रास्ता कठिन है। उन्हें अपने साथियों के साथ फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन शहीदों का जीवन समाप्त नहीं होता। उनका विचार और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। भगत सिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विचार और अध्ययन से भी अपने संघर्ष को मजबूत बनाते थे। वे युवाओं को जागरूक, शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति सजग देखना चाहते थे। आइए शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर हम उनके साहस, देश प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण को स्मरण करें और अपने जीवन में कर्तव्य, ईमानदारी और जिम्मेदारी को स्थान देने का संकल्प लें। स्वर थम सकता है, सांसें थम सकती हैं, लेकिन सच्चा संगीत कभी नहीं मरता। संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो केवल कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधे दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही एक अमर आवाज थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी ने भारतीय संगीत को अपनी मधुर आवाज से एक नई पहचान दी। संगीत उन्हें विरासत में मिला, लेकिन उस विरासत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जीवन भर अथक साधना और परिश्रम किया। बहनों, लता जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रतिभा के साथ अनुशासन, समर्पण और निरंतर अभ्यास भी आवश्यक है। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनकी आवाज में प्रेम था, विरह था, भक्ति थी, करुणा थी और देशभक्ति का जोश भी था। यही कारण है कि उनकी आवाज की कोई एक सीमा नहीं थी। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी, बंगाली और अनेक भाषाओं में गीत गाए। उनकी उपलब्धियों की सूची भी उतनी ही गौरवपूर्ण है। उन्हें वर्ष 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी जब रेडियो पर उनकी आवाज सुनाई देती है तो लगता है जैसे बीते हुए समय की कोई सुंदर स्मृति हमारे सामने जीवंत हो उठी है। लता मंगेशकर जी हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन एक सच्चे कलाकार की तरह उनकी आवाज समय की सीमाओं से परे है। उनकी मधुर स्वर लहरियां आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजती हैं। उनके जन्म दिवस पर हम इस महान कलाकार को श्रद्धापूर्वक नमन करें और भारतीय संगीत की इस अनमोल विरासत को संजोने का संकल्प लें।

सखियों अब अपने विशेष कार्यक्रम खाना खजाना की तरफ चलते हैं। बहनों पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों के निमित्त सात्विक भोजन तैयार करते हैं। तो आज आपको हम बता रहे हैं मालपुआ बनाने की विधि। तो पहले नोट कीजिए मालपुआ में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए एक कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी, आधा कप दूध, आधा कप पानी, आधा कप चीनी, थोड़ी सी सौंफ, एक चुटकी इलायची पाउडर और घी सेकने के लिए। बहनों मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में आटा और सूजी लें। इसमें चीनी, सौंफ और इलायची पाउडर डाल दें। अब इसमें दूध डालकर मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा घोल तैयार करें। अब घोल को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब एक पैन में घी गर्म करें और थोड़ा थोड़ा घोल डालकर गोल गोल मालपुआ सुनहरा होने तक सेक लें। लीजिए मालपुआ बनकर तैयार है। तो इन श्राद्ध पक्षों में आप ये मालपुए की रेसिपी ज़रूर बनाएं। और अब सखियों कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो चुका है। तो अपनी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, दोपहर के 1:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुर की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं बाल कृष्ण का गाया ये निर्गुण भजन।

जगन सिंह कुशवाहा और साथियों की गाई इस निर्गुण की गारी के साथ ही लोक संगीत अब समाप्त होता है। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत आज का आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं ब्रह्मदेव नारायण सिंह का गाया ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह का गाया ये भजन। इसके साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लेते हैं छोटा सा अंतराल।

अंतराल के बाद आकाशवाणी मध्य प्रदेश में आपका पुनः स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत ठोकर फिल्म से लिया है, आवाज मोहम्मद रफी की है। सजन देलवी ने इस गीत को लिखा, संगीत श्यामजी घनश्याम जी का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाई यकीन फिल्म के इस गाने के बाद आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी का ही गाया नीला आकाश फिल्म का गीत। इनका साथ दिया आशा भोसले ने। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे नीलाकाश फिल्म का गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा नदी की सफाई के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ युवा नदी की सफाई का कार्य कर रहे हैं और उनके छोटे से प्रयास से पूरा समाज जुड़ रहा है।
1: हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर परिसर में स्थानीय जनों और जनप्रतिनिधियों के साथ मन की बात का श्रवण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में बंसल पंख मैराथन का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन और प्रसन्न मन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने लोगों से योग और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।
2: महत्व की होती है, एक तरह से हम सब अपने इस शरीर के विभिन्न बाबा महाकाल की नगरी, काल की नगरी उज्जैनी में आज सुबह सवेरे बंसल न्यूज द्वारा मैराथन का राज्य स्तरीय आयोजन जो किया गया, मैं बधाई देना चाहूँगा। और ये बाबा महाकाल की कृपा है, स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए सुबह कितनी महत्व की होती है। एक तरह से हम सब अपने इस शरीर के विभिन्न नाना प्रकार के रहस्यों को समझे, जाने, परमात्मा के दिए प्रसाद को संभालें और हमारे अपने जीवन के अभिष्ट की प्राप्ति करें।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि मैराथन जैसे आयोजन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर उज्जैन में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। 2 दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में पहले दिन आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और उत्पादन वृद्धि, स्थिर

स्थिरता और जलवायु अनुकूल कृषि तथा डिजिटल कृषि, अवसंरचना, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा होगी। दूसरे दिन क्षेत्रीय सम्मेलनों से प्राप्त प्रमुख सीखों और पहले दिन की चर्चाओं के परिणामों पर विमर्श होगा। इंदौर में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह और संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आज शाम 7 बजे अमर लता हमारी लता संगीत संध्या आयोजित होगी, जिसमें स्थानीय कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। समारोह के दूसरे दिन 28 सितंबर को सुविख्यात संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। उन्हें 5 लाख रुपये की सम्मान राशि और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाएगी। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले बारिश का दौर तेज हो गया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज मुरैना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और रीवा में तेज बारिश का अलर्ट है। जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश जारी है। पानी की बढ़ती आवक के कारण बरगी, जोहिला और बिलगांव बांध के गेट खोलकर जल निकासी की जा रही है। प्रदेश में अब तक औसतन 35.6 इंच बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य बारिश से 95% से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में विभिन्न जिला प्रबंधकों के दल का एक्सपोजर विजिट आयोजित किया गया। दल में बदरवास में स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा संचालित वन स्टॉप फैसिलिटी समिति की संचालन प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को समझा। नर्मदापुरम जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, बच्चों की खेलकूद गतिविधियां आयोजित कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। और आगरमालवा जिले के सरस्वती शिशु मंदिरों में कल नमामि भारतम कार्यक्रम के तहत लगभग 3300 से अधिक विद्यार्थियों, अभिभावकों द्वारा एक साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन

0: संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथोन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब JNPT मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है।

0: बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है,
3: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू, अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें। मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो मदर्स की डेथ रेट है, और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
2: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने,

0: और कृषि उत्पादन उत्पादकता स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वह विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वह कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 बजे है। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों एक साथ मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।
2: बच्चों आज है रविवार यानी आपकी ढेर सारी मस्ती भरा दिन और आज के दिन आपका मन पसंद कार्यक्रम लेकर उपस्थित है आपकी पूर्णिमा दीदी। मुस्कान कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे श्रोता बच्चों का और स्टूडियो में उपस्थित सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों कल्पना कीजिए कि हम सब किसी सुंदर पहाड़ी इलाके में घूम रहे हैं। चारों ओर हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पक्षियों की मधुर आवाज और दूर से बहती हुई एकदम साफ पानी की नदी। कितना सुंदर दृश्य है ना बच्चों। घूमने से हमें केवल आनंद ही नहीं मिलता बल्कि देश विदेश की संस्कृति, प्रकृति, इतिहास और विभिन्न प्रकार की जानकारी भी मिलती है। बच्चों प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करना है। बच्चों जब हम किसी दूसरे गांव, शहर, राज्य या किसी देश में जाते हैं तो हमें वहाँ की बोली, भाषा, वहाँ की संस्कृति, भोजन, पहनावा, कला, इतिहास और परंपराओं को जानने और समझने का अवसर मिलता है। बच्चों हमारा भारत देश पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध देश है। यहाँ उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियाँ हैं तो दक्षिण में समुद्र के सुंदर तट हैं, राजस्थान में रंग बिरंगे किले हैं तो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक धरोहरें और वन्य जीव हैं, तमिलनाडु में सबसे अधिक संख्या में प्राचीन मंदिर हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक गुफाएं हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। बच्चों यही विविधता हमारे भारत देश को विश्व के सबसे अधिक आकर्षक पर्यटन स्थल का देश बनाती है। बच्चों हम कहीं भी घूमने जाएं वहां हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। जब हम किसी भी पर्यटन स्थल पर घूमने जाएं तो वहां पर सबसे पहली बात का यह ध्यान रखना है कि खाने पीने की वस्तु हम ना ले जाएं और ना ही वहां किसी प्रकार का कचरा फैलाएं। बच्चों ऐतिहासिक इमारतों पर कुछ भी ना लिखें। कई बार कुछ लोग अपना नाम या कुछ भी लिखते हैं। बच्चों हमें ऐतिहासिक इमारतों पर नहीं लिखना चाहिए, ना ही उन्हें गंदा करके नुकसान पहुंचाएं। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का भी हमें सम्मान करना चाहिए, उन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए और हम जहां भी जाएं वहां की स्थानीय परंपराओं और संस्कृति का हमें सम्मान करना चाहिए। यानी हम घूमें, सीखें और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्रकृति को भी बचाएं। बच्चों अब जरा सोचो कि एक नदी आपसे कह रही है, मैं तुम्हारे खेतों को पानी देती हूँ, तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं

0: को जीवन देती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरा ध्यान रखते हो? बच्चों, इसी प्रश्न का हल ढूंढने प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, नदी केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि नदियाँ हमारे जीवन, सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की आधारशिला रही हैं। भारत की अनेक प्राचीन सभ्यताएं इन्हीं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तमसा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हमारे देश के गौरव में विशेष महत्व रखती हैं। बच्चों, नदियों में अनेक जीव जंतुओं का घर होता है। इनसे खेतों में सिंचाई की जाती है, बांध बनाकर पूरे वर्ष पानी की कमी से बचाया जाता है। नदियों के पानी से विद्युत उत्पादन करके हम सब तक बिजली पहुंचाई जाती है। बच्चों, नदियों में कचरा कभी भी हमें नहीं फेंकना चाहिए, और साथ ही हमें दूसरों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। बच्चों, प्रदूषण, प्लास्टिक, गंदगी आदि से नदियों को गंदा होने से बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बच्चों, कई पर्यटन स्थल नदी, झरनों या समुद्र के किनारे हैं। अगर इनका पानी गंदा होगा, इनके आसपास गंदगी होगी, तो पर्यटन करने भी कम पर्यटक आएंगे और देश पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वच्छ नदियाँ और स्वच्छ पर्यटन स्थल एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति को केवल देखना नहीं है, बल्कि इसे बचाने की भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बच्चों, अब हम और आगे बढ़ते हैं और आओ जाने के क्रम में जानते हैं महान राष्ट्रभक्त के बारे में। बच्चों, आज का दिन उन महान राष्ट्रभक्त को याद करने का है जो निर्भीक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय संसदीय लोकतंत्र के अग्रदूत रहे हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं विट्ठल भाई पटेल जी की। आज उनकी जयंती हमें राष्ट्र की सेवा, स्वाभिमान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। बच्चों, विट्ठल भाई पटेल जी का जन्म 27 सितंबर सन 1873 में गुजरात के नाडियाद में हुआ था। बच्चों, इनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। विट्ठल भाई पटेल दूरदर्शी भी थे। बच्चों, विट्ठल भाई पटेल जी के अंदर भारत देश को स्वतंत्र कराने का जुनून था। वे साहसी थे, राष्ट्र के महान सेवक थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल शासन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों, जनता के सम्मान और जनता की सहभागिता का माध्यम होता है। इसीलिए उनका जीवन आज भी हमें यही संदेश देता है कि महान व्यक्ति कभी भी इतिहास में पीछे नहीं छूटते, वे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के विचारों में जीवित रहते हैं। बच्चों, विट्ठल भाई पटेल जी का जीवन ऐसी प्रेरणा की सुगंध है जो आज भी हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। सच में बच्चों, समय बीत जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति की सुगंध कभी समाप्त नहीं होती है। बच्चों, आप भी अपने विचार, अपने कर्म को देश के लिए जरूर समर्पित करना। बच्चों, अब सुनेंगे आपकी प्रस्तुतियाँ। आप सब तैयार है ना?
1: मेरा नाम काव्या है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम रुचि रैगवार है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम आराध्या है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम शानिका है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम मैरीन है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम प्रगति है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम आयशा है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ।
0: तो पहले कौन सुनाएगा? काव्या हाथ उठा रही है, तो काव्या सुनाओ अपनी कविता।
8: विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भी शरण में लग कर जोश बढ़े, क्षण क्षण में कापे शत्रु, देख कर मन में मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय।
9: सिंहासन हिल उठे राजवंशों के भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत के भी आई फिर सेक नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी,
10: बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, घूम लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
11: दीदी अब मैं सुना

0: बसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग गेंदा के फूल ले अमूमा की डाली पर डाल फिर झूले थे, बहती थी मस्त पवन, घूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग, स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, पत्तों की झुरमुराहट से कुहू कुहू धुन आती थी, क्यों नहीं लगता अब जैसे तुम आए हो, हरियाली मस्त पवन संग नहीं लाए हो, बोला बसंत फिर अब कहाँ आऊँ मैं, कट गए वृक्ष सब कहाँ ठहर जाऊँ मैं, हरे भरे जंगल सब तुमने तो काट दिए, घर मेरा उजाड़ा कर अपनों में बांट दिए, दुखी है मेरा मन कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो, मेरे घर आंगन को फिर से बसाओ, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओ, अब तो मैं आऊँगा वृक्ष जब लाओगे।
1: महरीन ने ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु की कितनी अच्छी कविता सुनाई। हम सबको अपने पर्यावरण की रक्षा अच्छे से करनी होगी, तभी हम प्रकृति की खूबसूरती को बचा पाएंगे। प्रगति बोल रही है, दीदी अब मेरी बारी, तो प्रगति आप सुनाइए अपनी कविता।
2: संभल संभल कर चलो वीरों, तलवारों की धारों पर, इधर इधर है खाई कुएं, ऊपर है सुने अंबर, बरस रही बाधाएं पद में, ऊंचे ऊंचे कर धारों से, वीरों सिंधु के पार, त्रे प्राणों की तलवारों पे।
3: दीदी अब मैं सुनाऊं, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का झाचन, मैंने अपना नीर बनाया, तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी, जी करता है तुझे चूम लूं, ले लूं मधुर बलैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया।
1: आराध्या ने प्यारी प्यारी गौरैया की कितनी अच्छी कविता सुनाई।
4: दीदी अब मैं सुनाऊंगी, अहंकार का भाव ना रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा, जब जीवों से नित्य रहे, दिन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्त्रोत्र भरे।
5: मैं कविता बोलूंगी हमारे आहार पर, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती पुरती लाओ, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल ने तुआ भी खाना, दूध दही तुम चक्कर खाओ, फल फूलों का बाग लगाओ, आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हराते हैं पीरा, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भूजा संतु नियमित खाए, वेद हकीम घर ना आए, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार।
1: मिष्टी ने कितनी प्यारी कविता सुनाई है और कविता के माध्यम से बताया है कि हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए।
6: दीदी अब मेरी बारी, पद की बाधाएं गिनने से विश्वास घटे, करने से होता है सब कुछ, करना शुरू करें, एक बूंद गिर कर सूखे बार बार गिर

0: बहुत। दीदी अब एक कहानी सुनाएंगे। मैं सुनाती हूँ। तो बहुत समय पहले एक बंदर था, वो जामुन के पेड़ पर बैठा रहता था एक नदी के पास। वहाँ पे नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसने देखा कि बंदर जामुन के पेड़ पे बैठा है और जामुन खा रहा है। उसने बंदर से बोला कि बंदर मुझे भी जामुन दो। उसने बंदर ने उसको जामुन दी और ऐसे ही करते करते मगरमच्छ रोज आता था और जामुन खाता था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी बीवी को बताया कि मेरा एक दोस्त है बंदर, जो कि पेड़ पर जामुन के बैठा रहता और बहुत मीठी मीठी जामुन खाता है और बहुत मीठी जामुन रहती हैं। तो उसकी बीवी ने बोला कि मुझे भी जामुन खानी है। मगरमच्छ ने अपने बंदर दोस्त से बताया कि मेरी बीवी को जामुन खानी है। बंदर ने उसे जामुन दी और वो ले गया। जब उसकी बीवी ने जामुन खाई तो उसने सोचा, अरे वाह, ये तो कितनी ज़्यादा मीठी जामुन है। उसने अपने मगरमच्छ से बोला कि सुनो, जब ये जामुन इतनी मीठी हैं तो बंदर तो रोज़ जामुन खाता है, तो उसका दिल भी बहुत मीठा होगा, मुझे बंदर का दिल चाहिए। लेकिन मगरमच्छ ने उसे मना किया, लेकिन उसकी बीवी नहीं मानी। फिर अगले दिन उसने अपने दोस्त के पास गया और उससे बोला कि मेरी बीवी को जामुन खानी है और वो चाहती है कि तुम उससे मिलो। तो वो बंदर उसके साथ पीठ पे बैठ के चला गया। रास्ते में मगरमच्छ को गलत लगा, तो फिर मगरमच्छ ने उसे सारी बातें बता दी और फिर उसके बाद बंदर को वो ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। फिर उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचा तो फिर उसके बाद उसकी बीवी ने बोला, मैं तो तुम्हें खा जाऊँगी। तो बंदर बोलता है कि मैं आज जामुन नहीं खाया हूँ तो आपको मेरा दिल उतना मीठा नहीं लगेगा। तभी बंदर मगरमच्छ के साथ वापस गया और पेड़ पे चढ़ गया। और फिर मगरमच्छ ने जब बोला कि चलो तुमने जामुन ले ली, अब नीचे आओ, तो फिर बंदर ने बोला कि नहीं, मैं नीचे नहीं आऊँगा, तुम्हारी बीवी मुझे खाना चाहती है।
1: दीदी दीदी अब मेरी बारी।
2: अब आप सुनाने वाले हैं तो आप क्या सुनाएंगे?
1: एक कविता।
2: कविता सुनाएंगे? कविता का शीर्षक क्या है?
1: यह पर्यावरण हमारा।
2: पर्यावरण हमारा, तो फिर सुनाओ।
1: हमको जीवन देता है यह पर्यावरण हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। अज्ञानी हम ज्ञान राशि औरों को बांट रहे हैं, उसी डाल पर बैठ उसी को जड़ से काट रहे हैं। प्रकृति माँ ने पाला हमको अपना दूध पिलाकर, उसको ही पीड़ित करते हम कण कण जला जला कर। सोचो फिर कैसे हो पाएगा कल्याण हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। पेट फाड़कर पर्वत का हम पत्थर बजरी लाते, काट काट कर लकड़ी जग को नंगा करते जाते। और किसी की क्या शर्म करेंगे, निश्चित हमें भोगने होंगे जैसे कर्म करेंगे। कुदरत को अपमानित कर कैसे हो मान हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। धरती माँ ने अन्न फूल फल देकर हमको पाला है।

बरसाते सूर्य चंद्रमा देकर हमें उजाला, पवन प्राण बन स्वयं हमारी श्वासों में बहते हैं, इंद्र स्वयं जलधारा के मिसमिस कण में हंसते हैं। मानवता को मिला निरंतर सुख का सत्य सहारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट।

0: इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा।
1: आज तो बच्चे पूरे जोश और उत्साह से तैयारी करके आए हैं। आज तो सचमुच मन यही कर रहा है कि समय यहीं ठहर जाए और इन बच्चों की प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां हम सुनते रहें। लेकिन समय को तो बांधना संभव नहीं है और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब अनुमति दीजिए अपनी पूर्णिमा दीदी को।
2: बच्चों एक साथ मिलकर बोलेंगे
3: जय।

नन्हे मुन्ने बच्चे अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत लिखा फैजन वर ने, संगीत निखिल विनय का, उदित नारायण अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं। फिल्म का नाम तुम बिन।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए प्यार का मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीतियों का एक नया उदाहरण पेश किया है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा।

0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा नदी की सफाई के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ युवा नदी की सफाई का कार्य कर रहे हैं और उनके छोटे से प्रयास से पूरा समाज जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर परिसर में स्थानीय जनों और जनप्रतिनिधियों के साथ मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में बंसल पंख मैराथन का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि मैराथन जैसे आयोजन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं उज्जैन में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। इंदौर में आज से दो दिवसीय राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह और संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आज शाम 7 बजे अमर लता हमारी लता संगीत संध्या आयोजित होगी। दूसरे दिन कल सुविख्यात संगीत निर्देशक शांतनु मोहित्रा को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। और मौसम केंद्र के अनुसार आज मुरैना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और रीवा में तेज बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे तक पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का असर बने रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब आपको जानकारी दे दें इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आज शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33, शाम 6 बजे और रात 8:30। रात 8 बजे सुनिएगा क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम डगर विकास की। यह कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छिंदवाड़ा की प्रस्तुति रहेगा। विषय होगा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन। माफ कीजिए, विषय एक बार सुन लीजिए, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047। 9:30 आपकी फरमाइश। एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स हम आपको सुनाएंगे आज रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:20 पर सुनिए विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। हम आपको बता दें आकाशवाणी भोपाल से आज शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें 7:30 से 8 बजे के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण कुमार नेमा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय 3:02 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर कुछ देर के लिए हमारा ट्रांसमिशन बंद होता है। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं बालकृष्ण का गाया निर्गुण भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं ब्रह्मदेव नारायण। आइए सुनते हैं इनके गाए भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह के गाए भजन। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत चलते चलते फिल्म से लिया है, आवाजें अभिजीत और साथियों की है। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा, संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

कार्यक्रम का अगला गीत धड़कन फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया उदित नारायण और अलका याज्ञिक ने। समीर ने इस गीत को लिखा, संगीत नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम जंजीर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए जंजीर फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच पर भोपाल का प्रसारण। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा नदी की सफाई के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ युवा नदी की सफाई का कार्य कर रहे हैं और उनके छोटे से प्रयास से पूरा समाज जुड़ रहा है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गृह मंत्री अमित शाह और संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने एक रक्षा सम्मेलन में कहा कि युद्ध का स्वरूप तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है। इसके लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता के साथ लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। और क्रिकेट में आज तिरुवनंतपुरम में भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच खेला जा रहा है। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं डीटीएच भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण।

जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में हाज़िर आहियां तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। बडरे महीने जी सतनारायण साण ही श्राद्ध शुरू थी चुका आहिनि। ॾींहं पंहिंजे पितरनि खे यादि करण जा, उन्हनि जा थोरा मञण जा, श्रद्धा भाव सां पितरनि निमित ॿांभण ऐं नियाणी खाराइण जा। हिननि ॾींहनि में गांइ, कुतो ऐं कांग खे बि खाराइण जो रवाज़ु आहे। विशेष रूप सां गीता जे 7 अध्याय जो पाठ बि ज़रूरु कबो आहे। त साथियों, असांजे पितरनि जी महर शल असां सभिनी ते रहिजी अचे। कार्यक्रम जी शुरूआति अॼु कमला केसवानी जे हिन सुहिणे गीत सां था कयूं।

0: साथियों, कॾहिं तेज़ बुख में न वणंदड़ भाॼीअ सां बि ॿिनि जे बदिरां टे फुल्का खाधा अथव त अमा ज़रूरु चयो हूंदई, पुट बुख में बसर बि मिठा। केतिरी सच ऐं असरदार ॻाल्हि आहे। समाज जंहिं सच जो आज़मूदो सालनि खां कंदो आयो आहे, उन सच खे पहाकनि, इस्तलाहनि, चवणियुनि जे रूप में सांढे रखंदो आहे। चवणियूं भाषा जी सूंह आहिनि। भाषा में जेतिरी चवणियूं, भाषा ओतिरी ही पुख़्ता, कशिश कंदड़ ऐं असरदायक बणिजे थी। अॼु चवणियुनि सां जुड़ियल हिकु ख़ासि वार्ता लाइ आकाशवाणी भोपाल में असां नींढ ॾिनी आहे कवि, लेखक ऐं वरिष्ठ साहित्यकार श्री नंद कुमार सनमुखानी जी खे। अचो त ॿुधूं था उन्हनि खां इहा विशेष वार्ता।
1: नमस्कार, मां अॼु तव्हांजे साम्हूं सिंधी चवणियुनि जी अॼु जे दौर में अहमियत विषय ते हिकु वार्ता पेश करे रहियो आहियां। कंहिं बि ॿोलीअ जूं चवणियूं या पहाका उन समाज जे अनुभवनि, जीवन दर्शन, वहिंवारिक ज्ञान ऐं सामूहिक यादगिरियुनि या स्मृतियुनि जो संक्षिप्त रूप हूंदियूं आहिनि। पर उन्हनि जे अंदरि ज़िंदगी जे डिघे अरसे जे अनुभवनि जो निचोड़ लिकियलु हूंदो आहे। इहो ई सबबु आहे जो दुनिया जे लॻभॻि हर ॿोलीअ में चवणियुनि या पहाकनि जो वॾो ख़ज़ानो मिले थो। जीअं हिंदीअ में चवणी आहे जेसी करनी वैसी भरनी, त सिंधीअ में चवणी आहे जेको पोखींदे सो लुढ़ंदे। हिंदीअ में चवणी आहे त जान है तो जहान है, त सिंधीअ में चवणी आहे जीउ आहे त जहान आहे। हिंदीअ ऐं सिंधीअ में सामूहिक अनुभवनि मां निकितल अहिड़ियूं बेशुमार चवणियूं थी सघनि थियूं। ॿोलियूं अलॻि अलॻि थी सघनि थियूं, लफ़्ज़ जुदा जुदा थी सघनि था, पर इंसान जा अनुभव ऐं ज़िंदगी जूं हक़ीक़तूं अक्सर हिकु जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि। अॼु जे वक़्त में सिंधी भाषा जो वाहिपो या इस्तेमालु जहिड़ी तरह तेज़ीअ सां घटिजी रहियो आहे ऐं नई पीढ़ीअ जे सिंधियुनि में पंहिंजी मातृभाषा जो शब्दकोश या वाकेबुलरी जीअं घटिजंदी पई वञे, उन्हनि हालतुनि में सिंधीअ जे पहाकनि ऐं इस्तलाहनि जो इस्तेमालु उन्हनि जी ॿोलीअ जी ॼाण वधाइण जो हिकु कारगर उपाउ थी सघे थो। जीअं हुननि जा पाण में ॾुतर सवा न आहिनि। इन चवणी में ॾुतर माना ॾेव, मतिलबु त हुननि जी पाण में पवे कोन थी। या ॿी चवणी आहे वुठो त थर न त बर। इन में वुठो माना वसियो, यानि जे थर में बरसाति पवे त थर ॼण चमन थी पवे, न त हिकु ब्याबान मिसल पियो भासे। इन तरह असां ॾिसूं था त पहाकनि में घणो करे ॿोलीअ जा अहिड़ा लफ़्ज़ ऐं व्याकरणी फ़िकरा सुरक्षित थियल आहिनि जेके अॼुकल्ह ॿोलीअ में ॿिए वाहिपे में नथा अचनि। इन करे ॿोलीअ जी असुली शिकिल सम्झण लाइ पहाकनि जो अभ्यास घणी अहमियत रखे थो। चवणीअ जा लफ़्ज़ थोरा हूंदा आहिनि, पर उन्हनि जे पुठियां ज़िंदगी जा लंबा अनुभव हूंदा आहिनि। कंहिं बुज़ुर्ग जो मुशाहिदो, कंहिं हारीअ जो अनुभव, कंहिं माउ जी नसीहत, कंहिं मुसाफ़िर जी ॾिठल दुनिया या कंहिं समाज जी सामूहिक समुझ, इहे सभु गॾिजी कंहिं वक़्तु हिकिड़े अहिड़े जुमिले खे जनम ॾियनि था जेको पीढ़ियुनि ताईं ज़िंदह रहे थो। उनखे ई असीं चवणी चऊं था। इहो ई सबबु आहे जो सिंधी ॿोलीअ में बि चवणियुनि या पहाकनि जो हिकु विशाल ऐं क़ीमती ख़ज़ानो मिले थो। पर सुवाल इहो आहे त अॼु जॾहिं दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, रोबोट्स, अंतरिक्ष जी खोजनाउनि ऐं डिजिटल क्रांतिअ जे दौर में दाख़िल थी चुकी आहे, तॾहिं इन्हनि पुराणियुनि चवणियुनि जी कहिड़ी अहमियत बाक़ी रहे थी? असांजी ज़िंदगी जो अंदाज़ कुझु ई ॾहाकनि में एतिरो बदिलजी वियो आहे जेतिरो शायदि सदियुनि में बि न बदिलियो हो। अहिड़े वक़्त में इहो सुवालु स्वाभाविक आहे त सदियूं या पीढ़ियूं अॻु चयल चवणियूं या पहाका छा अॼु बि एतिरियूं ई कारगर ऐं लाॻापियल आहिनि? इन जो जवाबु आहे घणे हद ताईं हा। पर इन्हनि खे संदनि असुली पृष्ठभूमिअ सां मिलाए आधुनिक संदर्भनि में समुझण जी ज़रूरत आहे। मिसाल तौरु, जेको पोखींदे सो लुढ़ंदे। हिकु हारीअ जी ज़िंदगीअ मां निकितल हीअ सादी ॻाल्हि अॼु बि ज़िंदगीअ जे केतिरनि ई मामलनि में लागू थिए थी। तालीम में महिनत कंदासीं त इल्मु हासिलु थींदो, कारोबार में ईमानदारीअ महिनत कंदासीं त ग्राहकनि जो भरोसो या विश्वास जीते सघिबो, सिहत जो ख़्यालु रखंदासीं त जीउ ख़ुशि जान ख़ुशि वारी चवणी मूजिबि जीअण में ॼण मज़ो पियो ईंदो, ऐं जेकॾहिं कूड़ या नफ़रत जा ॿिज पोखींदासीं त उन्हनि जा नतीजा बि कंहिं न कंहिं सूरत में साम्हूं ईंदा। अहिड़ी तरह जिते चाह उते राह, अॼु जी टेक्नोलॉजी वारे दौर में एतिरी ई माना खेज़ आहे जेतिरी पहिरीं हुई। भले वसीला बदिलजी विया आहिनि, चैलेंज बदिलजी विया आहिनि, पर मक़सदु हासिलु करण लाइ ख़्वाहिश, सब्र ऐं कोशिश जी ज़रूरत अॼु बि ओतिरी ई आहे। अॼु बि उथ बि नाणो, वेह बि नाणो, नाणे बिना न रवे गाणो। मतिलबु उथ या वेह यानी घर मां उथी ॿाहिरि वञु, तोड़े घर में वेह, त बि ख़र्च पखे लाइ पैसो घुरिजे। पैसे खां सवाइ मुड़ुसु वेगाणो या मोगो आहे। इन सां मिलंदड़ जुलंदड़ कुझु ॿिया पहाका आहिनि। उठ खे लाणो, घोड़े खे दाणो, मर्द खे नाणो, महबूब खे माणो। या पैसो नाहे पास, जेरो आहे उदास। या जेकी करे नाणो, सो न करे राणो। या पीर ईसा, पीर मूसा, बड़ा पीर पैसा। या दाम करे सभु काम। अॼु तोड़े मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संपर्क ऐं मालूमात हासिलु करण जी दुनिया बदिलाए छॾी आहे। तंहिं

0: हिन बि इंसान जा बुनियादी जज़्बा लालच हसद मुहबत गुरूर ख़ौफ़ ख़्वाहिशूं सहकार ऐं हमदर्दी अॼु बि लॻभॻि साॻिया आहिनि। इन करे उहे चवणियूं जेके इंसानी सुभाउ सुञाणनि थियूं अॼु बि ख़ासि तौर सां ओतिरो ई लाॻापियल आहिनि। खीर जो सड़ियलु लस्सी बि फूके फूके पिए, इहा चवणी अॼु ज़ाती तजुर्बे ऐं डिजिटल सलामती ॿिन्ही में लागू थी सघे थी। ऑनलाइन ठगी जो शिकार थियल माण्हू भविष्य में कंहिं बि अणॼातल लिंक या संदेश खे वधीक सावधानीअ सां खोलींदो। ताड़ी हिकु हथ सां न वॼंदी, इहा चवणी रुॻो ॿिनि माण्हुनि जे मतभेद या अणबणत जी ॻाल्हि नथी करे, पर हीअ इंसानी समाज जी हिकु बुनियादी हक़ीक़त ॾांहुं इशारो करे थी त कंहिं बि तकरार या मतभेद या समस्या खे सम्झण लाइ सभिनी धुरियुनि जी भूमिका खे ॾिसणु ऐं सम्झणु ज़रूरी आहे। आज़माए खे आज़माइणु ॼण धूड़ मुंहं में पाइणु, इहा चवणी ॿुधाए थी त कंहिं माण्हूअ या कम मां हिकु वारी ख़राबु नतीजो ॾिसी उनखे वरी आज़माइबो त पाण खे ई ख़्वार ख़राबु ऐं निराश कबो। या आहे त ईद न त रोजो, इहा चवणी उन्हनि माण्हुनि सां लागू आहे जेके पैसो या शइ हुअण ते ईअं उॾाईंदा आहिनि जो ॼण ईद था मल्हाइनि, औखीअ सोखीअ लाइ कुझु बि बचाए नथा रखनि, पर उहे पैसो ख़तमु थी वञण जी सूरत में ईअं बुखूं था कढनि जीअं रोज़ा रखिबा आहिनि। अॼु जे दौर में जॾहिं सोशल मीडिया इंसान खे इज़हार जी बेमिसाल आज़ादी ॾिनी आहे, तॾहिं उन सां गॾु ग़लति ॼाण अफ़वाहुनि ऐं अधूरी जानकारीअ जे प्रचार प्रसार में बि वाधारो थियो आहे। को बि मतभेद कुझु ई लम्हनि में वॾे बहस में तब्दील थी सघे थो। तॾहिं हीअ चवणी असांखे हिकु अहम सबक थी सेखारे त कंहिं बि मामले में फ़ैसिलो हिकु तरफ़ी ॻाल्हि ॿुधी न करणु खपे, ॿुधल ॿुधायल ॻाल्हि ते यकीन न कर। अहिड़ी सार्वजनिक ज्ञान जी ताक़ीद अॼु जाली ख़बरुनि ऐं सोशल मीडिया जी अफ़वाहुनि वारे दौर में वधीक अहम थी वई आहे। साॻी तरह गॾियल कम लाइ उन जो ॿियो रुख साम्हूं अचे थो। हिकु माण्हू जी क्षमता या समुझ सीमित थी सघे थी, पर गॾियल कोशिशुनि सां वॾा नतीजा पैदा करे सघजनि था। अहिड़ीअ तरह ठलो चणो वॼे घणो वारी चवणी उन्हनि हालतुनि ते लागू थी सघे थी जिते हक़ीक़ी इल्म या कामयाबीअ खां वधीक उन जी नुमाइश नज़र अचे थी। सोशल मीडिया ते नज़र ईंदड़ चमक दमक ऐं हक़ीक़ी ज़िंदगीअ जे विच में फ़र्क़ु सम्झण लाइ समुझ ऐं सियाणप जी ज़रूरत आहे। चवणियूं नैतिक शिक्षा या अख़लाक़ी तालीम जो बि हिकु ताक़तवर ज़रियो थी सघनि थियूं। इहे ॿारनि ऐं नौजवाननि खे डिघनि डिघनि प्रवचननि खां सवाइ ई ज़िंदगी जे बुनियादी क़दुरुनि या जीवन मूल्यनि सां परिचित कराइनि थियूं। सच जी हमेशह जीत थींदी आहे, ॿधीअ में ताक़त आहे, जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी, अहिड़ा ख़्याल असांखे ज़िमेवारी सहकार ऐं अमल जे नतीजे जो अहसासु ॾियारनि था। अॼु जॾहिं ज़िंदगीअ में मुक़ाबिलो या प्रतियोगिता तमामु घणो वधी वई आहे ऐं कामयाबीअ खे अक्सर दौलत उहिदे या शोहरत सां मापियो थो वञे, तॾहिं चवणियूं असांखे यादि ॾियारनि थियूं त ज़िंदगी रुॻो कामयाबियुनि जो ई नालो न आहे। किरदारु रिश्ता भरोसो सब्र ऐं इंसानियत बि ज़िंदगी जी अहम पूंजी आहिनि, पर हर चवणीअ खे अखियूं ॿूटे क़बूल करणु मुनासिबु न आहे। इहो बि ज़हन में रखणु ज़रूरी आहे त सभई चवणियूं हर दौर जी हालत में हिकु जहिड़ियूं दुरुस्त नथियूं थी सघनि। कुझु चवणियूं उन वक़्त जे निज़ाम व्यक्तिगत भेदभावनि या सामाजिक परंपराउनि मां पैदा थियल हालतुनि मूजिबि पैदा थी सघनि थियूं। समाज हर दौर में बदिलजंदो रहे थो, इन करे चवणियुनि खे बि अॼोकियुनि हालतुनि अनुसार जांचे परखे सोच वीचार करे ई लागू करणु खपे। कंहिं चवणीअ जो पुराणे वक़्त में वजूद में अचणु ई पाण मुरादो उन जो दुरुस्त हुजण जो सबूत न आहे। असांखे ॾिसणु घुरिजे त उन में लिकल ख़्याल अॼु जे ज़माने में जीवन मूल्यनि समानता स्वतंत्रता ऐं वैज्ञानिक सोच सां ठहिकी अचे थो या न। तंहिं करे चवणियुनि खे अंधविश्वास वांगुरु न पर अनुभव ऐं सोच जी कसोटीअ ते कसे पोइ ई क़बूल करणु घुरिजे। हक़ीक़त में चवणियुनि जी असुलु ताक़त लफ़्ज़नि में न पर उन्हनि जे पोयां लिकल इंसानी अनुभव ऐं मुशाहिदे में आहे। असांजे वॾड़नि वटि शायदि फेसबुक व्हाट्सएप या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा लफ़्ज़ न हुआ, पर इंसान ते भरोसो करणु ॻाल्हि जी तस्दीक करणु ऐं जल्दी फ़ैसिलो न करण जा अनुभव उन्हनि वटि बि हुआ। अॼु जी नौजवान पीढ़ी लाइ सिर्फ़ु चवणियुनि खे यादि कराइणु शायदि काफ़ी न हुजे, ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त उन्हनि खे आधुनिक मिसालनि सां सम्झायो वञे। जेकॾहिं सेखारींदड़ हिकु हथ सां ताड़ी न वॼंदी आहे खे सिर्फ़ु यादि कराइण बदिरां सोशल मीडिया ते कंहिं विवाद सां जोड़े सम्झाए या जेको पोखींदे सो लुड़ंदो खे शिक्षा सिहत ऐं माहौल सां गंढे बयानु करे त चवणी किताब मां निकिरी ज़िंदगी जो हिसो बणिजी सघे थी। इन रीति चवणियूं म्यूज़ियम में रखियल गुज़िरियल वक़्त जूं शयूं न रहंदियूं पर अॼु जे इंसान सां ॻाल्हाईंदड़ जीअरी जाॻंदी सियाणप बणिजी पवंदियूं। निष्कर्ष रूप में चई सघूं था त चवणियूं वक़्त जूं क़ैदी न आहिनि, उहे वक़्त जूं शाहिद आहिनि, गवाह आहिनि। उन्हनि जा लफ़्ज़ शायदि सदियूं पुराणा हुजनि पर उन्हनि में सुरक्षित कयल केतिरा ई इंसानी अनुभव अॼु बि असांजे चौधारी मौजूदु आहिनि। टेक्नोलॉजी असांजे हथनि में मौजूदु औज़ार बदिलाए छॾिया आहिनि पर इंसान जी ख़्वाहिशुनि, कमज़ोरियुनि, रिश्तनि, उमेदुनि, लालच, मुहबत, महिनत ऐं अनुभव जी बुनियादी कहाणी अञा बि साॻी आहे। इन करे चवणियुनि खे वक़्त जी कसोटी ते परखण, उन्हनि जे अंदरि लिकल इंसानी अनुभव ऐं सिख्या खे समुझण ऐं आधुनिक ज़िंदगीअ सां नई माना खे ॻंढणु घुरिजे। छो त चवणी माज़ीअ में जनम वठे थी पर उन जी माना हर दौर में नओ जनम वठी सघे थी। ऐं शायदि चवणियुनि जी असुलु दायमी ताक़त बि इहा ई आहे त उहे गुज़िरियल पीढ़ियुनि जी गॾु कयल या संचित सियाणप खे ईंदड़ पीढ़ियुनि ताईं पहुचाइनि थियूं।
1: महिरबानी संतमुखानी जी इन विशेष वार्ता लाइ। साथियों, तव्हां सभई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल खे त सुञाणो ई था, पर छा तव्हांखे ख़बर आहे त उन्हनि जा वॾा भाउ श्री विठल भाई पटेल बि उन्हनि जीअं ई हिकु महान स्वतंत्रता सेनानी ऐं देश भक्त हुआ। विठल भाई पटेल बि पंहिंजी सॼी हयाती अलवतनी ऐं मुल्क जी शेवा लाइ क़ुर्बान कई। ब्रिटिश हुकूमत जे साम्हूं उन्हनि सदाई बेटप थी पंहिंजी ॻाल्हि रखी ऐं देशवासियुनि जे हित ऐं अधिकारनि जी हिफ़ाज़त कई। अॼु 27 सितंबर उन वीर स्वतंत्रता सेनानी जी जयंती आहे। उन्हनि जे चरणनि में असांजो सदाई नमन। शायर चए थो, बाहि मजबूर जी महफ़िल खे लॻायूं साथी, जोति जा दिल जे विसाणी सा जलायूं साथी, आहे इंसान जे सिर ते ग़ुलामीअ जो दाग, साफ़ सो दाग ग़ुलामीअ जो मिटायूं साथी। साथियों, 28 सितंबर जयंती आहे वीर शहीद भगत सिंह जी। महज़ 23 वारनि जी नंढड़ी उमिरि, जंहिं उमिरि में नौजवान पंहिंजे ख़ूबसूरत आईंदे जा ख़्वाब ॾिसंदा आहिनि, उन उमिरि में भगत सिंह रुगो हिकु ई ख़्वाबु ॾिठो, सो हो आज़ादु भारत जो। अंग्रेज़ी हुकूमत भगत सिंह खे सूर्य ते चाढ़ण जी सज़ा मुक़ररु कई, पर सूर्य ते चढ़ण वक़्त बि भगत सिंह जे चेहरे ते न डपु हो न अफ़सोस, बसि हिकु शांत मुर्क हुअसि। सूर्य खे हुन पाण गिचीअ में ईअं पातई जीअं आज़ादीअ जी माला हुजे। अॼु जॾहिं असां सभई इन आज़ादु मुल्क में साह था खणूं त भगत सिंह जी हयातीअ जा किसा ॿुधी दिलि में दर्द बि अचे थो ऐं फ़ख़ुरु बि। भारत माता जे हिन अमर सपूत खे शत शत नमन आहे। अचो त ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में अर्जुन हासत पारां लिखियलु हीउ गीतु।

दोस्तों 28 सितंबर वीर भगत सिंह सा गड भारत जी स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी जयंती भी आ ही उन डात जे समुंड के याद करण जो डी आहे जैं नई चाहे पुरानी हर टई के प्रभावित कयो आवाज जो अहड़ो जादू जो समय जी सीमा खां परे आहे लता जी जी आवाज में उहा रूहानियत हुई जो लफ्ज रुगो कनन ताई न आत्मा के छुअंदा हुआ लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो ही गीत जैमें विछोड़े जो ड्रप ए प्रेम जी पराकाष्ठा गड थियूं डिसजन या वरी ए मेरे वतन के लोगों गीत जै हर भारतवासी सा गड उन वक्त जे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अखियुन के भी नम करे छड़ियो लता जी जा केतरा ही गीत एक मिसाल आहिन लता जी संघर्ष जी भट्टी में तपी सोन ठही निकती हुई नंढड़ी उम्र में पिता जो स्वर्गवास ए कुटुंब जी जिम्मेवारी सवली न हुई पर लता जी हार न मनी साधना अहड़ी पक्की जो हर सुर हर राग संदन अग्या नतमस्तक थी वियो लता जी अज भले ही शरीर सा असांजे विच में न हुजन पर पंहिंजे गीतन ज़रिए अमर आहिन सिंधी भाषा जी खुशकिस्मती आहे जो सुरन जी इन देवी केतरन ही सिंधी गीतन के भी पंहिंजी आवाज सा सजायो आ उन्हन जी जयंती ते इहो ही गीत याद अचे थो मेरी आवाज ही पहचान है सचपच भारत देश इन पहचान के युगन युगन ताई याद कंदो अचो त ॿुधूं था लता मंगेशकर जी ही आवाज़ में गोवर्धन भारती पारां लिखियल ऐं सी अर्जुन जे संगीत सां सजायल ही गीत

दोस्तों, कार्यक्रम में हाणे वक्त आ तव्हां ताईं ज़रूरी ॼाण पहुचाइण जो। जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर ई हूंदी त 17 सितंबर खां 17 अक्टूबर ताईं सेवा से संकल्प अभियान हली रहियो आहे, जंहिंजो उद्देश आहे सेवा से समाज, संकल्प से विकसित भारत। इन दौरान स्वास्थ्य सेवाऊं हलायूं थी वञनि, प्रतियोगिताऊं थी करायूं वञनि, योजनाउनि जी ॼाण देशवासियुनि ताईं थी पहुचाइजे। इन्हीअ कड़ी में मां ॼाण थी ॾियणु चाहियां प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बाबति। इन योजना जो उद्देश सूक्ष्म ऐं लघु वापारियुनि खे सवलो ऐं बिना गारंटी जो लोन उपलब्ध कराइणु आहे। हिन योजना जे अंतर्गत 50,000 खां वठी 20 लख ताईं जो लोन ॾिनो वेंदो आहे। लोन जी प्रोसेसिंग फ़ी तमामु घटि आहे ऐं मुद्रा कार्ड वर्किंग कैपिटल लाइ कार्ड जी सुविधा बि आहे। त बिल्कुलु जेके नंढा वापारी या नया वापारी आहिनि से इन योजना जो लाभ वठी सघनि था। साथियों, हाणे ॻाल्हि कंदासीं तालाबनि जे बारे में। असां ॾिसूं था त असांजे शहर जा तालाब केतिरा प्रदूषित थी चुका आहिनि। तालाब जो ई पाणी सॼे शहर जी पाणीअ जी आपूर्ति जो स्त्रोत आहे। इहो ई पाणी असांजे घरनि ताईं वरी थो पहुचे। प्रशासन त पंहिंजा कम लॻातार करे ही थी, पर असांजी बि ज़िमेदारी आहे त असीं जॾहिं बि घुमणु फिरणु या पिकनिक लाइ कॾहिं तालाब ते वञूं त उते गंदगी न फैलायूं। खाधे पीते जा रैपर, प्लास्टिक जी बोतलूं या को प्लास्टिक जो खिलौनो, इहे सभु तालाब में न फिटी कयूं। छो जो दोस्तों, जल आहे त जीवन आहे। त दोस्तों, इन ॼाण सां गॾु ई असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि समाप्त थो थिए। उमेदु आहे त तव्हांखे ही कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार, पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजबो, सभ जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहान। आप सुन रहे हैं डीटीएच पर भोपाल का प्रसारण।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
3: आप सुन रहे हैं DTH भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय से कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 9।

0: अरे भैया खोलत हैं, हैं? अरे काय घंटी के प्राण ले रहे हो
1: क्या रामू काका? आप हमेशा दरवाजा खोलने में देर करते हैं।
0: अरे जी नहीं भैया, हम तो आपकी तेज चलत मोटर के ब्रेक सुन के ही समझ लेते हैं कि आप आई हैं, सो फौरन दरवाजा खोलबे के लाने आ जाते हैं।
1: क्या रामू काका, आप भी शिक्षा देने लगते हैं।
0: अरे शिक्षा नहीं भैया, जरूरी बात है कि मोटर धीरे चलाओ ताकि आप भी सुखी रहो और राह चलवे बारे भी सुखी रहें।
1: अच्छा काका, ये लोग कान पकड़े।
0: अरे नहीं भैया,
1: अब से धीमे ही चलाया करूंगा।
0: अरे भैया हमारे आगे कान मत पकड़ो, अरे हम तो ठहरे आपके नौकर चाकर।
1: रामू काका, किसने कहा आप नौकर हैं? आप हमारे काका हैं काका।
0: अरे नहीं भैया,
1: हमें तो याद भी नहीं कब हमारे माँ बाप कब हमें आपकी गोद में डालकर चले गए।
0: ऐसा मत ही कहो भैया, अब वो आपके दोस्त है ना, वो गौरी शंकर साहब भैया, वो आए थे।
1: क्या गौरी आया था? क्या कह रहा था?
0: अरे भैया वो कह रहे थे कि संजय को आएंगे और एक किताब दे गए।
1: कविताओं की किताब होगी?
0: अब भैया हमें पतो नहीं, वो धरी है टेबल की दराज में। हाँ
1: ठीक है काका, हम निकाल लेते हैं। हाँ मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, कविताओं की ही किताब है। काका आज शाम को अच्छे से शिकंजी बनाना और साथ में बढ़िया नींबू भी।
0: भैया आप कोनू चिंता मत ही करो, हम है ना। हाँ आप तो बस मुंह हाथ धो लो और फिर बस।
1: ठीक है काका। अरे कौन है?
2: हम है पोस्टमैन।
1: काका देखो पोस्टमैन है।
0: जी भैया।
1: चिट्ठी ले लीजिए।
0: अच्छी बात।
2: हाँ काका कैसे हो?
0: ठीक है भैया, ठीक है।
2: ये लो ये चिट्ठी है भैया तुम्हारी।
0: अच्छा ले आ।
2: हाँ ये लो। चलूं काका?
0: जी भैया। राम राम।
1: हाँ लाओ काका चिट्ठी दो।
0: लीजिए भैया लीजिए, ये लो चिट्ठी। किनकी है भैया?
1: हाँ बताता हूँ काका। बहू रानी की है।
0: सब ठीक ठाक तो है ना भैया?
1: हाँ हाँ काका सब ठीक है। लगता है गौरी आ गया। ये उसी के स्कूटर की आवाज है।
0: भैया आप ठीक है क्या? तो गौरी शंकर भैया को स्कूटर है। हाँ हम किवाड़ खोलें दे।
1: खोलो काका।
0: आओ भैया आओ।
3: राम राम काका। राम राम।
0: राम राम भैया। राम राम। आओ आओ अंदर आ जाओ।
3: अच्छा अच्छा
0: भैया, ये तुम्हारी बाढ़ जो हो रहा है।
3: काका वो आपने बता तो दिया था ना कि मैं आया था और वो अब एक किताब दे गया था आपको।
0: हाँ कैसी बातें करत हो भैया, का आपने हमें भुलक्कर समझो?
3: अरे नहीं नहीं काका, नहीं नहीं नहीं।
1: अरे आजा गौरी इधर ड्राइंग रूम में आजा।
3: अच्छा अच्छा अरे आया आया आया। क्यों यार उठ के स्वागत भी नहीं कर सकता तू?
1: यार तू जो ये किताब दे गया था उसी में खो गया हूँ। क्या भावुक कविता है सच्ची, कवि ने कलेजा शब्दों में रख दिया है दोस्त।
3: भाई मुझे अच्छा लगा था ये कविता संग्रह तो ले आया, पर
1: क्या
3: यार तुझे तो कविताएं पसंद नहीं आती हैं? ये संग्रह तो मैं भाभी के लिए लेकर आया था। खैर और सुना क्या हाल है?
1: हाल तो गर्मी ने बेहाल कर रखे हैं दोस्त।
3: हाँ यार ये तो तू ठीक कहता है, अभी से ये हाल है तो जब गर्मी का मौसम आएगा सोचो तब क्या होगा।
1: होगा क्या, धूप में तपेंगे।
3: तेरा क्या, तू ठहरा कार वाला। अरे मरण तो हमारी है भैया, स्कूटर पर लू के थपेड़े लगते।
1: रामू काका।
0: जी भैया।
1: जरा शिकंजी बना लाओ और सुनो उसमें बढ़िया बर्फ भी डालकर लाना।
0: अरे भैया केवी की कोनो जरूरत नहीं है, हम वो भी तैयार कर रहे थे। अरे जे लो जग भर के शिकंजी।
3: अरे काका भाई वाह वाह यार वाह, बर्फ डरी शिकंजी का जवाब नहीं।
0: अरे गौरी भैया किनसे भी तो कहो कि बहु रानी खोलो वाले हर बड़ो सुनो सुनो लगा।
3: सही बात यार।
0: अब देखो
3: ये सिगरेट, ये कितनी सिगरेट पीता है तू यार?
1: कुछ नहीं यार, दो चार पी लेता हूँ बस।
0: अरे का है झूठ बोला था भैया, अरे दो डूब गया तो रोज ही पी जाते गौरी भैया जी।
3: बेटा बनारसी छोड़ दे ये खून सुखाने की लत।
1: जी हाँ चाचा जी, आदरणीय छोड़ दूंगा।
0: अरे मजाक नहीं भैया, बहू रानी भी कितने एक बार कह चुकी
3: बिल्कुल
0: सिगरेट छोड़वे की।

0: आज तो सुबह से ही तेज बारिश हो रही है।
1: तेज बारिश होनी भी चाहिए, नहीं तो तालाब कैसे भरेगा।
0: ठीक कहती हो नंदनी। क्या लिख रही हो?
1: नहीं,
0: छुपा क्यों लेती हो?
1: मैं चाहती हूँ मेरी कविताएं कोई ना पढ़े, बस मैं ही लिखूं और मैं ही पढ़ूं।
0: नंदनी, ये कविताएं, ये कहानियां, ये लेख, उपन्यास अगर लोग नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा कि साहित्यकार कैसा लिख रहा है?
1: एक गुट के साहित्यकार अपने ही गुट के लोगों की ही तारीफ करते हैं।
0: सही है, जैसे मैं अपने गुट की हृदय नंदनी जी की कविताओं की तारीफ करता हूँ।
1: ये बिल्कुल ठीक नहीं है मुंशी बनारसी प्रसाद जी, आप फेवर और पार्शलिटी कर रहे हैं।
0: भाई, जब दुनिया का चलन ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं।
1: चलिए चलिए, अब आप हाथ मुंह धो लें, मैं चाय और पकोड़े बना के लाती हूँ।
0: बरसात में तो हाथ मुंह दोनों धुल गए हैं। ये रामू काका कहाँ गए?
1: अरे भाई, उन्हें बुखार आ गया था, दवा देकर मैंने सुला दिया है। ओफो, अब ये क्या, घर आए नहीं कि सिगरेट जला रहे हो?
0: अरे रामू काका, कैसे हो?
2: हम ठीक ही हैं भैया, बहू रानी तो बेकार की फिक्र करत हैं, चाय पकौड़े हम ही बनाए लात।
0: नहीं रामू काका, चाय पकौड़े तुम नहीं बनाओगे, आराम करो।
2: अरे भैया, आराम ही तो करत रहे थे पूरे दिन।
1: अब देखो ना जी, बिल्कुल बात नहीं मानते रामू काका।
2: अब बहू रानी, भैया भी कौन सी बात मानत हैं?
0: अरे अरे अरे, बात तुम्हारी हो रही थी काका और तुमने हमें ही लपेट लिया।
2: अरे बहू रानी, इनसे सिगरेट छोड़वा दो बस।
1: अरे कोशिश तो करती रहती हूँ काका, पर ये जो सिगरेट है ना, मेरी सौत ही बन गई है अब।
0: छुट्टी नहीं है जालिम, मुंह से ये लगी हुई।
1: सुनिए मिस्टर, ये शेर ना सिगरेट के लिए नहीं है।
0: तो जिसके लिए है वो शुरू कर दूं?
1: खबरदार। हाँ
0: बाबा, गुस्सा नहीं हो, ये लो, ये बुझा देता हूँ।
1: अब हुई ना बात।
2: भैया जे हुई ना बात से आनो जैसी।
0: तुम सिगरेट को सौत कह रही थी ना, अगर वास्तव में सौत ले आया तो?
1: हाँ तो मैं उन महारानी का चप्पलों से भरपूर स्वागत करूंगी। हाँ
2: जे ठीक बात कही बहू रानी।
0: क्या काका, तुम भी बहू रानी की तरफ हो गए? और हाँ, तुमको तो आराम करने की बात हो रही थी ना, चलो चलो चल कर लेटो, नहीं तो तुम्हारी देखभाल के लिए एक सुंदर सी नर्स बुला लूंगा।
2: अरे भैया बस आप तो।
1: अरे बैठे रहने दो ना, मैं चाय पकौड़ी बनाकर लाती हूँ, चाय के साथ दवा लेकर आराम कर लेना।
2: चाय पकौड़ी हम?
0: बैठो काका बैठो, तुम्हारी बहुरानी बना के ला तो रही है।
2: भैया ऐसी बहुरानी सबको मिले और जुग जुग जिए, भगवान से जय प्रार्थना है मोरी।
0: और हम?
2: अरे आप तो हीरा हैं भैया, हीरा।
0: हाँ।

0: क्यों वो तुम्हें मायके कब जाना है?
1: क्यों बार बार क्यों पूछ रहे हो? जब कभी रिजर्वेशन मिल जाएगा चले जाऊंगी। और हाँ, टिकट लाए क्या?
0: अरे लाया हूँ बाबा, कल का अवेलेबल था, फिर एक महीने बाद मिल रहा था।
1: ओ, ये तो ठीक ही रहा।
0: अरे वो बिट्टू नहीं दिख रहा?
1: सो रहा है ना।
0: अच्छा सुनो, सामान वगैरह सब अच्छे से पैक कर लिया?
1: हाँ हाँ, वो तो सब हो गया।
0: ठीक है।
1: देखो जी, मैं जा रही हूँ, पर दो बातें। एक तो तुम गाड़ी धीमे चलाओगे और दूसरे सिगरेट नहीं पियोगे।
0: वादा। दोनों बातों के लिए मुंशी बनारसी प्रसाद वादा करते हैं।
2: यार भाभी ठीक वादा करवा गई थी तुझसे, तू कोशिश क्यों नहीं करता?
0: ये ठीक बात हुई।
2: कौन सी?
0: यही कि दोस्त वादे टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब होती है। अरे सुन, एक आइडिया आया।
2: आइडिया? कैसा?
0: तेरी भाभी को जलाने का।
2: जलाने का?
0: हाँ यार, मैं चिट्ठी लिखता हूँ कि मेरे घर कोई रहने आ गई है।
2: क्या क्या क्या?
0: हाँ यार, ये पढ़कर वो दौड़ी चली आएगी। एक महीना हो गया मायके जाकर, खूब ही रम गई है।
2: देख देख, वो चिट्ठी दिखाना मुझे। है
0: प्रेम पत्र होता तो नहीं पढ़ाता, परंतु इसे दिखा भी दूंगा और पढ़ा भी दूंगा।
2: ठीक है ठीक है। यार तो फिर मैं चलता हूँ।
0: ठीक है। अरे लेकिन पहले स्कूटर तो स्टार्ट कर ले।

0: अरे आओ था भैया, को है
1: काका? राम राम।
0: राम राम।
1: बनारसी बनारसी है क्या काका?
0: अरे हाँ भैया, गौरी भैया आज भी बैठक में बैठे कछु लिख रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों भैया चिट्ठी पूरी हुई कि नहीं?
2: अरे पूरी हो गई भाई, आजा आजा आजा, आ बैठ।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ पूरी हो गई और साइन भी कर दिए आखिर में।
1: अरे वाह, सुनाओ सुनाओ।
2: तो सुन प्यारे।
1: हाँ सुना।
2: प्रिय हृदय नंदिनी नायक, उस दिन न जाने कैसे मेरी तबीयत चल गई। जिस तरह तुम अपनी लिखी कविता को छिपा लिया करती हो, उसी तरह मैं उसे छुपा कर घर में लाया और कुर्सी पर विभूषित कर दिया।
1: वाह,
2: मेरा मन कहता था कि तुम गैर हाजिर हो और तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे घर में किसी अनजान को लाना और जगह भी नहीं देनी चाहिए थी।
1: ठीक,
2: पर यह क्या कोई अपराध है? जब मैं और तुम दूर कल्याण में पटवारी जी के पीपल के पेड़ के नीचे मिले थे, तब अपने बीच भी पहचान कहाँ थी?
1: ठीक ठीक,
2: जान पहचान तो शादी के बाद ही हुई।
1: ठीक ठीक,
2: सब कुछ नियत समय पर जान पहचान बन जाता है।
1: हाँ।
2: ये जो बिट्टू है जिसे तुम अपनी गोद में लिए घूमती हो, यही कौन मेरे और तुम्हारे बाप दादों से परिचित था?
1: ठीक ठीक,
2: आज न जाने किस लोक से तुम्हारी गोद में आ बैठा है। कविता का अपरिचित विचार मौलिक कहलाता है। तुम इन्हें तो अपने गोरखपुर के भाषण में कहा था,
1: कवि का अपरिचित विचार मौलिक कहलाता है। भाई वो भाभी हैं तो जीनियस, तभी तो कवि सम्मेलनों और विचार गोष्ठियों में आमंत्रित होती रहती हैं।
2: ये बात तो है। और सुन प्रिय नंदिनी, कवि का तो अपरिचित विचार मौलिक कहलाता है, तुम इन्हें तो अपने एक गोरखपुर के भाषण में कहा था, सो इस देवी का मेरे घर में तुम्हारी गैर हाजिरी में भी पधारना मौलिक तो माना ही जाना चाहिए।
1: मौलिकता के साथ सुंदरता भी हो तो भाभी पर गहरा सोतिया प्रभाव पड़ेगा। परंतु तू लिख किस पर रहा है यार?
2: ये रहस्य है भैया, चुपचाप सुन।
1: हाँ सुना।
2: हाँ, हृदय नंदिनी जी की एक शर्त शायद सुंदरता भी हो, सो ये देवी धवल शुभ्र वसना और ऐसी नपीतुली गठन की हैं कि अगर तुम होती तो तुम इन पर नव आगंतुक शीर्षक से एक कविता जरूर लिख देती। हाँ तो ये आई हैं। मुंह लगापन जरा इनमें ज्यादा है, शायद ये स्वभाव तुम्हें पसंद ना हो, किंतु तुम्हारे कवि जीवन के रिटायरिंग नेचर में और नेता जीवन के अभिनेतापन में जो मुंह बनाना, एकांत में बैठना और सैर सपाटे लगाना है, उसमें इनका मुंह लग जाने का स्वभाव बहुत भाएगा।
1: यार भाभी तुझे बहुत मारेगी।
2: अरे छोड़ और आगे सुन।
1: अच्छा सुना।
2: तुम्हारा काल तो अनंत ठहरा, वो जो कवियों का अनंत है, पर मैं तो गरीब इंसान नाम का जानवर हूँ। मेरे सुबह, दोपहर और शाम के बाद रात भी होती है।
1: वाह,
2: मेरी उम्र के बरस होते हैं, बरस के महीने, महीनों के दिन, दिन के घंटे, और घंटे भी टुकड़े टुकड़े में बटे होते हैं।
1: भाई वाह,
0: का भैया मंदिर के घंटे के टुकड़े?
2: अरे काका तुम तो चुप ही रहो, सुनते जाओ। हाँ एक काम करो, शिकंजी जरा ग्लास में डालो।
0: हाँ जी भैया।
1: मुझे भी थोड़ी सी।
0: हाँ जी भैया।
2: ठीक है, तो गौरी शंकर अब आगे सुन।
1: हाँ सुना।
2: मैं मृत हूँ, मुझे मृत साथी ही भाता है, अकर्मणी यानी दुनियावी कामों में लगा हुआ। तुम अमर हो, अमराई का एकांत तुम्ही को शोभता भी है, ऐसे समय मेरा भी एक साथी हो तो तुम्हें क्या नाराजी होगी? पिछली बार जब हम लड़े थे तब तुम्ही ने तो कहा था,
3: बहुत दूरी से अपने पारिवारिक और आत्मीयता के आकर्षण छोड़कर जो तरुणियां अपना जीवन सौंपती हैं, उन पर टूट पड़ने की बजाय उनका आदर करना चाहिए, और तुम तो बस न जाने कैसे हो।
2: तुम्हारी ये बात मैंने कान पकड़कर मान ली थी, अब इन नव आगंतुका के आने पर भी मान लो मैं तुम्हारे सदुपदेश को सपोर्ट करता हूं। ये भी बहुत दूर से आई हैं, शुभ्र वर्णा हैं, गुणमयी हैं, मधुरा हैं, प्रिय दर्शनी हैं, और इनमें कोमलता है, गुणों की ऐसी रेल पेल है कि मैं इन्हें अपने घर में रहने से इनकार नहीं कर सकता। तब मेरे विश्राम के दो साधन हो जाएंगे, संकट के दोस्त भी और स्नेह के दो हिस्सेदार।
1: यार संकट का दोस्त तो मैं, स्नेह का एक हिस्सेदार भाभी, और दूसरी ये नवागंतुका। इतनी चिट्ठी हो गई, ये है कौन यार? मुझे तो घर में कहीं कुछ नजर ही नहीं आता।
2: अरे बच्चू यही तो रहस है, तू तो सुनते जा सुनते जा।
1: सुना सुना, सुना।
2: प्री, जब वाल्ट हिल्टमन की कविता पुस्तक के पन्नों को चूम लेती हूं, कृष्ण भगवान भी बांसुरी के होंठों पर अपने होंठ रखे रहते हैं, परंतु यही बात तुम्हें मंजूर नहीं होती। यदि मैंने तुम्हारे अपने मैके से यहां आने के पहले ही इन नव आगंतुका के होठों को अपने होठों के बीच ले लिया, तो मुझे आशा है तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी।
0: ची ची ची ची ची ची ची ची। अरे भैया जो का करवे चले जा रहे हो।
2: काका तुम इतना ध्यान मत लगाओ, ये तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। तुम तो शिकंजी का ग्लास भरो।
0: अच्छा भरो।
2: हाँ, और भैया तू गौर से सुन।
1: हाँ सुना।
2: सुन प्रिय नंदिनी, इनमें एक आदत है, जब अपनी आदत से लाचार ये जल पड़ती हैं, तब लोगों पर जरूरत के या बिना जरूरत के कालीमा पोतने, ये तुम्हारी ही तरह डर कर खड़ी होती हैं।
1: ठीक।
2: पर इससे क्या, ये अपनी कहानी कहे जाएंगी और मैं इन्हें होंठ से चिपका जाऊंगा। इनकी जलन में शांति देना मुझे मेरा कर्तव्य मालूम होता है।
1: यार अब तो बता दे कि आखिर ये है कौन।
2: भैया सुन रहा चुपचाप, मैं कह रहा हूं सुन।
1: अच्छा भाई।
2: हाँ
1: सुना सुना।
2: प्रिय हृदय नंदिनी, मैं मानता हूं कि ये बहुत सुंदर नहीं है, सदा बाग में गरीबी से दिन काटे हैं, अतः ठंडक गर्मी और बरसात तीनों ने अपने जौहर इन पर आजमाए हैं। किंतु जिस तरह तुम अपनी कविताओं में कहती हो कि प्रेम के ग्राहक को रूप का गुलाम नहीं होना चाहिए, सच पूछो तो तुम्हारी गैर हाजिरी में इन्हें पाकर तुम्हारी उस परम सूच का अर्थ आज समझ आता है, और उसके आधार पर मेरे होंठ तक बात आ गई है कि मैं इनसे कह दूं कि तुम मेरे पास ही रहो।
1: भैया
0: अरे का भैया जो उल्टो सीधो लिख रहे हो। अरे सिकंजी पियो ले, गरम हो रही है, जा लीजिए।
2: थैंक यू काका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर नंदिनी, एक दोष उनका मुझे और दिखता है जिसे तुम्हारे सामने साफ साफ कह देना चाहता हूं। ये बड़े निराशावादी हैं, इनकी हर सांस से मानो अंधकार बिखरता है।

क्या दुनिया में मुंह सीधे और मन के मेले लोगों की कमी है जो प्यारे लगते हैं परंतु बड़ी कड़वी बात कहते हैं? फिर इनकी जलन में इनके मुंह से जो निकल जाए उसे कभी निगलने के लिए हमें उदार होना चाहिए, क्योंकि गांव में जब घर के चूल्हे का धुआं

0: चल सुना आगे
1: सुन
0: सुना।
1: हाँ तो प्रिय हृदय नंदनी, इन नवेली के आने से तुम्हारी गैर हाजिरी में मेरा जी खूब रम रहा है और तुम्हारे आने पर भी रमा रहेगा, क्योंकि तुम जब प्रसाद और पो सूर और गोविंदा ग्रज की रचनाओं से अपना जी रमाते समय मेरी भरपूर उपेक्षा करके कभी उस पर दुखी नहीं होती हो, तो मैं यदि उन देवी जी से अपना मन बहलाऊं तो तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर त्याग का उदाहरण भी देखना पड़ेगा, जो अपने पर मिटने को तत्पर हो उनका निरादर कैसे किया जाए, जो आत्मसमर्पण की ज्वाला जगाते रहे उनसे कैसे मुंह फेरा जाए, जो मेरे लिए तिल तिल मिटने को तैयार हो उसका निरादर कैसे किया जाए, जो जीते जी हृदय से चिपक कर छोटापन स्वीकार करने को प्रस्तुत है उस पर अपना बड़प्पन जताकर कैसे कहा जाए कि मेरे घर मत आओ।
2: यार तेरा ये रहस्यमय पन्ना और कितना लंबा है?
1: बस आखिरी पन्ना है। प्रिय नंदिनी, ऐसे जनसेवक देशी हो या विदेशी गुणज्ञ होने चाहिए, सो ये तारीफ के लायक गुण संपन्न है। भारतीयों में तो इस जाति के लोग अपने गुण को अपने मुंह पर लटकाए घूमते हैं, किंतु ये गुण का प्रदर्शन लेकर नहीं चलती। इनकी भलाई तो इनके रग रग में भरी हुई है, अतः मैंने इन नवेली मेहमान इनको अपने घर में जगह दे दी है। तुम नाराज मत होना, तुम्हारा मुंशी बनारसी प्रसाद। लो गौरी, चिट्ठी पूरी।
2: भाई वाह।
1: अब मैं इसे मोड़ता हूं।
2: हाँ ठीक।
1: और चौकोन लिफाफे में रखता हूं।
2: ठीक है।
1: अरे एक मिनट, फुटनोट लिखना रह गया है भाई।
2: हाँ? अरे यार इतनी रामायण लिखने के बाद भी कुछ कसर बाकी है।
1: ये लो लिख दिया, बिट्टू को प्यार और मेरे होंठ। मेरे होंठ तो आजकल नवेली के लिए सुरक्षित हैं। रामू काका।
3: जी भैया।
1: इसे पोस्ट ऑफिस में डालो।
3: बहुत अच्छी।
2: अरे भैया पता लिख लिया है?
1: बिल्कुल लिख दिया है।
2: ठीक है।
1: श्रीमती हृदय नंदिनी नायक, शैल नगर, पोस्ट ऑफिस वर्षा घाट, कैलाश प्रांत।
2: ठीक।
3: लो जमदाने आओ। लो। अरे कौन है भैया?
4: मैं हूं काका पोस्टमैन।
3: अरे ठहरो भैया, हम आ रहे हैं।
4: आओ। और भैया काका कैसे हैं आप?
3: अरे ठीक हैं भैया।
4: हाँ ये चिट्ठी लीजिए।
3: लाओ भैया लाओ। किनकी है
4: ये? तो तुम्हारे साहब की चिट्ठी है।
3: साहब की?
4: हाँ।
3: अच्छा भैया, बहुरानी ने भेजी है?
4: हाँ हाँ, श्रीमती नायक ने भेजी है।
3: अच्छा भैया।
4: हाँ ये लो
3: लाइए।
4: हाँ चलता हूँ काका।
3: हाँ भैया।
4: अच्छा राम राम।
3: राम राम।

0: अरे भैया, आपने आज मोटर के तेज ब्रेक नहीं लगाए?
1: नहीं रामू काका, मैंने तेज गाड़ी चलाना और ब्रेक लगाना छोड़ दिया।
0: वाह भैया,
1: आओ गौरीशंकर, आ जाओ।
0: हाँ। अरे भैया, बहू रानी की चिट्ठी आ गई है।
1: अच्छा।
0: हाँ भैया।
1: चिट्ठी कहाँ है?
0: ओ, मेज की दराज में ही देख लो भैया।
1: हाँ।
2: पढ़ो यार, भाभी ने क्या लिखा है।
1: श्रीमान, अच्छा हुआ नए कवि नए विषय पर कविता लिखते हैं।
3: तो आपके पुराने कट्टर दिमाग ने भी जो कविता लिखी नए विषय पर लिखी, ना वो भगवान पर है, ना भक्तों पर, और ना ही देशभक्त पर ही, धूम्रपान ही पर सही।
2: क्या धूम्रपान?
1: चुपचाप सुन यार, आखिर तेरी भाभी कवियत्री हैं, इसलिए उसने ये रहस्य खोल लिया।
3: आप कवि बनने चले, ये तो अच्छा हुआ। विषय भी कैसा बढ़िया मिला है आपको, सिगरेट पर। ये विवेचन अभी ताजा ही ठहरेगा। 10-20 नवेलियां रोज राख करके आपकी सुरुचि बढ़ेगी। सारी शुक्ल वर्णा बेचारियां श्याम हो जाएंगी। उनके जलने भुनने में आपने साम्य मेरे साथ ही ढूंढा। पहली की नवेली से मुझे डाह क्यों होने लगी भला, जब साक्षात नवेली के आने तक मैं धीरज धरने की बात सोचे हुए हूं। हाँ, केवल एक ही डर है,

0: धुएं से निकोटिन जहर आपके कलेजे में बढ़ेगा और वो आपके और बिट्टू दोनों के लिए हानिकारक होगा। इसके सिवा मुंह से आने वाली दुर्गंध और बढ़ेगी। सभ्यता में नवागता नवेलियों के सिवा बाजार में और भी चीजें मिलती हैं, किंतु जो प्रसाद और पो पर ताने कशी कर उसमें कश खींचने का लालच कोई देखे तो आश्चर्य क्या। अभी तक गृह जीवन का विनोद हमारे विषय स्वभावों में भी जीवित था, अब नवागत आदत से आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते ही स्वभाव को भी हानि पहुंचेगी, और जिसका परिणाम ये होगा कि आपकी आज की कविता कल वालियों में बदल जाएगी। और ये मैं चाह से कह रही हूँ। कितना अच्छा होता यदि ऐसा ही गत आपने बेचारी घर की मेहरी पर ही लिख दिया होता। वो स्वास्थ्य नाशक तो नहीं है, बर्तन साफ रखती है, स्वास्थ्य वर्धक है, या फिर रामू काका पर ही लिख दिया होता। वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, इसी से आप तंदुरुस्त रहते हैं। आपकी नहीं, युग के महाभावों की हृदय नंदनी।
1: क्या कहते हो बनारसी?
2: मैं सोच रहा था कि वो मेरे दुश्चरित्र होने पर लताड़ेंगी, किंतु उन्होंने मेरे गुड़ पात्र की चिंदियां बिखेर दी। आज से सिगरेट से भी तौबा।
1: भाई वाह, लेकिन क्यों
2: यार? दोस्त, बाजी में हार गया।
3: अरे गोरी भैया, जा भाई ना मार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 9वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। अब आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में 2 अक्टूबर गांधी जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि बापू ने हमें स्वच्छता का मंत्र दिया है। स्वच्छता से जुड़े प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनभागीदारी से नदियों की सफाई ऐसा ही सराहनीय प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि हर नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आधुनिक युद्ध अब केवल सशस्त्र बलों या हथियारों तक सीमित नहीं है बल्कि यह बहुक्षेत्रीय हो गया है। इसलिए भारत ऐसी रक्षा रणनीति बना रहा है जिसमें मौजूदा जरूरत के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए भी हथियार विकसित किए जा सकें। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने कहा है कि आने वाला समय आयुर्वेद का है, आवश्यकता उसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की है। श्री पटेल ने आयुर्वेद महाविद्यालय को शिक्षा, शोध, सेवा और जन जागरूकता को एक साथ आगे बढ़ाने का केंद्र बनने के लिए प्रोत्साहित किया। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जापान में चल रहे एशियाई खेलों में आज भारत के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं भारत ने आज स्क्वैश में 2 रजत पदक जीते। एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हो गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व पर्यटन दिवस पर। साथ ही हमारा विषय रहेगा विश्व बधिर दिवस, संदर्भ है प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम रविवार को, एवं विश्व नदी दिवस, संदर्भ है प्रतिवर्ष सितंबर के चौथे रविवार को। दोस्तों, क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे सांस्कृतिक गतिविधियां आपकी प्रतिभा को और अधिक निखारती हैं विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस पर। साथियों, पर्यटन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल मनोरंजन या घूमने फिरने का साधन नहीं, बल्कि विभिन्न देशों, संस्कृतियों, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को समझने का भी माध्यम है। पर्यटन के महत्व और उसके विकास के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। साथियों, विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत सन 1980 में विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। 27 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन के संविधान को स्वीकार किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में पर्यटन के महत्व को बढ़ावा देना तथा लोगों को पर्यटन से होने वाले लाभों के प्रति जागरूक करना है। हर वर्ष विश्व पर्यटन दिवस के लिए एक विशेष विषय निर्धारित किया जाता है, जिसके माध्यम से पर्यटन से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दोस्तों, पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन से होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और अन्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होती है। दोस्तों, पर्यटन का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। जब लोग दूसरे राज्य और देशों की यात्रा करते हैं तो उन्हें वहाँ की भाषा, भोजन, वेशभूषा, कला, संस्कृति, संगीत और परंपराओं को समझने का अवसर मिलता है। इससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सम्मान बढ़ता है। साथियों, भारत पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश है। यहाँ हिमालय के बर्फीले पर्वत, राजस्थान के किले, महल, केरल के समुद्र तट, गोवा के तट, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, उत्तर भारत के धार्मिक केंद्र और दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ताजमहल, खजुराहो, सांची स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं, कश्मीर

कश्मीर और वाराणसी जैसे स्थान भारत की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विविधता को दर्शाते हैं। दोस्तों, भारत में धार्मिक पर्यटन का भी विशेष महत्व है। लोग तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थलों की यात्रा करके आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वन्य जीव पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और चिकित्सक पर्यटन भी धीरे धीरे महत्वपूर्ण हो रहे हैं। दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस हमें यह संदेश देता है कि पर्यटन केवल यात्रा और मनोरंजन नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। पर्यटन लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ विकसित करता है। हमें पर्यटन का आनंद लेने के साथ साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा भी करनी चाहिए। यदि पर्यटन को जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ विकसित किया जाए तो यह समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय विश्व बधिर दिवस पर चर्चा करने का। साथियों, विश्व बधिर दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यह दिवस बधिर एवं श्रवण बाधित लोगों के अधिकारों, उनकी क्षमताओं और समाज में उनके सम्मान भागीदारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन का उद्देश्य यह संदेश देना है कि सुनने में कठिनाई किसी व्यक्ति की प्रतिभा, योग्यता और सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। साथियों, विश्व बधिर दिवस का प्रमुख उद्देश्य बधिर लोगों की समस्याओं को समझना और उनके प्रति समाज में संवेदनशीलता विकसित करना है। कई बार श्रवण बाधितों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस दिवस के माध्यम से उनके अधिकारों और आवश्यक सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। यह दिवस हमें यह भी सिखाता है कि बधिर व्यक्ति को दया की नहीं बल्कि समान अवसर और सम्मान की आवश्यकता है। यदि उन्हें उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो वे समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त समाज में जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग बधिर व्यक्तियों को कम सक्षम समझ सकते हैं। ऐसी सोच को बदलना आवश्यक है। बधिर व्यक्ति भी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा, कला, खेल, विज्ञान और तकनीक अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बधिर बच्चों के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालयों में सांकेतिक भाषा, कैप्शन, सहायक उपकरण और विशेष शिक्षण पद्धतियों की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आधुनिक तकनीक ने श्रवण बाधित लोगों के जीवन को काफी आसान बनाया है। श्रवण यंत्र, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज और लाइव कैप्शन जैसी सुविधाएं संचार में सहायता करती हैं। समाज को भी सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूक होना चाहिए। दोस्तों, विश्व बधिर दिवस केवल एक विशेष वर्ग के प्रति जागरूकता का दिन नहीं है, बल्कि समानता और समावेश का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। यह हमें समझाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी शारीरिक कठिनाई से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा, मेहनत और व्यक्तित्व से होती है। यदि समाज समान अवसर, सम्मान और सहयोग प्रदान करे, तो बधिर व्यक्ति भी आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विश्व बधिर दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भेदभाव को समाप्त करेंगे, सांकेतिक भाषा और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर देने वाला समाज बनाने में अपना योगदान देंगे। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

अभी सुन रहे थे आप ये गीत। साथियों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय विश्व नदी दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों विश्व नदी दिवस हर वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नदियों के महत्व को समझना और उन्हें

स्वच्छ सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। नदियाँ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बिना मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों का जीवन कठिन हो जाएगा। दोस्तों, भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। हमारे देश में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी अनेक बड़ी नदियाँ हैं। नदियों से पीने का पानी, खेती के लिए बिजली और मछली जैसे कई संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। कई शहर, गांव नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नदियाँ हमारे इतिहास, संस्कृति और धार्मिक जीवन में विशेष योगदान देती हैं। दोस्तों, नदियाँ केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी बहुत जरूरी है। नदियों में अनेक प्रकार की मछलियाँ और जीव रहते हैं। नदी के आसपास पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। नदियाँ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। दोस्तों, नदियों का पानी धरती के जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए नदियों को साफ और स्वच्छ रखना हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, आज कई नदियाँ प्रदूषण की समस्या से घिरी हुई हैं। शहरों और कारखानों का गंदा पानी कई नदियों में चला जाता है। लोग नदियों में प्लास्टिक, कूड़ा कचरा और गंदगी डालते हैं। इससे नदी का पानी दूषित हो जाता है, उससे उसमें रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, नदियों में बढ़ता प्रदूषण मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। यदि हम नदियों को साफ नहीं रखेंगे तो भविष्य में स्वच्छ पानी की समस्या बढ़ सकती है। नदियों को बचाने के लिए हमें कुछ सरल कदम उठाने चाहिए। साथियों, सबसे पहले नदियों में कूड़ा और प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए। कारखानों और शहरों के गंदे पानी को साफ करके ही नदी में छोड़ा जाना चाहिए। नदी के किनारे अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों, सरकार के साथ साथ आम जनता की भी यह जिम्मेदारी है कि वे नदी की सफाई रखें। साथियों, विश्व नदी दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम नदियों में कूड़ा नहीं डालेंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और नदी के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय सांस्कृतिक गतिविधियाँ आपकी प्रतिभा को और अधिक निखारती हैं पर चर्चा करने का। दोस्तों विद्यार्थी जीवन सीखने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का सबसे अच्छा समय होता है। पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना भी बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक गतिविधियों में नृत्य, संगीत, गायन, चित्रकला, नाटक, कविता, कहानी लेखन और लोक कला आदि शामिल हैं। ये गतिविधियाँ विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने में मदद करती हैं। दोस्तों हर विद्यार्थी में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। किसी को गाना पसंद होता है, किसी को नृत्य, किसी को चित्र बनाना और किसी को मंच पर बोलना अच्छा लगता है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों को अपनी रुचि और प्रतिभा दिखाने का अवसर देती हैं। जब विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे लोगों के सामने अपनी बात रखने और अपनी कला प्रस्तुत करने का तरीका सीखते हैं। इससे उनका व्यक्तित्व निखरता है। दोस्तों सांस्कृतिक गतिविधियाँ आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होती हैं। कई विद्यार्थी लोगों के सामने बोलने, मंच पर आने से डरते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बार बार भाग लेने से उनका डर धीरे धीरे कम होता है। वे बिना झिझक अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करना सीखते हैं। साथियों सांस्कृतिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों को नए विचार सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। चित्रकला, कविता, कहानी और नाटक जैसी गतिविधियों में विद्यार्थी अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं। इससे उनकी रचनात्मक सोच बढ़ती है। इन गतिविधियों से विद्यार्थी केवल किताबों तक सीमित नहीं रहते बल्कि अपने आसपास की दुनिया को अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी करते समय विद्यार्थियों को समय का सही उपयोग करना पड़ता है। वे नियमित अभ्यास करते हैं, अपने कामों को सही समय पर पूरा करते हैं। इससे उनमें अनुशासन की भावना विकसित होती है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम समूह में किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। इससे उनमें सहयोग, मित्रता और एकता की भावना विकसित होती है। दोस्तों सांस्कृतिक गतिविधियाँ हमें अपनी संस्कृति और परंपरा से भी जोड़ती हैं। लोक नृत्य, लोकगीत, त्योहार, पारंपरिक कला, नाटक के माध्यम से विद्यार्थी अपनी संस्कृति को समझते हैं। इससे उनमें अपनी भाषा, परंपरा और देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि प्रतिभा, आत्मविश्वास, रचनात्मकता, अनुशासन और सहयोग की भावना को बढ़ाने का माध्यम भी है। दोस्तों अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का मनचाहा कार्यक्रम युववाणी। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
3: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी आपके नाम।
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला नगमा हम आपको सुनवाने वाले हैं फिल्म मैंने प्यार किया से। सुमधुर आवाज लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। देव कोहली के लिखे गीत को संगीत में बनाया है राम लक्ष्मण ने। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। लीजिए एक और प्यारा सा नगमा पेश आपके लिए। फिल्म है सिंग इज किंग, स्वर है राहत फतेह अली खान और शय खुशाल के, शब्द रचना है मयूरपुरी की और संगीत है प्रीतम का।

लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं का ये बहुत प्यारा सा गीत, जिसे लिखा है समीर ने और इसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम में अंतिम नगमा पेश आपके लिए फिल्म है ए दिल है मुश्किल। स्वर हैं अमित मिश्रा और शिल्पा राव के। ये गीत रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत है प्रीतम का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ए दिल है मुश्किल के गाने की एक छोटी सी झलक। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए, अब लेते एक छोटा सा अंतराल।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी,
1: ये तुम्हारे ना।
2: और ये
3: मेरी गुड़िया की
4: ना। दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से
7: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा नदी स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जन भागीदारी की मिसाल बताया। उन्होंने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए लोगों से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। वहीं उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने महाकाल लोक से प्रधानमंत्री ई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल स्थित पंडित खुशीलाल शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण से पहले शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। श्री पटेल ने कहा कि आने वाला समय आयुर्वेद का है, आवश्यकता उसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की है और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन से शहडोल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और इस वर्ष किसानों का धान भी सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत प्यारा संगीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दुश्मन से। और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, गीत रचना की आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश सोनू निगम की आवाज में। गुलजार के लिखे हुए गीत को संगीत में बनाया है ए आर रहमान ने। फिल्म है साथिया।

लीजिए अब सुनिए कबीर सिंह की आवाज में, अरिजीत सिंह की आवाज में कबीर सिंह का गीत, गीत और संगीत मिथुन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म कबीर सिंह का गीत, गीत और संगीत था मिथुन का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब हम आपको सुनाते हैं अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म बॉस से। स्वर हैं अरिजीत सिंह और नीति मोहन के। गीत लिखा है मनोज यादव ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जहर का गीत। स्वर है श्रेया घोषाल के, ये शब्द रचना है सईद कादरी की और संगीत है रूप कुमार राठौर का।

सिंघम। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और अजय की आवाज में इस फिल्म का गीत। ये गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और इसे संगीत में बनाया है अजय अतुल ने।

भाग मिल्खा भाग। आइए अब हम सुनवाते हैं आपको इस फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज में। प्रसून के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

आई हेट लव स्टोरी। अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज में। ये गीत लिखा है कुमार ने और संगीत है विशाल और शेखर का।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म दबंग से, स्वर है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की। गीत लिखा है फैज अनबर ने और संगीत है साजिद वाजिद का।

श्रेया घोषाल के गायस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब समय है एक अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब तक भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रम्मी कल्चर ऐप और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामलों में लगभग 442 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। निदेशालय ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में सावधि जमा, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विनी शंकर ने डेकाथोनल में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज की सभा की शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इस कार्यक्रम में विषय होगा दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कृष्ण कुमार नीमा। रात 8:00 आप सुनिएगा क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। इसके बाद 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की प्रस्तुति रहेगी आकाशवाणी छिंदवाड़ा की। रात्रि 9:30 आप सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:00 एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:20 पर विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।

भोपाल पेश किया जाएगा। 8:30 पर अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आप सुनिएगा एस सुरप्रदीप का कर्नाटक फ्लूट। 9:30 उर्दू कार्यक्रम आईना पेश किया जाएगा। 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला, इसमें आप सुनिएगा उल्हास तेलंग का ख्याल गायन, राग होगा बिलास खानी तोड़ी। दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से में आप सुनिएगा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 10वां भाग। 1:00 स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, योगदान होगा आकाशवाणी भोपाल का। 1:30 पर लोक संगीत, इसमें आप सुनिएगा जगदीश सिंह बोरेलिया व साथियों के गाए मालवी लोकगीत। कार्यक्रम में संगीतकार होंगे मायाराम परमार तंबूरा पर, रमेश परमार मंजीरा पर, जगदीश भूरिया मंजीरा पर, कमलेश पटेल ढोलक पर और सूरज बामनिया बांगो पर। 1:45 पर सुगम संगीत, योगदान होगा आकाशवाणी भोपाल का। 2:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, योगदान होगा आकाशवाणी भोपाल का। फिल्म संगीत शाम 5:33 पर, 6:30 पर, 8:35 पर और 10:20 पर। शाम 6:00 आप सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर कार्यक्रम आजकल। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। रात 8:00 विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। रात्रि 9:30 आप सुनिएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:00 एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:30 आप सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, इसमें आप सुनेंगे सिद्धा साई का ख्याल गायन, राग होगा जोग कौंस। इस कार्यक्रम में संगीतकार होंगे तबला पर उदय प्रताप सिंह ठाकुर और हारमोनियम पर अमन मलक। श्रोताओं, ये थे आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में।
3: किधर है?
4: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
3: ये तो झटपट काम है।
4: कैसे?
3: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
4: और बाकी चेंजेस?
3: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: आरबीआई कहता है,
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के युवाओं के नदी स्वच्छता प्रयासों की सराहना की। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विकास कार्यों का किया शुभारंभ। विश्व पर्यटन दिवस पर इंदौर और मांडू में पर्यटकों का किया गया पारंपरिक स्वागत। और प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर सहित कई जिलों में आज रात बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 138वें संस्करण का आज प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ ये कार्यक्रम सुना। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा नदी स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जन भागीदारी की मिसाल बताया। उन्होंने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए लोगों से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मन की बात देश भर में हो रहे जन प्रयासों और सकारात्मक बदलावों को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल स्थित पंडित खुशीलाल शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के पहले शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद को केवल उपचार तक सीमित न रखते हुए स्वास्थ्य जागरूकता, रोग नियंत्रण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने महाकाल लोक थाने का लोकार्पण किया और महाकाल लोक से प्रधानमंत्री ई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन में आगामी समय में एयरपोर्ट का भूमि पूजन और मेट्रो सुविधा भी उपलब्ध होगी। श्री यादव ने बताया कि ग्वालियर और जबलपुर को क्रमशः टेलीकॉम और औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी है।
5: आने वाले समय में ग्वालियर भी नई मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा और टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी नगरी के रूप में ग्वालियर बनने वाला है। इसी के समान रूप से जबलपुर के अंदर भी रोजगार परक एक पूरा मार्ग हम नया बनाने वाले, जो इंदौर, भोपाल से होके जबलपुर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जबलपुर भी औद्योगिक हब का हिस्सा बने। मेरी अपनी ओर से बधाई।
0: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत आज सड़क चौड़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने पैतृक मकान के प्रभावित हिस्से पर स्वयं कुदाल चलाकर काम की शुरुआत की। सड़क चौड़ीकरण से 272 भवन प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और इस वर्ष किसानों का धान भी सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने आज उज्जैन से शहडोल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाकर हर खेत तक पानी पहुँचाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने किसानों को उन्नत बीज, जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ पशुपालन, उद्यानिकी, मछली और कुक्कुट पालन से जोड़कर आय बढ़ाने पर जोर दिया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल और ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू में पर्यटकों का पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर स्वागत किया गया। पर्यटकों को अतुल्य भारत से संबंधित उपहार और प्रचार सामग्री भी प्रदान की गई। मांडू के जहाज महल परिसर में पर्यटकों को क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया गया। इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाकर ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
6: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का मिशन लाइफ आम जन को जीवन शैली में हो रहे दुष्प्रभावों के प्रति जागृत कर रहा है।
7: मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का उद्देश्य धरतीवासियों को पर्यावरण के अनुकूल दैनिक आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 को ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इस अभियान पर अपने विचार व्यक्त किए थे। पर्यावरण को समर्पित इस अभियान के इंदौर जिले में क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए वन मंडल अधिकारी लाल सुधाकर सिंह ने बताया,
8: मिशन लाइफ भारत सरकार की एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की एक पहल है। इसी के अंतर्गत वन मंडल इंदौर में भी हमने मिशन लाइफ के अंतर्गत वृक्षारोपण का अपने परिक्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया और जुलाई माह में हमने लगभग 3 लाख पौधों का रोपण किया।
7: पर्यावरण संरक्षण को अपना जीवन समर्पित करने वाली पद्मश्री डॉक्टर श्रीमती जनक पल्टा मगिलीगन ने पर्यावरण को जीवन शैली में आत्मसात करने की बात कही।
9: मैं अपना जीवन पिछले 42 साल से इसी काम में ऐसा जी रही हूँ। आधा एकड़ जमीन, आधा एकड़ आसमान है उसके साथ मेरा, जिसमें मैं चारों तरफ जैविक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के साथ जीती हूँ। मेरा जीवन, मेरा घर केमिकल मुक्त है, प्लास्टिक मुक्त है और पूरी तरह जीरो वेस्ट है और पूरी तरह जैविक है।
7: पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के भारत सरकार के इस अभियान मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की गतिविधियों की जानकारी के साथ मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर और शहडोल सहित कई जिलों में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, जबकि ग्वालियर, रीवा, सतना, छतरपुर और अन्य जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग ने लोगों से गरज चमक के दौरान खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है। बात खेल की। क्रिकेट में आज तिरुवनंतपुरम में भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 295 रन बनाए। समाचार लिखे जाने तक भारत ने 12 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 74 रन बना लिए थे। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में और तीसरा वनडे 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांदीपनि विद्यालय विनोबा रतनाम को फिक्की समर्थित राष्ट्रीय अराइज अवार्ड मिलने पर कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में हर रविवार को आयोजित होने वाली नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना में आज संतोष पांडे और साथी सागर द्वारा राय नृत्य की प्रस्तुति देंगे। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव में रोजाना जिले भर के हजारों लोग पहुंच रहे हैं। महोत्सव का समापन कल होगा। सेवा संकल्प अभियान के तहत आगरमालवा जिले में प्रतियोगिताओं के साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की गई। खंडवा में पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर पोरवाड़ दिगम्बर जैन समाज द्वारा क्षमावाणी महोत्सव श्रद्धा और आत्मशुद्धि के भाव के साथ मनाया गया। नर्मदापुरम जिले में अवैध शराब के खिलाफ बालागंज, मालाखेड़ी, गिरनी कंपाउंड, पिंचिंग घाट और भीलपुरा में कार्यवाही की गई, जिसमें 40 बल्क लीटर कच्ची शराब और 1.5 क्विंटल महुआ लाहन नष्ट किया गया। राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण नशा मुक्ति अभियान पर आधारित प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक रहा। और बुरहानपुर जिले में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम उत्साह के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सेवा, पोषण, सीखने और सहभागिता का संदेश दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
1: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
0: RBI कहता है, जानकार बनिए,
1: सतर्क रहिए।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली अपनी सभी बहनों को स्वाति बहन की राम राम। देखो बहन, कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है तो अपनी बहनें राह बनाई लेती हैं, चाहे वे घर गृहस्थी के कामकाज की बात हो या फिर आज आत्मनिर्भर होवे की। आज देखे जाए तो अपने आसपास बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो कभी ऐसी सिमटी थी अपने घरों में, अपने परिवारों में, और आज देखो तो सबके लाने एक प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने अपने आप को तो अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया है, साथ ही साथ आज वे दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। और बहनों, कहते हैं ना कि जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत से अपने मन में विचार आते हैं, मन अपना घबराता है और लगता है कि हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन बहनों, यही एक पल होता है जब हमें सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखाने की, अपने ऊपर विश्वास दिखाने की ज़रूरत होती है, और चाहें तो एक छोटे रूप में जो है शुरुआत काम की कर सकती हैं और धीरे धीरे अपनी मेहनत से, लगन से अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं। और आज देखी जाए तो बहुत से ऐसे बाजार हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से वे अपने बनाए जो सामान हैं उनको सरलता से विक्रय भी कर सकती हैं, और शासन के द्वारा भी कई प्रयास करे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर आज बात करें तो अपने गाँव की में देखो तो बहुत सी ऐसी कलाएं हैं, संस्कृति है, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी मांग बढ़ रही है, और उन कलाओं को शासन भी यही प्रयास कर रहा है कि वह फले फूले और आगे बढ़े। और कही जाते हैं कि जब अपन कोनो भी काम करवे की ढंग से मान लेते हैं और मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे अपन को सफलता भी मिलत है। अब देखो कितनी छोटी बात होते कि अपन देखा था कि अपने घर के आसपास या फिर अपने शहर में या फिर अपने गाँव में कई प्रकार के जो है पर्यटक स्थल होते हैं, अपन उतें घूमन भी जाऊत हैं, अपनों मन भी करत है, और देश विदेश में भी अपन के बहुत से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ अपन घूमन फिरन जाऊत हैं। लेकिन बहनों, कहते हैं ना कि कोनो भी काम अगर अपन को करने हैं तो कोनो एक व्यक्ति के करे से ना होते हैं, और अगर पूरे सभी लोग ये मान लें कि हमारी ही जिम्मेदारी है और हमें खुद भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे अपने वातावरण है या फिर अपने पर्यटन स्थल हैं वे दूषित हों या फिर अस्वच्छ हों, तो वे सभी क्षेत्र जो है अच्छे से सुंदर बने रहें और स्वच्छता भी अपनाए रहें। तो देखो, अपन घूमन फिरन जाऊ थे तो अपन को बहनों कछु बातन को ध्यान सोई रखने आऊ थे, जैसे जोन भी अपन सामान लेके जा रहे हैं तो कोनो भी प्रकार की वहाँ पे गंदगी ना फैले, और ये सहयोग अपन को अपने मोड़ा मोड़ियन को भी सिखाऊने हैं, क्योंकि कहते ना कि एक छोटी सी आदत ही आगे चल के बहुत अच्छी नियमित दिनचर्या को हिस्सा बन जाऊ थे, क्योंकि वे भी कल के दिन अपने अलावा कहूँ कोनों के संगे जाते हैं तो उन बातन को ध्यान रखें तो वे भी कोनों भी प्रकार की गंदगी ना फैला पाएँ। और बहनों, छोटी छोटी समझदारी से ही जो है अपने गांव को या गांव की पंचायत हो, गांव के आसपास के क्षेत्र हो, और कहीं भी की बात करें तो सभी जगह सफाई तभी हो सकत है जब हर एक व्यक्ति इसके महत्व को जाने। अपने देश में अगर देखो बहनों कही जाए तो कोने कोने में कई प्रकार की धरोहरें हैं और अपने आप में एक अपनी ही संस्कृति और समेटे भय हुए हैं, उनको देखने को अपनों भी मन करत है और तो और देश विदेश से भी कई लोग इन्हें देख भी आउत हैं। और ऐसे हर साल यानी 27 सितंबर को अपन जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाउत है। पर्यटन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जो कि अपने आप में एक इतिहास रखे हुए, जिसकी सुंदरता और कौन बहुत सी बातें सबको प्रेरित करती हो। तो बहनों, जो अपने पर्यटन स्थल होते हैं वे केवल घूमने के ही स्थान नहीं होते हैं, इससे कई स्थानीय लोगों को जो है रोजगार भी मिलता है। अगर हम पर्यटन को महत्व देंगे, जागरूक रहेंगे तो कई स्थान ऐसे हैं जो कि आज और बेहतर उभर सकते हैं। ये हमारी संस्कृति, परंपरा, प्रकृति और विरासत को दर्शाते हैं। यहाँ तक कि अगर अपन बहनों अपने गांव की भी बात करें तो कई ऐसे पर्यटन स्थल से कोई कम नहीं है। यहाँ पे हरी भरी प्रकृति, खेत खलियान, तालाब, पुराने मंदिर, लोकगीत, लोक संस्कृति और पारंपरिक जो भोजन है हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। तो इन सबको सहेजना, संभालना हम सबकी ही जिम्मेदारी है, और
एक पीढ़ी से दूसरी जो पीढ़ी है उसको भी यह पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने गांव में ऐसी व्यवस्था करें, सुंदर अपने मंदिरों को रखें, हरियाली चारों तरफ रहे, जो अपने यहाँ के विशेष भोजन हैं, हर जगह की देखो विशेष भोजन होते हैं, उनको प्रस्तुत करें, अपनी संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाएँ, तो निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और इससे जो गांव के लोग हैं उनको भी कई प्रकार के रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। स्थानीय भोजन, विशेष तौर पर आज गांव में बनने वाली जो चीज़ों की बात करें, उनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार हैं उनमें बढ़ावा भी मिल रहा है। लेकिन जो पर्यटन है इसके साथ साथ हम सबकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो इसके आसपास कोई भी चीज़ हो, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जल स्रोत होते हैं, इनकी भी अपन को देखरेख करना है और सुरक्षित रह के रखना है और अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी अपन को सुरक्षा करना है। तो जैसे अपन कोई नदी के किनारे जाएं या फिर कोई ऐसे पर्यटन स्थल की ओर जा रहे हैं जहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे हैं तो उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाए, उसी प्रकार अपन के जो जल स्रोत हैं उनका भी अपन को ध्यान रखना है कि उनको किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुँचे, तभी अपन को घूमने का फिरने का अच्छे से मज़ा आता है। अपने जो मोड़ा मोड़ी हैं उनको अपन उसके महत्व को बता पाते हैं। तो हम तो अपन अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही करें कि जहाँ भी घूमें फिरें, खुल हो के घूमें, खुश रहें और नई नई जानकारियाँ अपने आस पास लोगों को भी बांटें, तभी जो है पर्यटन का सही महत्व होता है। तो देखो बहनों, अभी अपनी लोकगीत की बात हो ही रही थी तो अपने जो भारत देश है इसकी माटी के खंड खंड में जो है कई प्रकार की चीज़ें हैं जिनको अपन देखवो चाहते हैं, जानवो चाहते हैं। तो यही पे अपन सुनते हैं लोकगीत, स्वर है चंद्रभूषण पाठक का।

0: बिना देखो, जब अपन अपने बुंदेलखंड की बात करते हैं सो ऐसो लगत है सभी जगह एक एक करके अपन घूम आवे, लेकिन अपन घूमन जाऊत हैं फिरन जाऊत हैं तो विभिन्न प्रकार के अपन को लोग भी मिलत हैं, उनकी भाषा अलग होती है, उनके कपड़ा पहनने के तरीका अलग होते हैं और कई प्रांतों के बारे में भी अपन को बताऊत हैं। और जा जानकारी अपन सबई के अंदर एक उत्सुकता जगा देते हैं कि कायना अगली बेर अपन उतई घूमन जाए। लेकिन बहनों, अपन को कहे जाते हैं कि घूमबे फिरवे जब अपन जाऊत हैं तो जौन भी जगह है बाई की जानकारी को अपन सहेजें, बाई की संस्कृति के बारे में जानें, वहाँ पे कैसे भोज पदार्थ हैं उनको बेहतर तरीके से जानें। लेकिन ध्यान रखें कि अपन के द्वारा कोनों भी प्रकार की परेशानी ना हो पे। कई बार अपन देखते हैं कि आसपास बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको सुनने में बोलने में भी कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में वे अपनी बात जो है सरलता से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। और अगर अपन और भी देखते हैं कि अपने जीवन में कभी ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर अपन को मिलो होते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है कि अपन उनके प्रति जो है सम्मान संवेदनशीलता रखें और उनके लाने जो अपन सरल प्रयास कर सकते हैं जरूर करें, उनकी बात को धीरे धीरे समझें, जो भी उनको आवश्यकता है उनकी पूर्ति करें। और हाँ, जय बात को बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति भले ही बाय में उनको कोनो भी शारीरिक कमी होए, लेकिन प्रतिभा क्षमता के बल पे भी कोनों से कम नहीं होते, उन्हें भी शिक्षा को अधिकार होते हैं, कला में आगे बढ़ने का होता, खेल नौकरी व्यवसाय और सभी प्रकार के वे काम करवे की उनको भी स्वतंत्रता होत है जो कि एक सामान्य व्यक्ति करत है। बस जरूरत होता है कि हम सब थोड़े धैर्य और संतुलन बनाकर उनको आगे बढ़ने में मदद करें और हमारे बिना छोटे छोटे प्रयास से ही जो है और सहयोग से हम उनके जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं और उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। तो अपन अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहें कि कोई भी व्यक्ति में अगर किसी प्रकार की शारीरिक कमी है तो उसको भूलकर उसके भाव को समझें, उसको आगे बढ़ने में मदद करें। और अब सुनते हैं संदेश।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला सूखा सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल सब्जियों के छिलके बचा भोजन चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज प्लास्टिक कांच धातु कपड़ा और गत्ता
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड डायपर बैंडेज मास्क ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल चार्जर बैटरी बल्ब रिमोट तार इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
0: बहनों, कहते हैं कि घर की सुंदरता जो है पेड़ पौधों से होत है और आज भी बहुत से घरों में अपन देखे जाएं, अपने गांव देहातन में देखते हैं कि बड़े से आंगन में कई प्रकार के पेड़ भी होते हैं जिनकी छांव में अपन झूला भी डालते हैं, बैठत हैं, सुस्तात हैं और जब अपन बैठते हैं तो कैसो सुकून मिलते हैं, बाकी तो बातें ही अलग होते हैं। और आज भी हरे भरे पेड़ जो है सभी को मोह लेते हैं और अपन सबकी जिम्मेदारी है कि अपन इनको और भी बेहतर बनाए। और जाए समय अगर कही जाए तो पेड़ पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। और तो और, बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने घर में छोटी सी गृह वाटिका लगाई है जहाँ वे अपनी दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं उनकी भी पूर्ति करती हैं। साथ में जब वे अपनी गृह वाटिका में नन्हे नन्हे फूल फल सब्जियां उगती देखा थे तो एक अपने आप में सुकून सोई मिलत है। उस वाटिका में बैठ के अपन ताजे फल सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी रसोई की ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन बहनों, कई बार का होता है कि गृह वाटिका में समय समय पे मौसम को देखत भए कछु बातन को अपन को ध्यान में रखने आते हैं और बहुत सी बहनों के मन में जय भी प्रयास होते हैं कि वे अगर गृह वाटिका लगाएं तो कैसे लगाएं, तो यही विषय को ध्यान में रखकर भाई आज अपन सुन रहे हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है गृह वाटिका कैसे तैयार करें। जानकारी दे रही है डॉक्टर शोभना गुप्ता और बातचीत करी है आरती शुक्ला ने। तो आओ बहनों सुनते हैं।
3: बहनों, हम सभी की हमेशा यही चाह रहती है कि घर चाहे बड़ा हो या छोटा, हमेशा साफ स्वच्छ रहे और अच्छा भी दिखे। और इसके लिए देखो, हम सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करते हैं। तो बहनों, अन्य बातों के अलावा हमारे घर के बाहर अगर हरियाली हो तो फिर मन को तो और अच्छी लगती ही है, साथ ही हमारे लिए महत्व भी बहुत रखती है। और हरियाली ऐसी कि जिसमें हमें ताज़े फूल फल सब्जियां भी मिले, तो फिर कहना ही क्या। तो हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं किचन गार्डन की या गृह वाटिका की, तो चलिए इस विषय पे हम जानकारी लेते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर शोभना गुप्ता। हम उनसे बात करेंगे कि किचन गार्डन कैसे तैयार करें, ये आज हमारी बातचीत का विषय है। सबसे पहले हम हमारी बहनों के लिए, हम सभी के लिए जानना चाहेंगे कि जो किचन गार्डन है या जिसे हम गृह वाटिका कहते हैं, ये क्या है।
4: घर के चारों ओर सुलभ स्थान में बनाई गई बगिया ही किचन गार्डन या गृह वाटिका कहलाती है। इसमें घर के चारों ओर की जमीन, बरामदे, छज्जे और यदि आवश्यकता हो और जगह कम हो हमारे पास, तो हम छत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उपलब्ध स्थान का उपयोग फूल, शोभाकारी पौधे, लॉन, सब्जियां, फल वृक्ष, बाड़ इत्यादि लगाने में किया जा सकता है।
3: जैसे आपने बताया कि जो गृह वाटिका के बारे में जैसे बताया, तो जैसे गमले हैं है ना, तो उसको भी हम ये गृह वाटिका में उपयोग में ला सकते हैं।
4: देखिए, रुचि, आवश्यकता और स्थान की उपलब्धता के अनुसार एक या अधिक हम जो भी पौधे या फल या सब्जियां जो लगाना चाह रहे हैं, वो गृह वाटिका में हम लगा सकते हैं। गृह वाटिका का जो मुख्य उद्देश्य है वो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिसमें ताजे फल मिल जाएं और सब्जियां मिल जाएं, हमें फूल मिल जाएं। इस आधुनिक युग के अंदर इन आवश्यकताओं के साथ साथ हम पूरे अपने जो घर को सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना, शांत वातावरण देना, ये भी गृह वाटिका के अंदर आता है। और यदि इसके अंदर हम अपने घर के अंदर कुछ गमले, जो छायादार गमले हैं, फूलों वाले गमले हैं, वो लगाते हैं, तो उसको भी हम आज के युग में गृह वाटिका का ही नाम।
3: अच्छा, गृह वाटिका जब हम बनाते तो उसको बनाने के लिए, जैसे जो हमारी बहनें रुचि रखते हैं गृह वाटिका के लिए, तो उसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
4: गृह वाटिका के जब हम स्थान का चयन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास में कितना स्थान अपने घर के चारों तरफ उपलब्ध है और हम कहाँ पर वाटिका है वो लगाना चाहते हैं, जमीन पे लगाना चाहते हैं कि बरामदे में लगाना चाहते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो हमें ये देखना है कि पास के किसी बड़े मकान या पेड़ की छाया जो है पूरे दिन उस स्थान पर ना रहे,
3: जहाँ हमने गृह वाटिका लगानी
4: है। जी जी जी, तो अगर यदि पूरे दिन भर छाया रहेगी तो हम धूप या प्रकाश की कमी गृह वाटिका को लाभकारी नहीं हो पाएगी। अच्छा, और इस कारण जो हम जितना लाभ गृह वाटिका से लेना चाह रहे हैं वो हम नहीं ले पाएंगे।
3: तो जैसे भी आपने बताया कि गृह वाटिका बनाने के लिए जो स्थान का चुनाव है, घर के पिछवाड़े हम करें तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पेड़ की छाया उस स्थान पर ना पड़े।
4: बिल्कुल,
3: जैसे सिंचाई यदि हमें करनी है, उसके लिए जो हमने गृह वाटिका तैयार की है, तो उसके लिए अतिरिक्त पानी की हमें आवश्यकता पड़ती है क्या, या घर के ही पानी को
4: बहने यदि चाहे तो गृह वाटिका को तो रसोई की दृष्टि के हिसाब से उपयोगी भाग जो है वो घर के पिछवाड़े में बनाए। और ताकि क्या है कि जो घर का रसोई का कूड़ा करकट या अवशेष पदार्थ जो निकल रहे हैं वो भी एक कोने के अंदर वो एक छोटा कंपोस्ट का गड्ढा बना करके खाद भी तैयार कर सकती हैं, और उसी खाद को वो गृह वाटिका के अंदर भी प्रयोग कर सकती हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखें, जानवर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भी गृह वाटिका पिछवाड़े होनी चाहिए अपने घर के। साथ ही साथ जो रसोई का फालतू पानी है, बर्तन धोने के लिए जो पानी हमने इस्तेमाल किया, फालतू जो पानी हम बिखेर रहे हैं, उसका भी प्रयोग जो है अधिकांशतः हम पिछवाड़े की ओर ही निकालते हैं, तो उसका प्रयोग हम सुगमतापूर्वक अपनी गृह वाटिका में कर सकते हैं। उसके अलावा गृह वाटिका के लिए अलग से कोई पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसा मौसम हो उस अनुसार, जैसे अगर गर्मी ज्यादा है, थोड़ा बहुत पानी जो है वो चाहे तो बहने सिंचाई के माध्यम से दे सकती हैं। इसके अंदर अगर वो चाहे तो जैसा कि बड़े खेतों के अंदर हम स्प्रिंकलर लगाते हैं, इसी तरीके के बाजार के अंदर छोटा स्प्रिंकलर जो लॉन या गार्डन के लिए मिलता है वो लगा करके वो सुंदर भी लगता है देखने के अंदर और वो पानी की पूरी आवश्यकता पूर्ण कर देता है।
3: तो जैसे आपने बताया कि जो स्प्रिंकलर छोटा स्प्रिंकलर तो उसके मतलब जगह के हिसाब से होना चाहिए। यदि बहुत छोटी हमारी शाकवाटिका है गृहवाटिका है तो उसमें जरूरत नहीं है,
4: रसोई का पानी ही उसके लिए
3: काफी रहेगा,
4: पर्याप्त
3: पानी की आवश्यकता। और जो घर का जो अवशिष्ट पदार्थ है जैसे कूड़ा कचरा जैसे हम कहते हैं उसका सदुपयोग हम अपनी गृह वाटिका में कर सकते
4: जी,
3: हैं
4: जी, जी।
3: साथ ही गृह वाटिका लगाने में हमें कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका तो चुनाव करना जरूरी होती है, जैसे आलू है, प्याज, लौकी, तोरई, तो ये ज्यादा मतलब
4: ये ज्यादा लोकप्रिय है उपभोक्ताओं में। और जब हम गृह वाटिका अपने यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमें दो चीजों का मेन ज्यादा जो जरूरी ध्यान रखना है, एक तो जो हमारे परिवार का जो पसंद है वही सब्जियां हम अपने वाटिका में लगाएं, और दूसरी कि हमारे पास में क्या साधन है, कितना स्थान है और हम जिस जगह पे रह रहे हैं उसकी जलवायु की क्या दशा है। इन सब के साथ साथ उनको सबसे ज्यादा जो आवश्यक है देखने की कि पारिवारिक पसंद और स्वाद के अलावा जो सब्जियां वो अपने उसमें लगा रही हैं उन सब्जियों का संतुलित पोषण जो है वो भी वो हमें परिवार को दे रही हैं, क्योंकि केवल स्वाद और पसंद के लिए पोषक के महत्व को, तो इसलिए उनको पारिवारिक पसंद और पौष्टिकता के बीच में सामंजस्य रखते हुए ही सब्जियों का चुनाव।
3: मतलब पौष्टिकता से तात्पर्य जैसे कि पालक है
4: जी, हरी सब्जियां या फिर जो मौसमी जितने भी फल हैं और आसानी से हमें बाजार में उपलब्ध होते लेकिन उसके लिए हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, बेर के पौधे हैं या आंवला है वो जो मेड़ पे भी वो लगा सकती हैं, तो उन सबका वो पूरा ध्यान दें।
3: हाँ। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए गृह वाटिका हमें लगानी है तो उसके लिए बीज या पौध जो हमें चाहिए वो हम कहाँ से लें?
4: गृह वाटिका लगा के लिए बीज जो लेने से पहले तो उनको ये देखना है कि हमारे पास में कितना स्थान है और उस पूरे स्थान के अंदर हमें चप्पे चप्पे का उसको युक्ति पूर्वक और भरपूर प्रयोग करना है, जैसे किस सब्जी को हम किस मौसम में किस क्यारी पे लगाएं कि मेड़ पे लगाएं कि गमले में लगाएं,
3: मतलब कम जगह में हमें ज्यादा चीज
4: जी जी, जी जी। और जब वो ये उन्होंने पूरी योजना बना ली तो फिर उसके बाद में वो अलग अलग फसलों के हिसाब से उनकी क्या उद्यानिकी क्रियाएं हैं वो सब की जानकारी उन्होंने जो संबंधित वैज्ञानिक है उससे प्राप्त कर ली तो फिर वो पौध के लिए बात कर सकती हैं। और उसके लिए क्योंकि अधिकांश पौधे सब्जियों के और मौसमी फूलों के उनको खेत में या क्यारी में लगाने से पहले उनकी पौध तैयार करनी पड़ती है, और क्योंकि जो सब्जी का और फूलों का जो बीज है वो बहुत छोटा होता है तो अगर हमने सीधा उसको क्यारी में डाला तो वो इतना जल्दी उग नहीं पाता है। अच्छा। तो इसके लिए हम उसको पहले पौध तैयार करते हैं और फिर उसके बाद में हम जो है उसको अपनी गृह वाटिका में लगाते हैं।
3: जैसे हम अक्सर कर क्या होता है, हमारी जो बहने हैं उन्होंने अपने घर में ही पिछवाड़े कहीं भी लौकी तोरई की उन्होंने बेल लगा
4: जी जी जी।
3: अब वो उनमें कुछ फल ऐसे वो वहीं छोड़ देती हैं सब्जियां जैसे लौकी है तोरई है और उसको वहीं सूखने देती है, सूखने के बाद उसके जो बीज है वो उन्होंने रख लिए अगली बारी में काम लाने के लिए, तो ऐसे बीज क्या वो दोबारा उपयोग में ला सकती है?
4: बिल्कुल, बहने बहुत आराम से वो बीज में ला सकती है। सबसे ज्यादा जो आवश्यक है कि कुछ सब्जियां जैसे आलू, अरबी, शकर कंद, लहसुन, अदरक, खीरा वर्गीय या बीन वर्गीय जो पौधे हैं उनको हम क्यारी में ही बो करके उगा सकते हैं, परंतु कई फूल जो है उनकी पौध तैयार करनी आवश्यक है। और सबसे ज्यादा जो हम गृह वाटिका में जो फल या सब्जी ले रहे हैं उसकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि हमने उनकी पौध कहाँ से ली है। पौध स्वस्थ होनी चाहिए, समय पर तैयार हुई भी होनी चाहिए, कमजोर, रोगग्रस्त या कीटग्रस्त नहीं होनी चाहिए। और इसलिए यदि वो खुद अपनी पौधे तैयार करती हैं तो सोने पे सुहागा ही है, किंतु यदि वो बाहरी स्रोत से पौधे तैयार कर रही हैं,
3: पौधशाला से अगर
4: ले रही हैं, तो किसी भी विश्वसनीय कोई बड़ी नर्सरी हो, शासकीय नर्सरी हो या कोई कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जिले में, तो उसकी नर्सरी से यदि वो पौधशाला से वहां से लेती हैं वो पौध, तो वो सचमुच ही उनके लिए सही रहेगी, फायदेमंद रहेगी।
3: एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे जो बहन उन्हें है शाक वाटिका के लिए उन्हें पौध की जरूरत है, पौधशाला से उन्होंने लिया, तो पौधशाला से लेके आने तक और उसको घर में मतलब अपनी शाक वाटिका में गृह वाटिका में लगाने तक ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
4: साधारणतः हम ये कहते हैं कि दिन के समय बिल्कुल जब धूप तेज हो उस समय वो पौधे ना लगाएं, शाम या सुबह के समय पौधे लगाएं और फिर उसके बाद में उनको अच्छी तरीके से पहले उसकी जमीन की तैयारी, उसमें जो भी उन्होंने जो जैविक खाद उन्होंने या गोबर की सड़ी गली खाद है वो पहले से तैयारी करके रखें, और पौधशाला से जैसे ही उन्हें पौध प्राप्त होती है तो शाम के समय वो उस पौध को लगा दें, उसकी सिंचाई कर दें, तो वो रात भर के अंदर पौध जो है वो
3: पौधशाला से जो पौध लाए तो उसकी मिट्टी नहीं हटानी है हमें,
4: मिट्टी उस क्योंकि उसके साथ में आती है तो वो जड़ें उसके साथ में मजबूत हुई भी होती है, तो उन मिट्टी के साथ में ही गड्ढा करते हुए अपन पौधा लगा सकते हैं।
3: अच्छा, एक और बात जानना चाहेंगे कि हर मौसम के हिसाब से जैसे मान लीजिए बरसात का मौसम है या सर्दी या गर्मी, तो उस मौसम की सब्जियां भी हमको उसी तरह से बोनी चाहिए?
4: बिल्कुल बिल्कुल, हर मौसम के हिसाब से अलग अलग तरीके की सब्जियां अपने गृह वाटिका के अंदर लगाते हैं और उसी प्रकार से हम उनका चुनाव करते हैं। जैसे वर्षा का जोर कुछ कम हो गया है और अब जो सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों की सब्जियां जो लगाने का काम इस माह के अंदर सबसे ज्यादा आवश्यक है, उसके लिए क्यारियां तैयार कर लें, उनकी सीधी बुआई करके मूली गाजर शलगम पालक लहसुन सेम आदि डाल सकते हैं, प्याज का बीज क्यारियों में डालें ताकि वो पौध बन जाए, पत्ता गोभी फूल गोभी टमाटर बैंगन आदि की पौध जो उन्होंने पहले तैयार कर लिए उसको क्यारियों में रोप दें, साथ में जो सब्जियां के पौधे अभी उनके लगे हुए हैं और उनमें से खरपतवार निकाल दें, उर्वरक दे करके सिंचाई कर लें, और खड़ी अगर जो फसल है तो उसके अंदर कीट व्याधियों का नियंत्रण करें। सितंबर माह के अंत तक आलू की अगर अगेती फसल वो लेना चाहती हैं तो उसका बीज वो बो सकती हैं, और इसके लिए छोटे आकार का साबुत आलू ही बोना ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि उन पर रोग आदि का आक्रमण बहुत कम होता है।
3: और जैसे जनवरी फरवरी का महीना है तो उसमें हमारी बहनें सब्जियों का
4: चुनाव, जनवरी फरवरी के महीने के अंदर बहनें जो हैं वो गर्मी की सब्जियों की अगेती जो फसल लेने के लिए जैसे बैंगन मिर्च और टमाटर को तैयार कर सकती हैं, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बोनी कर सकती हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बोनी कर सकती हैं।
3: की सब्जियों का किस तरह से चुनाव करें और कब कौन सी सब्जी बोएं उसके लिए उनको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए?
4: जी जी,
3: और हम आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते कि आप हमारी बहनों को और इसके अलावा और क्या

0: जितनी भी समस्याएं हैं उनका
1: हाँ
0: समाधान
1: पा
0: करवा
1: सकती हैं।
0: सकते।
1: तो डॉक्टर शोभना गुप्ता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हम सभी बहनों को किचन गार्डन कैसे तैयार करें इस विषय पे बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सो बहनों, अबे अपन सुन रहे थे भेंट वार्ता, जाको विषय हतो गृह वाटिका कैसे तैयार करें, और जानकारी दे रही थी डॉक्टर शोभना गुप्ता। तो हमारी बहनें को बहुत ही अच्छी जानकारी मिल गई हुई है कि भी अपनी जो गृह वाटिका है, इस समय अपन को की प्रकार से बाय को ध्यान रखना है और कौन कौन सी जो है सब्जियां या फल वे लगा सकती हैं। अब बहनों देखो, जब अपन गृह वाटिका तैयार करते हैं तो जैसे कि अपन को भेंट वार्ता के माध्यम से डॉक्टर दीदी ने भी बताओ कि अपन को अपनी जगह और आवश्यकता के और पसंद के हिसाब से ही सब्जियां लगाओ चाहिए, और ऐसी जगह सब्जी लगाओ चाहिए जहाँ पे धूप अच्छी तरीके से मिले अपने पौधों को, तभी जो है वे पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पे जो अपनी बहनों के मन में एक इच्छा रहता है कि हमारी खुद की जो है घर में एक गृह वाटिका हो, तो उन्हें सही जानकारी मिलके वे इको लाभ जरूर लें। तो बहनों देखो, अब अपन देख रहे हैं कि जो बारिश के मौसम के बाद धीरे धीरे जो है अपन आगे तीज त्यौहार और कई प्रकार के जो है त्यौहार अपने आते हैं। बाय पे अपन देखते हैं कि अपनी बहनें क्या करती हैं कि विभिन्न प्रकार के उपवास जो है उपवास भी रखती हैं, और घर में भी अपन देखो जाओ थे कि आज के समय में अगर अपन चाहते हैं कि स्वस्थ और निरोग रहें तो पौष्टिक आहार लें, और पौष्टिक आहार के लाने जरूरी होते हैं कि हम इस प्रकार से भोजन को तैयार करें जिसमें पौष्टिकता भी बनी रहे और खाने में भी वे स्वादिष्ट हों। तो बहनों आज हम आपको बतावे वाले हैं खजूर और मखाने की खीर। अब देखो, खजूर अपने आप में ऊर्जा को स्रोत होते हैं, मखाने में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होते हैं, और जब ये दूध से मिल जाते हैं तो एक संपूर्ण आहार की तरह ये तैयार हो जाते हैं। अगर अपन कम समय है और जल्दी कोनो पौष्टिक आहार वाली चीज़ बना सकते हैं जो कि अपन व्रत उपवास में भी ले सकें, तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। इके लाने का करने हैं आपको, तना से सूखी कढ़ाई में मखाने भून लेने हैं, जो खजूर हैं उनके बीज निकाल के हल्को सो सेक के पहले दूध में गला देने हैं, फिर दूध को औठा के नाम मात्र की चीनी डालने या फिर गुड़ डाल के फिर इनको मिला के थोड़ी देर के लिए उबाल दें 5 से 10 मिनट में, और स्वाद अनुसार इलायची डालें, जिससे फिर देखो उबलने के बाद जो खीर तैयार होती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सभी को, चाहे बड़े हों चाहे मोड़ा मोड़ी हों, सबको बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरीके से अपन जो है खजूर मखाने की खीर तैयार कर सकते हैं। और अब सुनते हैं अगलो लोकगीत, स्वर है रंजना पुरोहित का।

बहनों, शुरू से ही जो अपनी नदियाँ रही हैं अपनी संस्कृति धरोहर की प्रतीक रही हैं, और कई नदियों का अपने जो है बहुत ही महत्व है। तो अपन को ध्यान रखने हैं कि जो अपनी नदियाँ हैं उनको अपन को सहेज के रखने हैं। जब भी अपन तीज त्यौहार होते हैं तो देखा थे नदियों की जो है पूजा होती है, और विभिन्न प्रकार के जो है कार्यक्रम भी जो है धार्मिक नदियों के किनारे होते हैं। तो बहनों, अपन को अपनी एक जिम्मेदारी समझने हैं कि इनको किसी भी प्रकार से प्रदूषित ना होने दें और इनको सुरक्षित रखें, क्योंकि जल जो होता है जीवन का आधार होता है। अगर हमें स्वच्छ पानी मिलेगा तभी हम जीवन को मान सकते हैं, और नदियों को इसीलिए जीवन रेखा भी कहा जाता है। बहनों, अब हो रही है चलबे की बेरा, सभी बहनों को स्वाति बहन की राम राम।

0: व्यक्तिवा और सुशासन की इसी सोच के साथ देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए इन प्रयासों का असर लोगों की जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है। हमारी आज की विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं हाल ही में यूपीआई में किए गए बदलावों की। डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए नया यूपीआई फ्रेमवर्क लागू किया गया है, जो आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों और देश के डिजिटल इकोसिस्टम को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान कर रहा है। इसी महत्वपूर्ण और सकारात्मक विषय की बारीकियों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री अमित बैनर्जी जी और वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री संजय वर्मा जी। आप दोनों ही अतिथियों का हमारे आकाशवाणी भोपाल के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
0: अमित जी, चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो ये नया यूपीआई फ्रेमवर्क है, देश के आम नागरिकों और पर्सन टू पर्सन यानी P2P लेन देन के लिए कितना बड़ा उपहार है?
1: देखिए, ये पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट इसमें जो भी चार्ज लगा रही है मामूली सा लगा रही है, P2P पे इस पे कोई चार्जेस लगेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि काफी सालों से चाहे कोई भी सरकार हो, उनका प्रयास है कि कैश ट्रांजैक्शंस मिनिमम हो जाए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस रहे जिससे कि करप्शन और रिकॉर्ड कीपिंग बिल्कुल सहूलियत से हो, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस सही ज़्यादा करने के लिए आपको डिजिटल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुदृढ़ करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। एक और चीज़ है जो बिल्कुल ही मिस हो रही है, वो ये है कि अब UPI हमारा बाकी देशों के साथ रुपी टू रुपी ट्रांजैक्शंस के लिए भी चल रहा है। तो आई थिंक 15-16 या कितने एक ऐसे देश हैं, तो उसके लिए भी आपको अब अब्रॉड के हिसाब से आपको अब अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस और वो सब हैं आपको वैसे अबाइड करने पड़ेंगे, तो आपको काफ़ी तगड़ा सुदृढ़ रखना पड़ेगा। तो इसीलिए उस चार्जेस अभी लगेंगे, जिससे कि अब देखिए अभी कुछ सालों में

0: देखना आप रुपी टू रुपी ट्रांजेक्शन दूसरे कंट्रीज के साथ कर सकते हैं तो उसमें और ज्यादा आसानी होगी।
1: अब हम बात करते हैं हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं और मोहल्ले में जो दुकान लगाते हैं, उनके लिए ये जो नया ढांचा है कितना सुरक्षात्मक और प्रोत्साहन देने वाला है। संजय जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें।
2: देखिए, जहाँ तक अपन बात कर रहे हैं छोटे रेहड़ी वाले या ठेले वाले या बिल्कुल छोटे छोटे व्यापारी है, उनके लिए इसका कोई प्रभाव, कोई इनके ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा
1: जी।
2: क्योंकि पहली बात तो ये कि 2000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन पर कोई किस तरह का कोई वो नहीं है
1: जी।
2: MDR जो है कहीं कुछ उसमें नहीं लगा। 2000 से ऊपर के बाद भी अगर छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उनकी लिमिट है, अगर 1,00,000 रुपये महीने में अगर 1,00,000 रुपये से कम ट्रांजेक्शन है तो वहाँ तक उनको कुछ भी नहीं देना है
1: जी।
2: तो मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका लिमिट काफ़ी कुछ है और वहाँ तक उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल ठीक कहा, और ये बात कही भी जा रही है कि 96% व्यापारिक लेनदेन जो है बिना किसी अतिरिक्त लागत के होंगे, जिससे छोटे व्यवसाय निसंकोच इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने रहेंगे। अमित जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे समय तक सुरक्षित, तेज और आत्मनिर्भर बनाने की जो बात हो रही है तो उसके लिए इस नए फ्रेमवर्क में क्या रणनीतिक दृष्टि अपनाई गई है?
0: देखिए, एक सरकार को या सोसाइटी को एक कॉर्पस तैयार करना है, मतलब फंड्स। तो क्या हुआ है कि अगर कोई उसको 32nd फाइनेंस रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ फाइनेंस उसको देखे तो उसने जो सुझाव दिए थे सरकार ने ज्यों के त्यों उसको रख लिया। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी कि सरकार का 2000 रुपये का खर्चा हुआ है और वो सिर्फ 11% सब्सिडी, जिसको सब्सिडी कहते हैं, वो कवर कर पाया खर्चा, बाकी 90% वो कवर ही नहीं कर पाया, अपनी जेब से सरकार को देना पड़ा। तो अब वो एक तरीके से सरकार चाहती है कि ये एक तरीके से स्वावलंबी बन जाए और आगे अपने को डिजिटल, इसके लिए जो मैंने अभी पहले ही कहा था, डिजिटल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ मजबूत बनाना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए। तो वो एक कॉर्पस एक चाहिए, उनको बनाना पड़ेगा, इसलिए ये इसमें काम पड़ेगा। अच्छा हुआ कि हम अभी से अगर कॉर्पस बनाना शुरू कर दें तो 10 साल बाद का अगर सोचें तो हमारे पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। और मेरे को लगता है कुछ सालों में ये 2000 रुपये की लिमिट बढ़ के 4000 5000 भी जाएगी, जैसे जैसे अपने ट्रांजेक्शन्स एंड जीडीपी बढ़ रही है तो अब धीरे धीरे सभी परचेजिंग कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ये कुछ सालों में 2000 का 4000 भी हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल ठीक है आपने, और जैसा कि एक बहुत ही दूरदर्शी सोच भी है ये, और इससे UPI की जो दीर्घकालिक स्थिरता है वो मजबूत होती है। अभी उपभोक्ताओं के मन में इस जो नए UPI फ्रेमवर्क लागू किए गए इसको चलकर बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं। आम उपभोक्ताओं के मन में एक स्पष्टता होना भी बहुत ज़रूरी है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस MDR का असर ग्राहक की जेब पर नहीं पड़ेगा, इस बारे में बैंकों और ऐप प्रदाताओं के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश हैं?
2: देखिए, जहाँ तक बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी कुछ भ्रम चल रहा है मन में इस सब लोगों के कि हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगी, हर चीज़ में महंगाई बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो लिमिट वाली बात है, 2000 रुपये तक कुछ नहीं होना, 2000 रुपये के बाद भी 1,00,000 रुपये की लिमिट जो है वहाँ तक भी कुछ नहीं होना, इसके बाद भी अगर लगता है तो स्पष्ट निर्देश हैं बैंक को, UPI कंट्रोलिंग जितने भी ये सभी हैं सभी को निर्देश हैं कि इसकी किसी प्रकार का बोझ उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। और ये बात उनको बैंकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस बात को वो लोग मॉनिटर करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है चार्जेस के नाम से जोड़ के या किसी तरह से कि वो एक्स्ट्रा चार्ज के नाम से ले रहे हैं, इस बात को मॉनिटर किया जाएगा कि वो एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं चार्ज किए जा रहे किसी तरीके से, प्रभाव तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है इसका।
1: जी, बैंकों और UPI ऐप प्रदाताओं को भी निर्देश दिए गए हैं, पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है और व्यापारी भी इससे ग्राहक पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं जिससे ग्राहक जो हैं पूरी तरह निश्चिंत होकर असीमित मुफ्त UPI सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं। अमित जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, रेलवे की अगर हम बात करें, बिजली की बात करें, पानी, बीमा, ईंधन और कृषि जैसे जो मूलभूत क्षेत्र हैं उसके लिए निर्धारित की गई विशेष दरों का आम जीवन और अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक प्रभाव आप देखते हैं?
0: देखिए, वो उसमें एक को लिमिट कर दिया है, जैसे उन्होंने 75,000 के ऊपर का वो इन सब चीज़ों के लिए 300 रुपये का, ठीक है। तो इन सब में क्या है कि अब ये मूलभूत सुविधाएं हैं, चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें कैप लगाना सही था। और सरकार चाहती है कि इस पर भी पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स अब अधिकतर डिजिटल हों, जिससे कि कोई बीच में अब जैसे कृषि में बिचौलिए और इनका खेल वेल समाप्त होने लगे, तो इसीलिए अब इन्होंने जो मूलभूत सेवाएं हैं इस पर एक अलग से विचार करके, और जो जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सब 32nd फाइनेंस कमेटी की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसकी रिपोर्ट का बिल्कुल उन्होंने गवर्नमेंट ने ज्यों का त्यों अप्रूव करके इसको आगे बढ़ाया। स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती हैं पार्लियामेंट की, वो बड़ी सुलझी हुई कमिटीज़ होती हैं, उनमें जो रिपोर्ट्स आती हैं, मैंने और भी मेरा जो तजुर्बा है वो बड़ी सुलझी हुई रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसको एज सच इन्होंने कर दिया है। और अपने को भाई सरकार को कॉर्पस इकट्ठा करके एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, अब आगे की रणनीति जो तैयार करनी है उसके लिए पैसा चाहिए, तो एक ठीक है, इन्होंने एक बहुत एक बेयर मिनिमम चार्ज लगा के इन्होंने कर दिया ये।
2: इसमें भी एक चीज मैं बीच में जोड़ना चाह रहा हूँ कि रेलवे या इनको दिया 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन वो लोग चार्ज करेंगे, मतलब वहाँ ये लिमिट वाली बात परसेंट वाली बात नहीं रहेगी।
1: जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो रेलवे हो गया, दूरसंचार हो गया, ईंधन
0: और बाकी सारे जो चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस या वो सब थे, वो बैन कर दिए हैं,
2: वो सब अब बैन कर दिए हैं।
0: तो अब वो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ जाएगी, अब जो है वो चार्ज है आपको दिखेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा वो 10 रुपये और 20 रुपये वो सब चार्जेस अब बैन कर दिए हैं।
1: संजय जी अगला सवाल मेरा आपसे है, हम देश के जो हमारे खुदरा निवेशक हैं उनकी बढ़ती भागीदारी को देखते हुए पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट के लेन देन में क्या विशेष रियायत इस नए फ्रेमवर्क में दी गई है?
2: देखिए जैसा कि मालूम है कि 0.4% लगाया है
1: जी,
2: उसकी लिमिट भी 300 रुपये रखी है
1: जी।
2: इसी तरीके से जो कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन जो हैं जितने भी, इन सब का रेट 0.02% है
1: जी,
2: मतलब अगर कम अपन उसको कैलकुलेट कर देखें तो काफ़ी कम है
1: जी।
2: तो एक तो सबसे बड़ी रियायत ये दी गई, इतना कम परसेंट रखा है और लिमिट इसमें भी 300 की है
1: जी,
2: कितना ही बड़ा ट्रांजेक्शन है 300 से ज़्यादा नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, कहीं ना कहीं इससे देश के युवा और आम नागरिक औपचारिक वित्तीय बाजारों को आसानी से जोड़कर रख सकेंगे और देश की जो संपदा जो कॉर्पस निर्माण की हम बात कर रहे हैं उसमें भागीदार बनेंगे। अमित जी छोटे व्यापारियों की भी हम बात करते हैं, छोटे व्यापारियों के कल्याण और उन्हें डिजिटल प्रणाली में और अधिक सक्षम बनाने के लिए जो डेडिकेटेड फंड स्थापित किया जा रहा है उसकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है?
0: उसमें से ये है कि शायद 5% सरकार वापस री इन्वेस्ट करेगी इसमें
1: जी,
0: वो दे देगी वापस, तो एक तो ये है। और डेडिकेटेड फंड चाहिए, देखिए अब क्या है सरकार, मतलब जब से वो लिबरलाइजेशन हुआ है हर चीज़ को कॉस्ट बेसिस कॉस्ट रिकवरी पे कर रही है, तो एक डेडिकेटेड फंड कॉर्पस तैयार हो जाएगा, उस पर भी मैंने कहा कि 5% वापस री इन्वेस्ट करेगी, तो दिस विल बी क्वाइट सब्सटेंशियली, काफ़ी बड़ा होगा। और ये छोटे व्यापारियों को कई बार क्या होता है कि पेमेंट अटक जाता है, तो अब वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जब सही हो जाएगा तो पेमेंट बराबर आते रहेंगे, क्योंकि उनके क्या है फिर सारा वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाता है अगर पेमेंट कहीं अटक जाता है तो।
1: जी बिल्कुल ठीक है आपने, कहीं ना कहीं इससे जो ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय काम कर रहे हैं उसमें और अधिक मजबूती ज़रूर आएगी। संजय जी अगला सवाल मेरा आपसे है, बैंक खातों पर सुरक्षा के उद्देश्य से तय की गई जो दैनिक सीमाएं लगाई गई हैं, डेली ट्रांजेक्शन्स लिमिट्स हैं और जो मुफ्त लेन देन है, उसके बीच अंतर क्या है, क्योंकि आम आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है।
2: देखिए अगर बात करें तो ये लोगों को कन्फ्यूजन था कि ऐसा नहीं कहीं इसमें लिमिट आ जाए, कहीं कोई जो लिमिट बैंक की, अगर मान विड्रॉल की लिमिट है, डिपॉजिट करने की लिमिट है या आपको किसी तरह की लिमिट है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है
1: जी,
2: वो बैंक ही वहीं है। हाँ एक चीज़ जरूर, जिस तरह की बात आ गई आजकल, इस एक चीज़ जरूर हो गई है, बैंक ने भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी कि अगर आपके अकाउंट में कोई जैसे कहते हैं एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन
1: जी,
2: आपका अकाउंट मान लीजिए कोई भी 10,000 रुपये वाला है और उसमें अगर एक्स्ट्रा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए वो लोग उसकी इंक्वायरी करते हैं स्पेशली फ़ोन करके, या वो नहीं तो उसको बैन भी कर देते, उसको ब्लॉक भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हो रही है इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए, कहीं कोई लिमिट में कोई फर्क नहीं, जो लिमिट थी वहीं के वहीं है।
1: नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग की बात हो रही है वो जरूरी भी है, क्योंकि दौर में
2: जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड चल रहा है या तो वो उसके लिए बहुत जरूरी था वो।
1: अमित जी वित्त संबंधी जो संसदीय स्थायी समिति की 32वीं रिपोर्ट में सिफारिशें दी गई हैं, उनको ये फ्रेमवर्क किस प्रकार से साकार करता हुआ नजर आता है?
0: पूरा इन्होंने बहुत ही सुलझा हुआ रिपोर्ट दिया है और सरकार ने उसको, सरकार क्या मतलब पार्लियामेंट ने उसको एज सच अडॉप्ट कर लिया, जो 32nd फाइनेंस कमेटी की जो रिपोर्ट थी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, वो इसको पूरा इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने बहुत सोच समझ के इस चीज़ पे किया, क्योंकि सब तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियन और पुराने मिनिस्टर्स रह चुके हैं तो उनको पता है चीज़ें क्या है, वो पहले भी मिनिस्टर्स रह चुके हैं तो उनको पता है ये क्या है, तो उन्होंने ये सोच समझ के इन्होंने इस पर काम किया है। और देखिए ये अब ये होना ही था, कोई चीज़ परमानेंटली फ्री रह नहीं सकती, ये अपने को मानना पड़ेगा, परमानेंटली फ्री देयर नो सच थिंग एज फ्री लंच, एक कहावत है अंग्रेजी में, तो परमानेंटली फ्री रह नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ पैसा लगेगा और वो उसमें रिकमेंड करके कहा, और एज सच जो है और समय के साथ ये धीरे धीरे चेंज होगा,
2: तैयार रहना चाहिए
1: जी,
0: हमें तैयार रहना चाहिए, मेंटली अपने को तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात मैंने कहा, देखिए GDP बढ़ रही है, कभी किसी साल 7%, कभी 8%, ECP अपनी चलती रहे हैं, तो ऐसा चलता रहेगा तो ये लिमिट आज 2,000 रुपये है, कल को हो सकता है ये 3,000, फिर 4,000, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका GDP बढ़ेगा 70% उसका कंजम्पशन है, तो जीडीपी का कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो उस रफ्तार से वो बढ़ेगा, खपत भी उतनी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, तो ये लिमिट भी सरकार को धीरे धीरे ये लिमिट बढ़ा देगी। मैं आशा करता हूँ कि कुछ सालों में आप देखेंगे, आप अपन तीनों लोग और बाकी जो श्रोता हैं वो भी देखेंगे कि ये लिमिट बढ़ के 5,000 तक पहुँच जाएगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा, जो देश का UPI सिस्टम है, कई दूसरे देश भी उसकी तारीफ कर चुके हैं। डिजिटल इंडिया इस अभियान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने और भारत की आर्थिक समृद्धि में यह नया UPI ढांचा किस प्रकार एक मील का पत्थर साबित होगा, संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका जवाब।
2: इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर जब इससे पहले जब UPI नहीं था
1: जी,
2: तो कई जगह जहां पेमेंट करना है आपके पास कैश नहीं है, चेंज नहीं है, छुट्टा या कैश गिर गया, लूट लिया, ये सब चीज़ें होती थी। जब से UPI चालू हुआ है तो ये पहली बात तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई, और ये खत्म होने के बाद कई जगह ऐसा होता था, हमने देखा जहाँ 99 रुपीस का कोई सामान है, हमको पेमेंट 100 हम करके आते थे, 199 जनरली प्राइस होते थे, वो इस तरह से होते थे कि 99 पे जाके एंड होते थे, वो 1099 हो, हम उसको 1100 दे के आते थे और ना कोई, तो इस तरीके से छोटे छोटे जो पेमेंट्स होते थे हमको नुकसान करते थे। लेकिन जब ये डिजिटल इंडिया चालू, जब से ये UPI पेमेंट या इस तरह के पेमेंट का सिस्टम चालू हुआ है, जब से पहली बात तो ना तो हमको एक्स्ट्रा एक रुपया भी एक्स्ट्रा देना है, ना ही कोई हमसे उसको वो एक्स्ट्रा चेंज ना होने के नाम पे या किस तरह से नहीं ले सकता, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया का ये जो सिस्टम, इसमें सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ता का ये हुआ है कि जितना पेमेंट है उतना ही रुपये पूरा देना, एक रुपया भी हमको ऊपर नहीं देना।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा संजय जी आपने, और इसमें एक और बात मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि जो पैसों की सुरक्षा है, आमतौर पर जो कैश को ले जाने में जो उसकी सुरक्षा का जोखिम बना रहता था, जेब कट जाए, पैसा गिर जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ और अब तेज़ी से देश डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है।
2: कि गवर्नमेंट को भी जो कैश कलेक्शन का जो खर्चा होता था, कैश कलेक्शन का, कैश को कैरी करने का, वो खर्चा भी इनका बहुत बिल्कुल ही लगभग खत्म हो रहा है।
1: निश्चित रूप से आज की इस सार्थक चर्चा से ये स्पष्ट है कि नया UPI फ्रेमवर्क आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए देश के डिजिटल नेटवर्क को और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय व सकारात्मक पहल है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और श्रोताओं को इतनी उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारी साझा करने के लिए श्री अमित बनर्जी जी और चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री संजय वर्मा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी भोपाल से आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आपने सुना क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की, योगदान है आकाशवाणी छिंदवाड़ा का।

0: नगर विकास की।
1: सभी श्रोता मित्रों को रजनीश शर्मा का नमस्कार। स्वागत है आप सभी श्रोता दोस्तों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र या समाज के विकास की राह सिर्फ सड़कों, इमारतों और तकनीक से होकर ही नहीं गुजरती, बल्कि एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ भविष्य भी विकास की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। आज के इस कार्यक्रम डगर विकास की में हम एक ऐसी ही अनुवांशिक रक्त संबंधी बीमारी सिकल सेल एनीमिया पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके प्रति जागरूकता, समय पर जांच और उचित स्वास्थ्य देखभाल बेहद महत्वपूर्ण है। सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित व्यक्ति और उसके परिवार के लिए बीमारी को समझना, समय पर इसकी पहचान करना और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार नियमित देखभाल बहुत जरूरी है। इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के माध्यम से जागरूकता, स्क्रीनिंग, उपचार और परामर्श को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया की पहचान, इसके लक्षणों, इसके उपचार और इसके उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर हमें जानकारी दी सहायक नोडल अधिकारी सिकल सेल उन्मूलन डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव ने।
2: सिकल सेल एनीमिया जो रहता है, हमारे एनीमिया शब्द को अगर हम समझें तो खून की कमी होना, और सिकल सेल का मतलब होता है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन मतलब पूरे शरीर में पहुंचाना होता है, तो ये जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं ये गोल या अंडाकार या गोल शेप की हो सकती हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये गोल ना होकर हसिया या सिकल शेप हो जाती है, तो जिसके कारण ये बहुत कठोर हो जाती हैं और उसके कारण वो जब हमारे कोशिकाएं हैं और उसमें जब आना जाना करती हैं तो उसमें कई बार जो कोशिकाएं हैं या फिर जो हमारी नस हैं उसमें फंस जाती हैं और रक्त के प्रभाव को रोक देती हैं। प्रायः एनीमिया जो हम समझते हैं जो आमजन में अक्सर देखा जाता है भारतवर्ष में, तो जो कि आयरन की कमी से होता है, जबकि इसमें आयरन की कमी नहीं है, जो कोशिकाएं ऑक्सीजन को लाना ले जाना कर रही हैं उनके इस बनावट है उसमें डिफेक्ट होने के कारण हो जाता है। ये अनुवांशिक है जिसे कुछ जेनेटिक बोलते हैं, तो यह किसी भी तरीके खान पान से नहीं होता है बल्कि बच्चों में माता पिता के उपलब्ध जीन के अनुसार ये उसमें वंशानुगत बीमारी होती है। ये दो तरीके से होता है ये बीमारी, एक होता है सिकल सेल ट्रेट जिसको कि हम सिकल सेल वाहक भी बोलेंगे, और दूसरा होता है सिकल सेल डिसीज। जो लोग सिकल सेल रोग या सिकल सेल पीड़ित या सिकल सेल डिसीज जिसको भी हम कॉमनली बोला जाता है, दोनों ही जीन जो रहते हैं वो दोनों ही अगर प्रभावित हो जाएं जन्म से ही ये बीमारी होने लगती है, जबकि जिन लोगों को सिकल सेल ट्रेट होता है कई बार बहुत उम्र होने के बाद भी ये पता चल पाता है, कुछ लोगों में शायद 14-15 साल मालूम हो या 20-22 में या अक्सर 30-40 की उम्र तक भी मालूम हो पाता है कि यह बीमारी उनको हो रही है। जिन लोगों को बच्चों को पहले जन्म से के बाद से होने लगता है जिसको कि हम सिकल सेल डिसीज कहेंगे, तो जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द या सीने में दर्द, खून की कमी लगातार होते रहना, सांस फूलना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, बच्चों में ग्रोथ जिसको बोलते हैं कि उनकी हाइट बढ़ना, वो चीज बार बार बीमार होने के कारण नहीं हो पाती है, पीलिया के लक्षण आने लगते हैं, तो इस तरह के लक्षण बच्चों में प्रायः देखे जाते हैं जो कि अक्सर जन्म के बाद से ही 1 साल से ही दिखाई देने लगते। इसमें जांच जो होती है सामान्य खून की जांच होता है, इससे यह पता नहीं चल पाता है कि यह इस व्यक्ति को सिकल सेल की बीमारी है। इसके लिए दो तरह से होते हैं, जिसको कि हमारे सॉल्युबिलिटी टेस्ट या रैपिड स्क्रीनिंग बोला जाता है, तो इससे मालूम चल जाता है कि सिकल सेल की बीमारी तो नहीं है लेकिन ये किस तरह का है, वाहक है कि रोगी है, ये हमारे विशेष पुष्टि जांच जिसको बोलते हैं HPLC, इसके माध्यम से 100% ये क्लियर हो जाता है। मध्य प्रदेश में यह एक राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यह सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य शिविरों में इस तरह की जो जांचें होती हैं यह मुफ्त रहती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि छिंदवाड़ा एक जनजातीय बहुल्य क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2023 से सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम चालू किया गया हुआ था, तो इसको पहले ही फेज में छिंदवाड़ा को भी इसमें शामिल किया गया हुआ था, इसलिए सबसे प्रभावी तरीका जो है जागरूकता और जेनेटिक काउंसलिंग है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड दिया जा रहा है, यदि लड़की और लड़का दोनों में ही सिकल सेल डिसीज वाले लक्षण है तो इस तरह की शादियों को हम लोग डिस्करेज करते हैं या मना करते हैं कि इस तरह की शादी होने पे जो बच्चे हैं उनको होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, इस तरह से हमें काउंसलिंग की जाती है। ये काउंसलिंग का जो कार्य है जो ग्रामीण स्तर पे पदस्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ANM और आशा के द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ जन जागरूकता के अलग अलग अलग जो कार्यक्रम होते रहते हैं, स्वास्थ्य शिविर होते हैं, उनमें भी इस तरीके का किया जा सकता है कि यदि ये हमारे पास कार्ड है तो क्या हमें शादी कराना उचित रहेगा। तो ये बिल्कुल आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या ANM आशा के माध्यम से बिल्कुल पता लगा सकते हैं। इसमें जो छिंदवाड़ा में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों की जाँच हो चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश जो है विगत वर्ष जो सिकल सेल कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम हुआ था तो उसमें छिंदवाड़ा जिले को प्रथम पुरस्कार भी मिला हुआ था कि जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में हमने कार्य किया हुआ है गर्भावस्था में जांच के लिए और सबसे अधिक लोगों तक कार्ड पहुंचाने वाला कार्यक्रम रहा हो, चाहे उन लोगों की काउंसलिंग करने वाला कार्ड है। तो इसमें मध्य प्रदेश को काफी प्रमुख 3 शहरों में इसका छिंदवाड़ा का नाम माना गया हुआ कि 2 स्थितियां सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल कैरियर। जिन लोगों को सिकल सेल ट्रेट रहता है या वाहक रहते हैं उनके लिए बहुत आसान रहता है, सिर्फ बहुत ही छोटी एक फॉलिक एसिड की गोली रहती है, एक गोली प्रतिदिन खाना रहता है तो उससे व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सकता है। जिन लोगों को डिसीज वाली स्थिति है उन्हें 2 अलग टैबलेट मतलब फॉलिक एसिड के साथ में एक हाइड्रोक्सी यूरिया की भी टैबलेट दी जाती है। उन्हें अक्सर साल में 1 या 2 बार आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त चढ़ाने की भी जरूरत हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसे लोगों के लिए निमोनिया के प्रिवेंशन के लिए भी 2 अलग अलग वैक्सीन जो कि समयांतर लगाए जाते हैं उसकी भी व्यवस्था लगातार की जाती है।

0: जा रही है। तो इसमें घबराने वाली चीज नहीं है, बट ये है कि अगर हम इसके सतत अपना टेस्ट कराते रहें तो इसके माध्यम से हम, चाहे वो कैरियर हो चाहे डिसीज हो, वो एक सामान्य जीवन शैली है, वो जी सकता है, डॉक्टरों से विचार विमर्श भी ले सकते हैं।
1: सिकल सेल के प्रबंधन में मरीज और परिवार की जागरूकता जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है सही स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच। इस दिशा में स्क्रीनिंग, परामर्श और समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के संदर्भ में आयुष चिकित्सा पद्धतियां किस तरह अपनी भूमिका निभा सकती हैं। इस पर हमें जानकारी दे रही हैं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर प्रमिला यावकर।
2: राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य है कि जो आयुष विंग होम्योपैथी औषधालय चिकित्सालय है, यहाँ पर बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 2023 में एक आह्वान किया गया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकल सेल उन्मूलन है, उसके अंतर्गत सिकल सेल रोग में भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में लेकर उसे समाप्त करना है। और उनका दूसरा उद्देश्य था कि जेनेटिक जो ट्रांसमिशन को समाप्त करना है। 2047 में जब हमारा जो अमृतकाल मनाया जाएगा, तब तक हमारा भारत देश सिकल सेल मुक्त हो सके। अभी अपने यहाँ जिले में HPLC जो टेस्ट हो रहे हैं जिला चिकित्सालय में, उसके माध्यम से हमें पेशेंट जो है पॉजिटिव केसेस में आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को एड ऑन थेरेपी के रूप में आयुष विभाग के द्वारा आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो कि आयुष विभाग से आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी, यूनानी, इन तीनों मेडिसिन के थ्रू इनको उपचार किया जा रहा है। जैसे कि अभी चिकित्सालय में अपने यहाँ पे IPD है, IPD में पेशेंट एडमिट है, तो ऐसे पेशेंट को हमारी OPD भी वहाँ पर है, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं कि IPD में एक राउंड लेकर ऐसे पेशेंटों को चिन्हांकित कर लेते हैं और उन लोगों को मेडिसिन देना उन्हीं के पास जाकर या फिर डोर टू डोर जाके मेडिसिन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय में आयुष विंग है जिसमें सिकल सेल यूनिट का निर्माण किया गया है। सभी जो ब्लॉक है वहाँ का डाटा संधारित कर रहे हैं, सभी ब्लॉक में जो जो पेशेंट है उन लोगों का फॉलोअप लिया जा रहा है, उन लोगों को डोर टू डोर मेडिसिन भी दी जा रही है और ब्लॉक के नोडल जो है अपने अंडर में जितने सिकल सेल पेशेंट है उन लोगों को मेडिसिन डोर टू डोर जाकर दे रहे हैं। इसके पहले जो पेशेंट आते थे उनको काफी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि उनको लॉस ऑफ हेपेटाइटिस की कंप्लेंट मिलती थी, पेन होता था, बार बार जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था उसमें हमें काफी आश्चर्यजनक परिवर्तन मिले हैं। पेशेंट इस वजह से आयुर्वेदिक या एड ऑन थेरेपी लेने के लिए काफी उत्साहित दिख रहा है। कई पेशेंट ऐसे है कि जिनको क्राइसिस होता था तो वो उसमें कमी आई है, जो एड ऑन थेरेपी के साथ में आयुर्वेदिक या होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा है तो उनकी ये प्रॉब्लम सबसाइड हो रही है। दूसरा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब उनको 15-15 दिनों में चढ़ता था या फिर एक महीने में चढ़ा जाता था तो उसमें काफी अच्छे बेनिफिट मिले हैं। आयुष विभाग की प्रतिनिधि होने के रूप में एक ही संदेश है कि आप एड ऑन थेरेपी के रूप में जो अभी प्रोग्राम चला जा रहा है इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी एड ऑन थेरेपी के रूप में लेना स्टार्ट करें।
1: सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के लक्ष्य को हम हासिल कर सकें, इसके लिए जरूरी है जागरूकता और सही समय पर उपचार। आयुष विभाग द्वारा सिकल सेल उन्मूलन 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में हमें जानकारी दी जिला नोडल सिकल सेल एड ऑन अधिकारी डॉक्टर नीरज विश्वकर्मा ने।
3: सिकल सेल उन्मूलन जैसा कि सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें जागरूकता के लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह पहली चीज तो कैंप लगा रहे हैं, दूसरा इसी मटेरियल के जरिए हम लोगों को ये पहुंचा रहे हैं। जल्दी हम इससे संबंधित एक अपना सोशल मीडिया पे भी कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, आगामी दिनों में उसकी तैयारी चल रही है कि सिकल सेल की रोकथाम कैसे की जा सकती है। पॉम्पलेट्स के जरिए, फ्लैक्स बैनर के जरिए, हम लोगों तक ये चीजें पहुंचा रहे हैं। आयुष विभाग द्वारा एक उपचार के लिए पूरी एक गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के अनुसार सभी जितने आयुष औषधालय हैं उन औषधालयों में ये औषधियां उपलब्ध हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा पे ज्यादा उन्होंने दवाइयां दी हैं और SOP के अनुसार इसमें हमारे पास च्यवनप्राश अवलेह उपलब्ध है, द्राक्षावलेह उपलब्ध है, फिर जोड़ों में दर्द के लिए रासना सप्तक कषाय और ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और ये सभी औषधियां सभी औषधालयों में उपलब्ध हैं। पिछले एक वर्षों में लगातार इन औषधियों को मरीजों तक पहुंचा रहे हैं, प्लस साथ में कुछ जो रसायन औषधियां दे रहे हैं तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रिक्वेंसी भी कम हो गई है। पहले पेशेंट को एक महीने में ब्लड लगता था, अब 2-3 महीने में ब्लड लग रहा है। तो मैं तो रोगियों से यही कहना चाहूंगा कि जो दवाइयां चल रही हैं उसके साथ में आप आयुष की दवाइयां लें, रोग में काफी अच्छा परिणाम मिलेंगे।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 का व्यापक उद्देश्य सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अधिक से अधिक लोगों तक स्क्रीनिंग और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और प्रभावित लोगों को उचित देखभाल और परामर्श उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करना है। इस अभियान की सफलता केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन भागीदारी से भी जुड़ी है। समय पर जांच कराना और सही जानकारी प्राप्त कर चिकित्सकीय सलाह का पालन कर बीमारी से जुड़े भ्रम और गलत धारणाओं को दूर करना, ये छोटे छोटे कदम एक स्वस्थ भविष्य की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सही जानकारी ही जागरूकता की

पहली सीढ़ी है और समय पर जांच स्वस्थ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम सब मिलकर सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हों। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर था रजनीश शर्मा का, संपादन अनिल सनोडिया का था, प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की और संयोजन था अल्पना गोलेंद्र का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। योगदान था आकाशवाणी छिंदवाड़ा का। इस कार्यक्रम में विषय था राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म चांदनी से। स्वर हैं लता मंगेशकर और बाबला के। गीत लिखा है नंद बख्शी ने और संगीत है शिवहरि का।

चांदनी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अब हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में मदन पाल के लिखे गीत को नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में। फिल्म है दिल का क्या कसूर।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने

0: बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. Yeah, machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
3: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
4: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
3: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
5: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
3: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
6: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह

0: और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकोथलॉन में 7934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far, also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200 meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. he urged people

0: settle for the silver medal on a tie break, while the women drew with Georgia to bring home the bronze in the chess Olympiad that concluded today. This marks the third straight edition where India have won the trophy, having claimed it on the home turf at Chennai in 2022 during their historic double gold campaign at Budapest in 2024 and the latest in Samarkand. In men's cricket, chasing a target of 296 runs set by West Indies, hosts India with 240 for 2 in 37 overs in the first one-day international of the three-match series in Thiruvananthapuram when reports last came in. Earlier put into bat, West Indies posted 295 for the loss of 7 wickets in stipulated 50 overs. India had opted to field after winning the toss. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, south interior Karnataka and Uttarakhand tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds over northeastern parts of India. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events. And India retained the Nona Gaparina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फजाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदाद और शुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के यौम-ए-पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुदमुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खां है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर साबरमती से एलएनजी से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो माहौल के लिए साजगार तवानाई के मकसद से रेलवे में की गई एक बड़ी कामयाबी है। एशियन गेम्स में भारत ने खवातीन की लंबी छलांग और मर्दों की ऊंची छलांग, नेज मर्दों और खवातीन के स्क्वैश सिंगल्स में चांदी के तमगे हासिल किए हैं और डेकेथलॉन खवातीन की स्टेपल चीज नेज 200 मीटर के मुकाबले में कांसे के तमगे जीते हैं। और भारत ने उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंदाश्विली ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। उसने ओपन जुमरे में चांदी और खवातीन के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट फजाई हमला और 2025 में किया गया ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत कल सरहद पार सर्जिकल हमले के 10 साल पूरे होने की याद ताज़ा करेगा। भारत ने 2016 में 28 और 29 सितंबर की रात ये हमले किए थे, जिनमें उस महीने के आगाज में उड़ी में किए गए दहशतगर्दाना हमले के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को देखकर हैरान, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर लिया था। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को दहशतगर्दाना हमलों की वजह से पैदा देरीना दर्द का भारत का एक फैसला कुन जवाब करार दिया, जनाब मोदी ने कहा कि पिछली दहाई में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट फजाई हमलों से 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार एक वाजह पैगाम दिया कि दहशतगर्दाना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: जनाब मोदी ने उस वक्त को याद किया जब सिलसिलेवार बम धमाके मुल्क में अक्सर होते थे। उन्होंने 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में किए गए सिलसिलावार बम धमाकों का जिक्र किया जिनमें बहुत से लोग हलाक हो गए थे, जिसके कुछ ही हफ्ते बाद मुंबई में 26/11 के दहशतगर्दाना हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है और अपने इस तरीक़ेकार का समरा भी देख रहा है। 2027 की मर्दमशुमारी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि इस अमल का पहला मरहला तकरीबन सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 32 करोड़ से ज़्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी का यह काम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दूर दराज और बर्फ़ से ढके हुए इलाकों में भी जारी है, जहाँ बहुत से तहरीक देने वाले तजुर्बात हासिल हुए हैं।
2: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी एक कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खुदशुमारी की सहूलत से ये अमल आसान हो गया है। लोग अपने और अपने कुनबों के बारे में जानकारी अपने मोबाइल फोन के जरिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सहूलत हिंदी और दीगर 16 जबानों में मौजूद है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए लोगों को मुबारकबाद दी और आइंदा त्योहारों के दिनों में खुशी और खुशहाली की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी ने 2 अक्टूबर को बाबा कौम महात्मा गांधी के योम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में लोगों की और ज्यादा शिरकत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क भर में सफाई सुथराई के लिए किए गए इकदाम की मिसालें दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत किसी मुल्क के किसी इलाके पर कब्जा करना नहीं चाहता, अलबत्ता अगर उसे धमकी दी जाएगी तो वह अपनी सलामती और दिफाई खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगा। नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस की तरफ से मुनक़िदा दिफा से मुतअल्लिक एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत आलमी इस्तेहकाम चाहता है लेकिन अपनी दिफाई खुद मुख्तारी की कीमत पर नहीं। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि किसी ऐसे मुल्क के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती जो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को बढ़ावा दे।
3: भारत शांति चाहता है लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: कौमी इत्तेहाद को कौमी सलामती का एक अहम सतून करार देते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क की सलामती अकेले मुसल्लह फौजों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह हर शहरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो मजहब, जात पात, जबान, खित्ते और दीगर तरह की शनाख्त की बुनियाद पर की जाने वाली तफरीक से ऊपर उठें और कौमी मफाद को जाती और छोटे मफादात से ऊपर रखें। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने साबरमती में आज कई बड़े रेलवे तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा और आगाज किया। इन प्रोजेक्टों की लागत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। وزیر موصوف نے گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی موجودگی میں ملک کی پہلی ایل این جی سے چلنے والی ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین سابرمتی اسٹیشن سے روانہ کی گئی۔ اس ٹرین میں ڈیزل اور رقیق بنائی گئی قدرتی گیس کے دوہرے ایندھن کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے انجن میں تقریباً 40% روایتی ایندھن ڈیزل کی جگہ 1400 horsepower کا استعمال کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पिछले 12 साल में भारतीय रेलवेज़ की काबिल-ए-ज़िक्र तब्दीली को उजागर किया।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण। 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरी सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी किसी डॉक्टर के इंसानी हमदर्दी के जज्बे की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने मसनूई ज़हानत, एआई और डिजिटल सेहत के शोबे में तेजी से पेशरफ्त के दौर में डॉक्टरों के अंदर हमदर्दी के जज्बे की अहमियत को उजागर किया। जनाब राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवान डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो अपनी बात वाज़ह और जामे अंदाज में पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खुसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि नमो भारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
2: नमो भारत मुल्क के पहले इलाकाई तेज रफ्तार सफर का निजाम है। ये 82.15 किलोमीटर की एक नीम तेज रफ्तार राहदारी है, जिसे 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर के लिए तामीर किया गया है। इस पर 30,274 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका आगाज इस साल फरवरी में किया गया था और इसकी वजह से दिल्ली से मेरठ तक का सफर महज एक घंटे से कम वक्त में पूरा हो जाता है। हर एक ट्रेन में खवातीन के लिए एक कोच रिजर्व है। इस तेज रफ्तार रेलगाड़ी को रवाना करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नमो भारत जदीद नौइयत की एक हैरत अंगेज तेज रफ्तार ट्रेन है।
3: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
2: नमो भारत के एक मुसाफिर ने इस ट्रेन के बारे में कहा कि इससे उन मुलाजिमीन और तलाबा को फायदा होगा जो सड़क के रास्ते गाड़ियों से सफर करते थे।
4: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है।
2: इस प्रोजेक्ट से शहरी नकलो हमल के वजीर आजम के विजन को अमली जामा पहनाने की रफ्तार में तेजी आएगी और शहरियों की जिंदगी में मजीद सहूलत पैदा होगी। न्यूज डेस्क से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन मुस्तकबिल में इलाज को ज्यादा जदीद, मुअस्सर और हर मरीज की जरूरत के मुताबिक बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। नई दिल्ली में आज वर्ल्ड कांग्रेस ऑन नैनो मेडिसिन 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का महकमा नैनो मेडिसिन के शोबे में 2010 तहकीकी और तरक्याती मनसूबों के लिए 174 करोड़ रुपए की माली मुआवनत फराहम कर रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि विश्व हिंदू परिषद के साबिक सदर अशोक सिंघल ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व, मुल्क और समाजी खिदमात के लिए वक्फ कर दी। आज यानी अशोक सिंघल के यौम पैदाइश की सदसाला इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, मजहबी जज्बे, नज्म व ज़ब्त और अज़्म की अक्कास है। भारत ने अफगानिस्तान को जारी अपनी इंसानी इमदाद के तहत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जान बचाने वाली अद्वियात और तिब्बी इस्तेमाल की अशिया की एक खेप रवाना की है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत की इंसानी इमदाद मरकजी हैसियत रखती है। जापान में जारी एशियन गेम्स 2026 में आज आइची नागोया में खवातीन की लंबी छलांग के मुकाबले में एनसी सोजन एडिपेल्ली ने चांदी का तमगा जीता। एनसी 6 मीटर 53 सेंटीमीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ दूसरे मकाम पर रहीं। मर्दों की ऊंची छलांग में भारत के सर्वेश कुशारे ने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा जीता। भारतीय एथलीट हरिता भद्रा ने खवातीन की

0: 200 मीटर दौड़ के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलान मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। खवातीन के 3000 मीटर स्टेपेल चेज मुकाबले में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने कांसे का तमगा जीता। फिलहाल तमगों की फहरिस्त में भारत 12वें मकाम पर है और सोने के 4, चांदी के 16 और कांसे के 17 तमगों के साथ मजमूई तौर पर 37 तमगे जीत चुका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। भारत ने आज उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 2026 के शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंड शेल्वी ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। भारत ने ओपन जुमरे में बेहतरीन मजमूई कारकर्दगी वाले मुल्क के तौर पर अपनी मुहिम मुकम्मल की और खवातीन के मुकाबले में उसने चांदी का तमगा हासिल किया। भारत की मर्दों की टीम ने हंगरी के साथ खेलते हुए अपना मुकाबला बराबरी पर पूरा किया। मर्दों की क्रिकेट में वेस्टइंडीज की तरफ से दिए गए 296 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 41 ओवर्स में 2 विकेट पर 282 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फजाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुद मुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खाहां है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार दोस्तों, सुरों की खूबसूरत दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके दिल में भी गुनगुना रहा है कोई पसंदीदा नगमा और आप चाहते हैं उसे अपने अपनों से बांटने में, तो थाम लीजिए अपना दिल, क्योंकि आ गया है आपका मनपसंद फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। तो चलिए खोलते हैं आपकी फरमाइशों का पिटारा और सजाते हैं आज की ये संगीतमय शाम सिर्फ और सिर्फ आपके नाम। तो बताते हैं हम आपको, पहला गीत हमने लिया है आप सभी की पसंद पर फिल्म सिलसिला से। इस गीत को सुमधुर आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार साथियों ने। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है शिवहरी का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। कबाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने इसी गीत को सुना चाहा है। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव ने इसी गीत की पसंद हम तक लिख भेजी है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर और अमनदीप, साथ में है अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये बहुत प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म है प्रेम रोग, स्वर है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर के, गीत लिखा है नरेंद्र शर्मा ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया आप सभी ने। पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद मंसूरी। दामनी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण और प्रज्वल डेरे, इन्हीं के साथ हैं अनुदत्त डेरे। इसी गीत को पसंद किया है राजस्थान छाबड़ा से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू ने। आइए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं आपको ये बहुत प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव ने। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी ने। सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता भावना और प्राची नीमा ने। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म लव स्टोरी का ये बहुत प्यारा संगीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

कार्यक्रम की अगली पसंद फिल्म कभी कभी से सुमधुर आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की, शब्द रचना साहिर की और संगीत निर्देशन खयाम का। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेंड, महाराष्ट्र से अभिजीत गभाड़, श्रीमती सरिता गभाड़, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, आकार हाइट्स बहादुरपुरा, नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित, कुमारी ध्वनि और परी। इसी गीत को पसंद किया है घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजिए। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, कान्हा जी आर्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। पसंद है फिल्म उत्सव, स्वर है लता मंगेशकर और आशा भोसले की। गीत लिखा है वसंत देव ने और संगीत है लक्ष्मीकांत परिलाल का।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली और सुनाते हैं एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जतोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुँचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वॉश में कहानी टू नियर येट टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं हूं दर्पणती क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तरबतर रहा, सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एनसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एनसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजिशन में लगा तार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एनसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो 4थे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर 1 थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस सरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। 3 पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
2: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए स्पष्ट सर्वश्रेष्ठ जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में प्रवीण ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को 5-0 से मात दी। प्रवीण ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सेकतेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला RSC यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का 3रा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, प्रवीण, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे।
1: Much like this, 2 medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final where he went down to Malaysia's Ian Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal that they had won with pride, and it is just the beginning of something special in Indian squash. India have won its most medals in the shooting range in this year's Asian Games. What happened on Sunday? Vidushi Vats with the report.
3: Starting with the women's trap competition, Neeru Dhanda continues to be one of the standout performers for India. She's currently sitting at number one in the individual standings, hitting 48 out of 50 targets. There is also good news in the team competition. The Indian women's trap team has finished day two in second position, keeping themselves firmly in medal contention as the event moves towards its final stage. Ashma Ahlawat is currently placed 16th individually. Moving to the men's trap event, Kainan Chennai made a brilliant start, producing a perfect opening round by hitting all 25 targets. He followed that with 22 in the next round and is currently placed 11th individually. Shapath Bhardwaj is currently in 22nd position, while the Indian men's team finished day one in 7th place in the team standings. And now, moving from trap to pistol, the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Esha Singh is leading the Indian challenge at this stage. She finished the precision qualification with 290 points, putting her in 6th position. Rahi Sarnobat and Manu Bhakar are next for India, both finishing on 287 points. Rahi is currently placed 15th, while Manu is at 16th. Importantly, this is not the end of the 25-meter pistol competition. There is still more action to come, with the Indian trio looking to build on these scores as the event progresses.
1: दूसरी तरफ हॉकी के मैदान में भारतीय टीम का विजय रथ जारी रहा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 7-0 से जीत पा इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ग्रुप स्टेज पर अजय रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपना ग्रुप स्टेज कैंपेन अंत करे। अब सेमीफाइनल में सामने होने वाली है दक्षिण कोरिया। कुछ इसी तरह के संकेत आर्चरी रेंज से भी देखने को मिले हैं, विदुषी बताती हैं।
3: इन द मेंस रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल, धीरज, नीरज एंड यशदीप प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट चाइना, विनिंग 5-2 टू बुक देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। द वुमेन्स रिकर्व टीम ऑफ अंकिता, कुमकुम एंड कीर्ति डिफीटेड चाइनीज ताइपी 6-0 इन देयर क्वार्टर फाइनल टू मार्च इनटू द लास्ट फोर। एंड इंडियाज मिक्स्ड रिकर्व टीम ऑल्सो मेड इट थ्रू। धीरज एंड कुमकुम हैव बीन क्लिनिकल थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेज। दे बिगन विद 6-0 victory over the United Arab Emirates in the round of 16 and followed that up with another commanding 6-0 win over Vietnam in the quarterfinal, and now have a semi-final against Japan to look forward to. So in recurve, India has three teams through to the semi-finals. The men's team will face Iran, the women's team will take on China, and the mixed team will face Japan. These three recurve semi-finals are scheduled for October 2nd. But the good news from Indian archery does not stop there. The compound teams have also delivered across the board, with India reaching the semi-finals in the men's, women's and mixed team events. In the men's compound team quarter-final, Sahil, Ganesh and Kushal edged past Bhutan 235-232 in a closely fought contest. The women's compound team of Chikita, Jyoti and Pritika also booked their semi-final place, defeating Kazakhstan 233-230. And there was another impressive performance in the compound mixed team event by Chikita and Sahil, who first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16 before overcoming Kazakhstan 159-154 in the quarter-final. They are now through to the semi-finals, where they'll face Thailand. The compound men's and women's team will both face South Korea in the semi-finals. These three compound semi-finals are scheduled for September 30. All in all, it has been an absolutely fantastic day for Indian archery.
1: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
2: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोली टैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था, इसके साथ समाप्त हो गयी।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
4: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रॉ, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
3: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
2: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर नवे स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल

0: 104 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग गुक होंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 230 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
2: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 ताजिकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी, बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स येओन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वॉज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharti also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahere. So, four Indian Kurash athletes in action today and all four have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
2: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last eight. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुभाव लेकर आलोक।
3: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूत ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर रहे। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसु राउंड में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार गए। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 9वें पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
4: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
1: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। Then in the archery range, individual competitions will start. We will have our eyes on men and women from both recurve and compound archery. In athletics, Gulveer Singh and Yunus Shah will be fighting for a medal in the 1500 meter men's race. Meanwhile, Parul Chaudhary, who won a gold medal in the 5000 meter in the previous Asian Games, will be competing tomorrow. In the men's long jump final, Murali Sri Shankar and David Patturaj will be featuring. Bada Daud mein 400

0: मीटर में पुरुषों में तमिला सरन तो महिलाओं में विद्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स्ड रिले टीम भी 4x100 meter की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल ऑल्सो फीचर इन द विमेन्स डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 meter स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेन्स एंड द विमेन्स टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तकराव डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुबाब लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, विषय है संकट से समाधान तक।
3: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
4: नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णा S. वत्स, ही इज मेंबर एंड HOD NDMA, एंड श्री अमित प्रोथी, DG CDRI। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में कच्छ को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए। तो आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया।
5: करीब करीब 12,000 लोगों की जाने गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, तो यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी। और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों के भी डेथ्स हुए थे। तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि पूरे का पुनर्वास कैसे किया।

0: किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें काफी कुछ नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले, इस क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है, तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण और साथ साथ लोगों को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा।
1: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से। जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया, प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में CDRI की स्थापना को जन्म दिया, CDRI का जन्म हुआ। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर CDRI को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और CDRI का काम एक्चुअली में है क्या?
2: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है, लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाया जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाई जाए कि गिरे ना, जैसे पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे, नॉर्मल लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर, एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलिशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेज आ रहे हैं साथ साथ में उसको अवॉइड कर सकें। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं एंड वो हमसे 3 चीजें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हमको 3 सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो और अगर है तो बहुत जल्दी उससे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में, जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है उसको किस तरीके से पहले अवॉइड किया जाए,
1: तो एक्सपेंसेस
2: को, लॉसेस को। तो हमको पता है कि इवेंट्स तो आएंगे, भूकंप आएंगे, बारिश भी आती है, गर्मी भी आएगी और साइक्लोन्स भी आएंगे, लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ना गिरे, घर ना गिरे, डिसरप्शन ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए, वो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस है। एंड बिकॉज अब हम बोलते हैं कि हमारे इतने सारे देश मेंबर्स हैं तो इनसे एक दूसरे से सीखा कैसे जाए, बिकॉज हर देश में कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाए ताकि जिस देश को जरूरत है उसको बड़ी जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिज्यूम कर सकते हैं। तो वो भी कोलिशन का जो एक आइडिया है कि एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
1: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही GSDMA का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए, और वह विशेष व्यवस्था जीएसटी में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो जीएसडीएमए की स्थापना हुई। जीएसडीएमए की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया, और फिर जीएसडीएमए का एक किड, कई विंग्स थे, कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था। मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और एडीबी की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का यह प्रोग्राम था। तो काफी बड़ा प्रोग्राम था, और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो। और फिर जीएसडीएमए फिर आगे भी चला और वो अभी भी है। जीएसडीएमए के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वह भी संभव हुआ। और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वह काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन हुआ था, काफी लोग उसमें मरे थे, तो एक गुजरात में फिर साइक्लोन की तैयारी की भी बात आवश्यक थी। तो भूकंप हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया गया और राज्य में एक ना आपदा प्रबंधन के लिए एक नया संकल्प आया, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा।
1: मिस्टर प्रोति, जैसे कि डॉक्टर वत्सा ने बताया, किसी भी डिजास्टर, किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्लांट तरीका होता है, सीडीआरआई भी वहीं से आया है। तो कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसमें नॉर्मल आम आदमी इम्पैक्ट होता है, तो क्या आपका काम आम आदमी से रिलेटेड है? आप लोग कैसे जनता को ये बताते हैं, कैसे लोगों को ये बताते हैं कि उनको डिजास्टर रेजिलियंट घर बनाने चाहिए? जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि फ्लड आया और बहुत लोगों की जाने गई, पर एक घर सुरक्षित रहा और वो कई बार सुरक्षित रहा है कई ऐसी चुनौतियों में, तो आप लोगों का ऐसा क्या काम है?
2: मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, मैं काठमांडू में ही था एंड मैं थोड़ा पहाड़ों में था। जब मैं पहाड़ों में जब था, जब अर्थक्वेक आया है, मेरे को तो लगा कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, पर जब मैं नीचे आया 6 में से 5 बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, एक बिल्डिंग शायद गिरी थी। मतलब अगर आप आसपास देखो, एक चीज उस दिन बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि जो हमारे बिल्डिंग कोड है, हम जब घर बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके पीछे होता है ये पूरा कोड एंड स्टैंडर्ड एक होता है कि इस तरीके से बनाइए, आप इस रिस्क जोन में हैं, आपका इस टाइप का विंड स्पीड है, तो इनको महत्व देना है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इन सब पे अटेंशन आपको देना है। अब हमारा जो काम है वो ये भी है कि देखना है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या अभी रिस्क चेंज हो रहे हैं, साइक्लोन्स की स्पीड चेंज हो रही है, जो बारिश गिर रही है उसका भी चेंज आ रहा है कि कब बारिश गिर रही है, कितनी बारिश गिर रही है, अगर हम उसको समझ सकें और उसको फिर कोड एंड स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट कर सकें ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो आगे का जो रिस्क है उसको समझ के बने। जो पीछे का रिस्क है वो तो हमको पता है, लेकिन जो आगे का रिस्क आने वाला है एंड वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्री असेसमेंट, और प्री असेसमेंट भी नहीं, रिस्क असेसमेंट इसको कहते हैं। कि अब आपने पहाड़ों में सड़क बनानी है, पहाड़ों में हमको पता है कि लैंडस्लाइड होती हैं, लेकिन लैंडस्लाइड सब जगह नहीं होती हैं। उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि पहाड़ कहाँ पर गिर सकता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का साइंस है, तो वो सब चीज़ें अगर समझ के फिर सड़क बनाई जाए तो उसका गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हमारा एक तरीके से है कि वो रेजिलियंस है। एक और चीज़ में एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हम सब सेलफोन पे इतने डिपेंडेंट हैं, ये मेरे सामने नेपाल में जब मैं था, अपने मेरे साथ एक गाइड था पहाड़ों में जो चढ़ रहा था, जब भूकंप आया तो मेरे सेलफोन पे मैंने मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि मैं भूकंप में हूँ और मैं ठीक हूँ। जो गाइड था वो वेट करा, भूकंप खत्म हुआ उसके बाद उसने कोशिश करी भेजने की और वो गया नहीं टेक्स्ट, और 1.5 घंटे के लिए उसको ये नहीं पता था कि उसका फैमिली का क्या हाल है। एंड जब उसका टेक्स्ट गया, शुक्र है उसकी फैमिली ठीक थी, ये आदमी मेरे सामने बैठ के रोने लग गया। अब ये बताता है कि हम सब इतने डिपेंडेंट हैं आज कम्युनिकेशन पे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर आप एक दूसरे को नहीं रीच कर पाएंगे या पुलिस को नहीं कर पाएंगे।

0: इमरजेंसी को नहीं कर पाएंगे तो वो डिजास्टर जो इवेंट है वो फिर सबके लिए ज्यादा ही उस पर इम्पैक्ट पड़ता है राइट। तो कैसे इन सिस्टम्स को भी मेक श्योर करें कि ये सिस्टम्स जब इवेंट्स आते हैं उसके टाइम काम करते रहें, वो भी हमारा काम है देखना।
1: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर वत्सा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे गुजरात में पानी की भी काफी दिक्कतें हुई और जब वहां के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब उन्होंने पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए।
2: नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के लिए काफी काम किया था, नर्मदा में जो डैम बन रहा था तो वो जो डैम की ऊंचाई है वो कई स्टेजों में उसको बनाना था, तो पहले 95 मीटर पर, फिर 110 मीटर पर, फिर 137 मीटर पर था, और जैसे जैसे डैम से जो लोगों का विस्थापन हो रहा है उनका पुनर्वास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो उस समय में मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ पर इस पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा था और ये पुनर्वास का कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में हो रहा था और महाराष्ट्र में मैं पुनर्वास का कार्यक्रम देख रहा था। तो उस समय जो था कि पुनर्वास का कार्यक्रम समाप्त करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, वो सर्टिफिकेट जो है सो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित एक यंत्रणा थी उसके माध्यम से दिया जाता था, तो वो उस पर लगातार काम होते रहता था और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना, तब तक मैं वहाँ था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी और डैम का हाइट ऊपर गया, फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफ़ी उसका है ना अच्छा परिणाम हुआ। आज बहुत सारे जगह क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफी ना अच्छा परिणाम आया।
1: मिस्टर प्रोति, अगर हम CDRI की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मॉनसून के सीजन में, उसमें CDRI का क्या रोल रहता है?
0: हाँ, तो इनफैक्ट आज ही हम NDMA के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहाँ पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से, और बाढ़ का जो आपने बात किया है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा स्पेशली शहरों में, क्योंकि हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं तो उनको समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफ़ी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है, वो 8 साल से अगर आप उस देश के बारे में सोचें वो देश समुद्र के नीचे लेवल पे है, तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सॉल्यूशंस देखे जाएं हमारे शहरों के लिए। अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है। कई जगहों पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की ज़रूरत ना पड़े और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क जो फ्लड के लिए भी काम आता है। इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है, एंड जब वो बाढ़ की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर। सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पर काम थोड़ा करना शुरू किया है। जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट काफ़ी होता है, और कोई भी तरीके हैं जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है जो इस कि जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं इस पे काफ़ी अटेंशन हमने पे करना है और एनडीएमए के साथ हम इस पे थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट क्योंकि डॉक्टर वत्सा हम अभी पानी की बात कर रहे हैं और अगर मैं वापस जाऊं गुजरात पे तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसी लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशंस हैं और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं फार्म पॉन्ड्स हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशंस भी हैं। तो गुजरात का ये जो इंटरवेंशन है गुजरात का जो ये मॉडल है क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
2: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है फार्म पॉन्ड्स जो हैं है ना जिसको हम खेत में जो तालाब छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल का संवर्धन होता है उस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है ना। और ग्राउंड वाटर को कैसे हम रिचार्ज कर सकें इसकी ओर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके कारण देखिए इस साल भी हमारे यहाँ पानी काफ़ी कम हुआ बारिश काफ़ी कम हुई इस साल करीब करीब 15% का डेफिसिट था। लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं इसके कारण खेती पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। मैं नहीं कहूँगा कि खेती पर असर नहीं पड़ा है टोटल जो एरिया है खेती में उसमें 4-5% जो है मैं कह सकता हूँ कि उस पर असर पड़ा है। लेकिन जिस हिसाब से बारिश इस बार कम हुई उस हिसाब से खेती पर उतना असर नहीं पड़ा है। इसका कारण मुख्य ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जल संवर्धन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है पेड़ लगाने पर पेड़ों के लगाने से भी है ना वो उर्वरता और जमीन की जो उपजाऊ संभावना है वो सब बढ़ती है। साथ साथ अभी हमने एनडीएमए की ओर से भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम 12 राज्यों में शुरू किया है जहां हम हर राज्य में 25,000 किसानों को हम मदद कर रहे हैं जहां भी इस तरह की सूखे की स्थिति है उस सूखे की स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से हम उनके खेतों में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सकें उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा सकें। तो एक वो किसानों की ओर एक तो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और दूसरा मैं कहूँगा कि स्थानीय स्तर पर सिंचन की व्यवस्था उस पर भी काफ़ी निवेश हुआ है और इसके अच्छे परिणाम आए हैं।
1: मिस्टर प्रोति हमने पानी की बात करी हमने बाढ़ की बात करी अगर मैं CDRI का मॉडल समझूं आपका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं वो समझूं तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप कौन से नेचुरल डिजास्टर को रखते हैं और उसके बाद उससे डील करने का तरीका क्या होता है?
0: सो आई थिंक पानी का सबसे बड़ा है एक्चुअली अगर हमने डेटाबेस एक डाला है 3 साल पहले कि ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क किसका है वो फ्लड्स का ही आता है भूकंप का भी आता है उसके बाद फिर साइक्लोन आता है अब गर्मी का भी शुरू हो गया है अब
1: हीट वेव
0: लेकिन एक्सट्रीम हीट। अब हीट वेव क्या होता है कि अब हमको पता है दिल्ली में गर्मी आती है 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है आपकी AC की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे हॉस्पिटल की ज़्यादा जरूरत तो ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स तब भी सबसे आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा होते हैं लेकिन बाकी की भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है उसकी जब भूकंप आता है वो कम आते हैं लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लड्स रेगुलरली आ रहे हैं उन पर डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है लेकिन उस पर अब काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पर सोच अभी काफ़ी चल रही है। एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं ये बाहर देशों में भी इसी पे काफ़ी फोकस आ रहा है अब आपने यूरोप में भी देख लिया
1: गर्मी
0: बट फ्लड स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है। एक और चीज़ शुरू हो गई है वाइल्ड फायर अभी अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है पीछे लॉस एंजेलिस में पूरा काफ़ी शहर में भी तो ये सब चीज़ों में जनरली ज़्यादा अटेंशन हो रहा है। और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1-2 डिग्रीज वार्मर ग्लोबली में पिछला साल सबसे गर्म साल था उसके पहला साल वो सबसे गर्म साल था तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स भी चेंज आ रहा है।

0: या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, विषय था संकट से समाधान तक। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर NC जोस सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैपरिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है।

296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: At the Asian Games in Japan, India's Ansi Sojan Edda Pilli has won the silver medal in the women's long jump at Aichi Nagoya in Japan today. Sarvesh Kushare won silver medal in men's high jump. Currently, India is at the 12th position in the medal tally with a total of 37 medals, including 4 gold, 16 silver and 17 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन EIR एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब आज की सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में अपने कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।